मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 23वीं तिथि, तदनुसार 1948 के श्रावण माह की 23वीं तिथि तदनुसार 14 अगस्त 2026 हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। एक रिपोर्ट।
1: 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इस दिन देश उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश के विभाजन के दौरान जान गंवाई और अपने घरों से विस्थापित होने के लिए मजबूर हुए। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि यह व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जेपी नड्डा तथा सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के कैडेटों ने शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से अधिक नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव न्यांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत लाइबेरिया संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क

0: मजबूत करने पर भी जोर दिया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा हाट हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 लोग घायल हुए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुरंग में 22 मजदूर फंसे थे, इनमें से 20 को बाहर निकाल लिया गया है और 2 मजदूरों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने का निर्देश दिया है। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

जब हमारा चित्त ईश्वर की भक्ति में रम जाता है, जब हमारा चित्त एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होना चाहता, उनकी भक्ति में लगा रहना चाहता है, और जब लगता है कि व्याकुलता इतनी बढ़ गई है कि बस अब प्राण निकल ही जाएंगे, तो ईश्वर हम पर कृपा कर अपनी अनपायनी भक्ति प्रदान करते हैं और वो परमानंद प्रदान करते हैं जो इन लौकिक वस्तुओं से लौकिक जगत में कभी प्राप्त नहीं हो सकता।

हमें भरसक प्रयत्न करना चाहिए कि हम शुभ कर्म कर सकें, सत्कर्म कर सकें, क्योंकि ये मानव जीवन अत्यंत ही दुर्लभ है। इस योनि के बाद किसी और योनि में जन्म लेने पर हमें कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। जो भी हम स्वतंत्र हैं कर्म करने के संबंध में, वो केवल ये मनुष्य योनि ही हमें दे सकती है। इसलिए हमें भरसक प्रयत्न करना चाहिए, शुभ कर्म करें, सत्कर्म करें और सबसे बढ़कर परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करें।

0: इसी के साथ आज की आराधना अब संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: August 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर, परिवार, जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए अब सुनिए साप्ताहिक विशेष कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गुरुदेव और गांधी जी भारतीय आत्मा के आनंदमय और तपोमय जैसे दो ध्रुवों के प्रतिनिधि थे। दोनों में एक दूसरे के अंश मिले हुए थे। गांधी जी की अंतिम शांतिनिकेतन यात्रा कवि के निधन के बाद दिसंबर 1945 के तीसरे सप्ताह में हुई थी। उसका वर्णन करते हुए प्यारे लाल जी लिखते हैं,
1: जब गाड़ी गांधी जी को और उनकी मंडली को लेकर बोलपुर स्टेशन पर पहुंची, तब सायं प्रार्थना का समय निकट था। उनके डिब्बे के सामने का प्लेटफॉर्म

परंपरागत भारतीय पद्धति से रंगोली अल्पना की कलापूर्ण आकृतियों से सजाया गया था। स्वागत किए के बाद में कला और सादगी का सुमेल दिखाई पड़ता था। कोई शोरगुल या धक्कम धक्का नहीं हुआ। सारा दृश्य एक गहरी संयमपूर्ण भावना से ओतप्रोत था। संध्या हो रही थी। गांधी जी को सीधे प्रार्थना सभा में ले जाया गया। छोटे से प्रार्थना प्रवचन में गांधी जी ने गुरुदेव को एक ऐसे जन्मदाता पक्षी की उपमा दी जिसके फैले हुए पंखों की छत्र छाया में उनकी संस्था ने विकसित होकर वर्तमान आकार प्राप्त कर लिया था। हम सब उनके संरक्षक पंखों की गर्मी का अभाव अनुभव कर रहे हैं, परंतु हमें दुखी नहीं होना चाहिए। सभी प्राणियों को एक न एक दिन जाना होता है। अब आप कार्यकर्ताओं और शांति निकेतन के निवासियों का कर्तव्य है कि सब मिलकर उनके आदर्श का प्रतिनिधित्व करें। मौसम सुहावना और खुशनुमा था। हवा में गुलाबी सर्दी का स्पर्श था और नीले निरभ्र आकाश में श्वेत ऋतु का पूर्ण चंद्र चमक रहा था। जब दूसरे दिन प्रातःकाल शांति निकेतन के लड़के और लड़कियों ने वैचारिक गाते गाते आश्रम भूमि की परिक्रमा की और उदित जी के जिस कमरे में कविवर सदा बैठते और अपना काम करते थे उसकी खिड़की के नीचे आकर समूह गान तथा वंदना का कार्यक्रम पूरा करके गांधी जी को और उनकी मंडली को जगाया। जिस मंदिर में कविवर अपने साप्ताहिक प्रवचन किया करते थे उसमें गांधी जी ने संस्था के विद्यार्थियों की साप्ताहिक सभा में भाषण देते हुए लड़कों और लड़कियों को अव्यवस्थित ढंग से बैठे देख कर कहा था, तुम्हारे छोटे से छोटे कामों में भी शांति निकेतन की छाप रहना अत्यंत महत्व की बात है। तुम्हें कविवर की शिक्षा का केंद्रीय संदेश अर्थात शांति और विश्वव्यापी भ्रातृभाव का मुख्य संदेश फैलाना है। उसमें जाति धर्म या रंग के किसी भेद या बंधनों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। पीड़ित संसार को शांति का संदेश देना गुरुदेव का जीवन कार्य था। इसलिए शांति निकेतन के लड़के लड़कियों का काम है कि वे शांति के सैनिक बनकर संसार में फैल जाएं और उसके लिए ऐसा युद्ध करें जिससे शांति निकेतन जैसा उसका नाम है वैसा ही वास्तव में शांति का धाम बन जाए। इसके लिए तुम्हारे हृदय में ईश्वर के प्रति सजीव श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे शिल्पकार की प्रतिभा संगमरमर के टुकड़े में जान डाल लेती है वैसे ही गुरुदेव की आत्मा तुम्हारे द्वारा जिए और अपने संदेश का प्रचार करे। कार्यकर्ताओं में से एक ने दुख पूर्वक कहा, हम तो ऐसे नाविकों की तरह अनुभव करते हैं जिनकी नाव का कर्णधार नहीं रहा। हमें इसकी स्पष्ट कल्पना नहीं है कि हम किधर जा रहे हैं, हम क्या बनना चाहते हैं। गांधी जी ने उत्तर दिया था, मेरा पक्का विश्वास है कि गुरुदेव व्यक्ति के रूप में अपनी सारी रचनाओं से बड़े थे, इस संस्था से भी बड़े थे जिसमें उन्होंने अध्यापन कार्य किया और काव्यगान किया, जिसमें उन्होंने अपनी सारी आत्मा उड़ेल दी थी। शायद यह बात सभी महान और अच्छे पुरुषों के बारे में सच है। गुरुदेव सारी मानव जाति के प्रतिनिधि थे, परंतु भारत के लाखों गरीब और मूक प्राणियों के प्रतिनिधि बने बिना वे यह प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते थे। आपकी भी यही आकांक्षा होनी चाहिए। यदि आप भारत के सामान्य लोगों के मानस का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे तो आप मनुष्य के रूप में गुरुदेव के प्रतिनिधि नहीं बन सकते। एक और प्रश्न के उत्तर में गांधी जी ने कहा था, पैसे की बात को अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। यदि आप सच्चे ध्येय के प्रतिनिधि हैं तो पैसा आपके पीछे पीछे दौड़ा चला आएगा। सच्ची स्त्री और पुरुष पैसे की कठिनाई के कारण कभी पीछे नहीं हटते, यदि उनका ध्येय और उनके साधन दोनों उचित हों। विश्व भारती सच्चे प्रतिभाशाली और विद्वान लोगों को आकर्षित नहीं कर सकेगी यदि वह भौतिक साधनों के बल पर अथवा उनसे मिलने वाले भौतिक आकर्षणों पर आधार रखेगी। उसका आकर्षण नैतिक होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य से उसके सामर्थ्य के अनुसार काम दिया जाए और प्रत्येक मनुष्य को उसकी आवश्यकता के अनुसार दिया जाए, यह सामान्यतः सही सिद्धांत है। परंतु इससे आप प्रचलित बाजारों

0: बिंदु से आगे नहीं जा सकते। आप विश्व भारती के सदस्य इसलिए नहीं हैं, उसमें आपको भौतिक सुविधाएं मिलती हैं, परंतु इसलिए हैं कि उसके आदर्शों के लिए कार्य करके आपका नैतिक मूल्य दिनों दिन बढ़ता है। और अब हम गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के एक सुविख्यात मूल बंगला गीत का पाठ और उसका हिंदी अनुवाद प्रसारित कर रहे हैं।
1: यदि तोर डाक सुने क्यों ना आसे तबे एकला चलो रे, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। जदि क्यों कथा ना कय ओरे ओरे ओ अभागा, जदि सबाई थाके मुख फिराय सबाई करे भय, तबे प्राण खुले ओ तुई मुख फुटे तोर मनेर कथा एकला बोलो रे। जदि तोर डाक शुने क्यों ना आसे तबे एकला चलो रे, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। जदि सबाई फिरे जाए ओरे ओरे ओ अभागा, जदि गहन पथे जाबार काले केउ फिरे ना चाय, तबे पथेर काटा ओ तुई रक्त माखा चरण तले एकला दलो रे। जदि तोर डाक शुने केउ ना आसे तबे एकला चलो रे, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। जदि आलो ना धरे ओरे ओरे ओ अभागा, जदि झड़ बादले आंधार राते दुआर दाए घरे, तबे वज्रनले आपन बुकेर पांजर जालिए निये एकला चलो रे। जदि तोर डाक शुने केउ ना आसे तबे एकला चलो रे, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे।
2: यदि तेरी पुकार सुन कोई न आवे तो अकेले चलो अकेले। यदि कोई बात न बोले, यदि सभी मुख फिराए रहें, सभी भय करें, तब प्राण खोलकर मुंह खोल अपने मन की बात अकेला ही कह। यदि सभी लौट जाएं, यदि दुर्गम पथ पर जाते समय कोई फिरकर न ताके, तब पथ के कांटों को लहू लुहान पैरों तले तुम अकेले रौंदो। दीप न जले यदि आंधी पानी में अंधेरी रात में घर के दरवाजे बंद हो जाएं, तब वज्राग्नि से अपनी छाती के पंजर को प्रज्वलित कर अकेले ही जलती रहो। यदि तेरी पुकार सुन कोई न आवे तो अकेले चलो अकेले।
0: अंत में सुनिए बापू के प्रार्थना प्रवचन का एक अंश।
3: प्रार्थना एक ऐसी चीज है कि जो करना हमारा परम कर्तव्य है। हम खाने का छोड़ सकते हैं, पीने का छोड़ सकते हैं, कहीं जाने है तो जाने का छोड़ सकते हैं, नींद को छोड़ सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रार्थना रूपी खुराक है उसको हम कभी नहीं छोड़ सकते। प्रार्थना का फाका नहीं हो सकता है कि चलो आज 3 दिन का मैंने फाका किया है प्रार्थना का, ऐसी वो भाषा ही नहीं, वो झूठी भाषा है। प्रार्थना वो तो आत्मा का, आत्मा और शरीर वो दो मिले हैं, उसका अविभाज्य अंग है। जब तक आदमी में एक भी सांस पड़ा है तब तक तो उसको प्रार्थना करना ही है। तो प्रार्थना वो तो नाम है, राम नाम, तो नाम स्मरण करो। तो नाम स्मरण में मतलब ये होगी कि ईश्वर का स्मरण करो, तो एक आखिरी का सांस निकलता है तब तक वो होना चाहिए। पहली चीज तो हमारी ये कि आज हम नास्तिक जैसे बन गए, नाम लेते हैं राम का लेकिन काम हम राम का नहीं करते हैं, रावण का काम करते हैं। तो राम का नाम देने से हमको क्या फायदा पहुंच सकता है? हम कहते तो हैं कि हम तो सनातनी हिंदू हैं और हिंदू धर्म ऐसा कि जो सहिष्णुत है, जिसमें उदारता भरी है, जिसमें जिसमें पाखीज भी भरी है, वो सब कहां मैं दिखता हूँ? आज मैं जाऊँ तो मैं क्या दिखता हूँ? मौज चाहिए, शौक चाहिए, व्यभिचार चाहिए, शराब पीना चाहिए। आप ये मानते हैं कि ये सब हम करते रहे तो भी जबरदस्ती अहिंसा बता सकते हैं? मैं कहता हूँ कोई कभी होने वाला नहीं। इस कारण में आपको बड़ी दीनदार से समझाना चाहता हूँ कि वो बात सही नहीं है कि वादियों की अहिंसा वो सीखने के लिए कोई हमको नया पाठ सीखना पड़ेगा।

मर जाना चाहिए। तुम कैसे मर जाओ? आज तुम ये तो नहीं चाहिए कि मैं आपघात करके मर जाऊं, अभी गला घोट के मर जाऊं। तो मैं कोई आपको अहिंसा का पाठ नहीं सिखा देता हूँ।

0: क्या बात हुई आई है, लेकिन हाँ तब भी मेरे दिल में ऐसा ही रहे कि हे ईश्वर तू उसका भी भला कर, उसका उसका बुरा नहीं दिख जाता।
1: बापू के प्रार्थना प्रवचन के साथ ही गांधी चर्चा का ये साप्ताहिक विशेष कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक विशेष कार्यक्रम गांधी चर्चा। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
0: आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब किसान भाई अपना कार्यक्रम सुने कृषि जगत।

0: जी
1: इन
0: मतलब
1: छह स्थितियों में किसान भाई बौधा या मुख्य रूप से इन्हीं स्थितियों में रसायनों का प्रयोग किया जाता है।
0: जी, तो क्रम से के बताएं कि कैसे कैसे उनमें सावधानी बरतें हैं।
1: ध्यान देने योग्य बात यह है कि चाहे जिस स्थिति में कृषि रक्षा रसायन का प्रयोग करना हो तो बहुत ही सोच समझकर सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे तो किसान भाई जन धन का नुकसान उठाना पड़ सकता है। मुख्य रूप से कीटों के नियंत्रण के प्रयोग में जब हम रसायनों का प्रयोग करें तो क्या क्या सावधानी रखें, किसान भाई इस चीज़ को विशेष ध्यान दें। कीटनाशकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जबकि नासी जीवों की संख्या
0: जी
1: आर्थिक क्षति स्तर के पार न कर जाए। माने ये देख लें कि जब हम रसायन का प्रयोग करने जा रहे हैं कीटनाशी नियंत्रण हेतु,
0: हाँ
1: तो कीटों का प्रकोप हमारे जो रसायन प्रयोग करने जा रहे हैं उससे अधिक
0: हाँ
1: अगर
0: हाँ
1: नुकसान मालूम पड़ता है तो ही प्रयोग करें,
0: बिल्कुल
1: अन्यथा
0: बिल्कुल
1: न करें।
0: हाँ
1: कीटनाशकों का प्रयोग केवल आवश्यकता होने पर ही करना चाहिए।
0: जी,
1: केवल उन्हीं कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए जो सिर्फ हानिकारक कीटों को मारते हैं, हमारे
0: हाँ
1: फसल के जो
0: लाभदायक कीट
1: लाभदायक
0: पतंगन
1: कीट
0: के नाम
1: हैं
0: आ रहे हैं।
1: उनको
0: जी
1: न मारते हों। कीटों का जैविक नियंत्रण कारकों का कोई नुकसान न कर पाए
0: हाँ
1: ऐसे
0: हाँ
1: कीटनाशकों का प्रयोग करना
0: जी
1: चाहिए। एक से अधिक कीटनाशकों को एक साथ मिलाकर के प्रयोग नहीं करना चाहिए।
0: मतलब एक साथ कई कीटनाशकन के प्रयोग से अपने किसान भाई बचें।
1: बचें।
0: जी
1: कीटनाशकों का प्रयोग सही समय पर करना चाहिए।
0: जी
1: देख लें किसान भाई कि इस समय हमारे खेत में कीटों का प्रयोग अधिक है जो नुकसान अधिक पहुंचा सकते हैं तभी करें, पहले या बाद में करने से इसका कोई फायदा नहीं होगा। कीटनाशकों के छिड़काव में पानी की सही मात्रा का प्रयोग करें। पानी की मात्रा कम होने पर छिड़काव नहीं सही हो पाता है तथा नुकसान उठाना पड़ता है। कीटनाशकों के प्रयोग के समय हवा के बहाव को ध्यान में अवश्य रखें।
0: जी
1: हवा के विपरीत दशा में अगर हम कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे तो वो छिड़कने वाले आदमी के
0: उस चेहरा
1: ऊपर
0: पे
1: हाँ पड़ करके वो
0: मुंह पे आ
1: नुकसान
0: जाए।
1: कर सकता
0: जी
1: है।
0: वो स्वास्थ्य के लिए हानिकर हो जाए।
1: जी जी जी
0: हवा के रुख ईसन देख लें कि अपनी तरफ हवा ना आवत हो बल्कि
1: जी
0: उल्टा जात हो।
1: जी
0: जी
1: छिड़काव के बाद जब कीटनाशकों का प्रयोग कर लें तो हाथ पैरों को साबुन से धोना चाहिए, स्नान करना चाहिए ताकि हमारे शरीर के ऊपर किसी प्रकार से कीटनाशक का प्रभाव पड़ा हो तो वो
0: हाँ
1: साफ हो जाए।
0: तो कभी यह हाथ में भी दस्ताना वगैरह कुछ लगाना चाहिए।
1: जी जी जी कीटनाशकों के प्रयोग के समय बीड़ी या लोग
0: हाँ
1: तंबाकू का सेवन एकदम
0: बिल्कुल ना
1: नहीं
0: करें,
1: करना
0: बिल्कुल
1: चाहिए।
0: ना करें।
1: कीटनाशकों का छिड़काव करते समय आंख पर चश्मा तथा मुंह पर कपड़ा अवश्य बांधना चाहिए। केवल उन्हीं कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए जो कि भारत सरकार की रजिस्ट्रेशन कमेटी से पंजीकृत हों
0: हाँ, सरकार द्वारा जो संस्तुत कीटनाशक है वही का प्रयोग करें।
1: या निकट के विश्वविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित हों।
0: जी
1: कीटनाशकों को खरीदते समय उन पर लगे लेबल, ISI आदि चिन्हों के बनने व असर समाप्त होने की तिथि को अवश्य पढ़
0: मतलब
1: लेना चाहिए,
0: एक्सपायरी डेट जरूर देख ले
1: देख
0: भैया।
1: लें कि हमारे प्रयोग करने का भी इसका दिनांक तारीख तिथि है कि नहीं और लेबल में ISI या सरकार द्वारा प्रमाणित ये दवा है कि नहीं।
0: बहुत से दुकानदार
1: यदि
0: भैया पुरानी दवा भी रखे रहते हैं कि फायदा कमाए बदे, ऐसे देख लेक चाहिए कि एक अवधि खत्म हो कि अभी हो।
1: पर्यावरण के लिए जो कीटनाशक उपयुक्त हों
0: हाँ
1: उन्हीं का प्रयोग करना
0: जी
1: चाहिए
0: जी
1: क्योंकि बहुत से ऐसे कीटनाशक हैं जो हमारे पर्यावरण में प्रदूषण फैलाते हैं और हमारे जन धन पशुधन सबको नुकसान पहुंचाते
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: दूसरी स्थिति आती है कि किसान भाई खरपतवार नियंत्रण हेतु भी रसायनों का प्रयोग करते हैं,
0: जी
1: तो खरपतवार नियंत्रण करने हेतु जब रसायनों का प्रयोग करें तो किसान भाई क्या क्या सावधानी रखें। रसायन का घोल बनाने के लिए साफ पानी का प्रयोग हमेशा करना
0: जी
1: चाहिए।
0: जी
1: यदि साफ पानी नहीं रहेगा तो आपके रसायन के घोल की गुणवत्ता खराब हो सकती है
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: वो
0: मतलब गंदा
1: आपका
0: या माटी वाला पानी न रहे।
1: जी रसायन का घोल बनाने के पूर्व कंटेनर या पैकेट जिसमें वो हम रसायन खरीद रहे हैं
0: जी
1: यदि घोल के रूप में है तो कंटेनर में है,
0: हाँ
1: यदि पाउडर के रूप में है तो पैकेट के रूप में प्राप्त
0: जी
1: होगा।

0: आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कृषि रक्षा रसायनों का उचित प्रयोग विषय पर अनिल कुमार से की गई जयकृष्ण नारायण शर्मा की बातचीत।
1: किसान भाई, खेती बाड़ी में बहुत से कीटनाशी, बहुत से रसायनों के प्रयोग होते हैं, लेकिन कोनो भी रसायन हो के प्रयोग में निश्चित रूप से कुछ सावधानी बरते की चाहिए ताकि कोनो हानि न हो पावे स्वास्थ्य के प्रति और ठीक ढंग से फसलन पर उकर असर पड़े। आज जोन बातचीत का विषय है कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग में सावधानियाँ, ऐप जानकारी देवदेव विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच में श्री अनिल कुमार जी अल्बर्ट है। आप विशेषज्ञ बैठे भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत हो। अनिल कुमार जी, अपने किसान भाई बदे आपसे हम जानल चाहब कि कृषि रक्षा रसायन कौन कौन से हैं और उनके प्रयोग में सावधानियाँ का बाटी जोन किसान भाई अपने खेतन में प्रयोग करत हैं।
2: किसान भाइयों, कृषि रक्षा रसायन का प्रयोग मुख्य रूप से छह स्थितियों में किया जाता है
1: जी।
2: भूमि शोधन के रूप में, बीज शोधन के रूप में, कीटों के नियंत्रण के लिए, रोगों के नियंत्रण के लिए और खरपतवार नियंत्रण के लिए, तथा अन्न भंडारण में सुरक्षित रखने के लिए।

0: उनके लीफ प्लेट उस पर
1: हाँ
0: लगा रहता है, उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए
1: हाँ
0: कि ये दवा सही है कि नहीं है, तभी
1: जी
0: उसका प्रयोग करना चाहिए।
1: हाँ
0: रसायन का घोल बनाते समय हाथ में दस्ताना, आंख पर चश्मा, नोज मास्क, नाक पर कपड़ा बांध लें नोज मास्क नहीं उपलब्ध है तो, टोपी एवं संपूर्ण शरीर को ढकने वाला कपड़ा प्रयोग करना चाहिए एवं हवा के विपरीत बैठकर या खड़े होकर घोल नहीं बनाना चाहिए।
1: जी
0: दवा को अच्छी तरह पानी में घोलने के लिए लकड़ी के डंडे का प्रयोग करना चाहिए। रसायन का छिड़काव हवा के विपरीत नहीं करना चाहिए एवं हाथ में दस्ताना, आंख पर चश्मा, नोज मास्क, टोपी एवं संपूर्ण शरीर को ढकने वाले कपड़े तथा जूते का प्रयोग करना
1: जी
0: चाहिए।
1: जी लड़का के दिला भी आसपास न रहे।
0: जी जी छिड़काव करते समय धूम्रपान अथवा कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। कंटेनर या पैकेट जिसमें हमने
1: बर्तन भैया कैसन रहे चाहिए जोने में कि ओके घोल बनावल जाए। हाँ
0: कंटेनर या पैकेट जिसमें अवशेष दवा बच जाती है, हम प्रयोग करते हैं
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: कुछ दवाएं हमारी बच जाती हैं,
1: जी
0: उसको अच्छी तरह से बंद कर स्टोर में हवादार सूखे स्थान पर बच्चों से दूर रखना
1: मतलब
0: चाहिए।
1: जहाँ लड़का के देला न पहुंच पावे। हाँ
0: बर्तन जैसे हम दवा छिड़कते हैं तो हमारे कई प्रकार के स्प्रेयर आते हैं,
1: हाँ
0: पीठ पर रखने वाला आता
1: हाँ
0: है, पैर
1: हाँ
0: से चलाने वाला आता है।
1: जी जी
0: पीठ पर रखने वाला स्प्रेयर बहुधा बहुत ही सामान्य होता है जो एक ही आदमी आसानी से प्रयोग कर
1: जी
0: सकता
1: जी
0: है,
1: हाँ
0: वो उसमें 15 लीटर पानी आता है।
1: हाँ
0: पहले हमको अपने स्प्रेयर को, मशीन को अच्छी तरह से
1: चेक
0: साफ
1: कर लो
0: सफाई
1: चाहिए।
0: कर लेना
1: जी
0: चाहिए, उसके नोजल और सब चेक कर लेना चाहिए कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तभी उसके अंदर घोल बना करके दवा का प्रयोग करना। दवा के प्रयोग के बाद खाली कंटेनर या पैकेट को घरेलू उपयोग में कभी नहीं लाना चाहिए। दवा के प्रयोग के बाद खाली कंटेनर या डिब्बा को नष्ट कर ऊंचे स्थान पर जमीन में गाड़ देना चाहिए।
1: शाम के ही छिड़काव करें चाहिए कि सुबह। हाँ
0: नहीं, सुबह तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, दोपहर के बाद करना चाहिए, क्योंकि
1: अच्छा।
0: सुबह जो है मधुमक्खी या हमारे जो लाभदायक कीट हैं वो
1: हाँ
0: फसलों पर ज़्यादा आते हैं।
1: बिल्कुल भैया। भैया अनिल कुमार जी, आप कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग में सावधानियां पे किसान भाई के बहुत अच्छी जानकारी देना। आपका जानकारी देव, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कृषि रक्षा रसायनों का उचित प्रयोग एवं सावधानियां विषय पर अभी आप अनिल कुमार से की गई जयकृष्ण नारायण शर्मा की बातचीत सुन रहे थे। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत समाप्त हुआ।

0: 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं दीपक पांडेय की वार्ता। विषय है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कारण और उपचार।
2: सर्वाइकल गर्दन के रीढ़ की हड्डी की एक आकर्षक बीमारी है। बढ़ती उम्र के साथ साथ हड्डियों और जोड़ों के बीच उपस्थित गद्दी में बदलाव के कारण होता है। इसमें बगैर किसी चोट के हाथों में कमजोरी महसूस होना, गर्दन में ऐठन होना मुख्य कारण है। अक्सर देखा गया है 40 एज के बाद व्यक्तियों में रीढ़ की हड्डी के बीच गद्दी घिसने लगती है। इस

0: में लचीलापन कम हो जाता है और इसमें कुछ धातु जमा होने लगती है। कई बार यह बदलाव 30 वर्ष से आयु के भी दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं बदलाव के कारण नसों पर जो दबाव पड़ता है, जिसके कारण हमारे हाथों में झुंझुनाहट, कमजोरी, दर्द होने की शिकायत होती है। इसके भी कई लक्षण देखे जा सकते हैं, जैसे गर्दन और कंधों पर बार बार दर्द होना या कम होना। गर्दन में दर्द के साथ साथ मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है। कई बार दर्द तेजी के कारण कंधों और सिर की ओर फैल जाता है। कई लोगों को पीठ से होकर हाथों की उंगलियों तक पहुंच जाता है। बगैर किसी चोट के गर्दन और बाजुओं में दर्द महसूस होना, कमजोरी या सनसनी होना। कभी कभी यह दर्द सीने में होने लगता है और आदमी इसको गलती से हृदय का दर्द समझ लेता है। आदमी को चक्कर आना, सर भारी भारी लगना या उल्टी महसूस होना, हाथों में सुन्नपन हो जाना, गर्दन को आगे पीछे करने पर दर्द होना, सर में हमेशा भारीपन महसूस होना। और इसके साथ साथ कई कारण भी हो सकते हैं इसके, जैसे रीढ़ के हड्डी के बीच जोड़ों और गद्दियों में घिसाव आने के कारण हो सकता है। ज़्यादा यह बदलाव 40 एज से ज़्यादा वाले व्यक्तियों में पाया जाता है। सिर पर बार बार भारी वजन उठाना, कसरत करना, लगातार गर्दन सिर झुकाकर काम करना, एक ही स्थान पर बैठकर काम करना, जैसे कंप्यूटर को चलाना या लंबी दूरी का प्रवास करना, बैठे बैठे सो जाना, मोबाइल पर कंधों के सहारे लेकर बात करना, लगातार गर्दन को एक ही स्थिति में रखना, जैसे टीवी देखते समय, गाड़ी चलाते समय, और एक एज फैक्टरिंग ओल्ड एज में भी कारण दिखाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ इसके उपचार ट्रीटमेंट भी होते हैं, जैसे रोगों को पहचानने के लिए गर्दन का हम एक्सरे करवा सकते हैं। उसमें रीढ़ की हड्डी के उभरे हुए नुकसान नज़र आते हैं। एमआरआई की मदद से भी निदान किया जा सकता है। स्वस्थ जीवन शैली और वजन नियंत्रण रखकर बीमारी से बचा जा सकता है। इसके साथ साथ आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट इलाज करवा सकते हैं। इसमें कुछ मशीनों से इलाज होता है, जैसे शॉर्ट वेव, अल्ट्रासोनिक, IFT और ट्रेक्शन की मदद से यह सही हो जाता है। इसमें सर्वाइकल कॉलर का इस्तेमाल करें। इसमें गर्दन की हलचल सीमित रहती है। गर्दन की हलचल को सीमित रखें। सोने के लिए कड़क गद्दा और पतले तकिए का इस्तेमाल करें।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर दीपक पांडे की वार्ता सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कारण और उपचार। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।
2: 14 अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर, परिवार, जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण। आज शाम 7 बजे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित होगा। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद सुल्तान खान का सारंगी वादन, दिन में 12:15 पर और रात 10:30 हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर गीता बनर्जी का उप शास्त्रीय गायन। सुबह 9:50 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे आशुतोष श्रीवास्तव। सुबह 10:05 पर वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम में डॉक्टर जीएस तोमर से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत का आज आप सुनेंगे दूसरा भाग। दिन में 11:00 एक ही कलाकार। 11:30 पर दिन में प्रसारित होगा युवाओं का अपना कार्यक्रम यूथ एक्सप्रेस। सुबह 10:30 पर लोकगीत के कलाकार होंगे सूर्य

प्रकाश पटेल और साथी। फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश आप सुनेंगे दिन में 12:30 पर। हेलो गृहलक्ष्मी ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 1:15 पर। शाम 5:00 नन्ही दुनिया कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने आओ जाने के अंतर्गत सुनेंगे टीकाकरण का विज्ञान के बारे में। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 ग्रामीण भाई अवधेश चंद्र यादव की वार्ता सुनेंगे। डेयरी उद्योग में जैव प्रौद्योगिकी रात 8:30 अंग्रेजी प्रोग्राम में डॉक्टर ऋतुराज त्रिपाठी की वार्ता होगी ह्यूमन बॉडी एंड फूड। गजलों का प्रोग्राम कहकशां रात 9:30 और रात 10:00 लक्ष्मीकांत वर्मा का लिखा नाटक प्रसारित होगा वतन के लिए। अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं, प्रतीक्षा करें।

पार्वती की हस्तरेखाएं देखकर देवर्षि नारद ने भविष्यवाणी की कि उनका पति योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला होगा। देवर्षि ने कहा, हे हिमवान, विधाता ने जो ललाट पर लिख दिया है उसे कोई मिटा नहीं सकता। फिर भी एक उपाय है। मैंने वर के जो भी दोष बताए हैं वे सभी शिव जी में विद्यमान हैं, और यदि पार्वती का विवाह उनसे हो जाए तो सभी दोष गुण में परिवर्तित हो जाएंगे।

0: अभी आप कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। संगीत दिया था सतीश भाटिया ने।
1: 14 अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
0: लीजिए सुनिए फिल्मों से भजन। सबसे पहले हम आपको सिलसिला फिल्म की रचना सुनवा रहे हैं। रचना है मीरा बाई की, संगीत है शिव हरि का और आवाज लता मंगेशकर की।

लीजिए अब सुनिए, पूरब और पश्चिम फिल्म में इंदिवर का लिखा हुआ ये भजन, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, आवाज़ें हैं महेंद्र कपूर, मनहर उदास और साथियों की।

14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन की

0: कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: आप सुन रहे थे
0: श्री
1: क्षमा कीजिएगा, आप सुन रहे थे फिल्मों से भजन आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:20 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचार हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे, प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम राष्ट्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर होगा प्रसारण। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में निकाली जा रही हैं तिरंगा यात्राएं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर घर घर पहुंचा यह अभियान। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में लागू होगा नया ड्रेस कोड, कल से नई पोशाक में नजर आएंगे अर्चक। और प्रदेश में फिर सक्रिय हुआ मानसून, मौसम विभाग ने 4 दिनों के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। यह दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। इसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय चैनलों पर रात 9:30 बजे संबोधन के क्षेत्रीय भाषा संस्करण का प्रसारण करेगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। कानपुर में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कल तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचा है।
1: आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में तिरंगा अभियान घर घर पहुंच रहा है। मैं प्रदेशवासियों से, कानपुर वासियों से अपील करता हूं, घर घर तिरंगा अभियान में शामिल होकर के अपने घर पर तिरंगा फहराएं। और बिठोर के हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गढ़ रहा है, यहाँ से ऐसी शुरुआत करें कि अपना राष्ट्र प्रेम, अपना राष्ट्र प्रथम की भावना से हम घर घर जाएंगे और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में अपने प्रदेश को नंबर एक पर ले जाने का काम करेंगे।
0: प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने अभियान के तहत कल कानपुर देहात जिले में एक विशाल तिरंगा यात्रा की अगुवाई की।
2: कानपुर देहात के अकबरपुर इंटर कॉलेज से शुरू हुई इस यात्रा में स्कूली बच्चों और स्थानीय नागरिकों ने लगभग 1200 फीट लंबे तिरंगे के साथ हिस्सा लिया। अयोध्या में भी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। राज्यसभा सदस्य और प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इस यात्रा का शुभारंभ किया। वहीं बस्ती जिले में वहां की जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इसी क्रम में भदोही जिले में

0: में भी राजेंद्र बर्नवाल गर्ल्स इंटर कॉलेज से हर घर तिरंगा रैली निकाली गई। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: बाराबंकी में जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश राही तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। बिजनौर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मऊ में प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकली। वहीं प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बहराइच में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। वन विभाग की तरफ से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत कल प्रदेश के सभी 75 जनपदों में वंदे मातरम वाटिका स्थापित की जाएगी। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सामाजिक वानिकी दीपक कुमार ने बताया कि इस विशेष अभियान में नागरिकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित होगी।
2: प्रत्येक जनपद में एक चयनित स्थान पर 150 पौधों का रोपण किया जाएगा, जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रकृति को समर्पित श्रद्धांजलि होगी। वंदे मातरम वाटिका में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप छायादार, फलदार और पर्यावरण संरक्षण में उपयोगी प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। अवध वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी सितांशु पांडे ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर कुकरैल पिकनिक स्पॉट में वंदे मातरम वाटिका को विस्तार दिया जाएगा। यहां एक अशोक चक्र बनाया गया है, इसकी 24 तीलियों के बाहर के क्षेत्र में अशोक के पौधे लगाए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में कल से सभी अर्चक एक समान ड्रेस में नजर आएंगे। मंदिर से जुड़े धार्मिक समिति के सदस्य राजकुमार दास ने बताया कि समिति ने अर्चकों के लिए ड्रेस कोड तय कर दिया है।
3: नए ड्रेस कोड के तहत सभी अर्चक पीत्र वस्त्र धारण करेंगे। गर्मी के मौसम में नीचे धोती और ऊपर उत्तरीय वस्त्र होगा। खास बात यह है कि यह वस्त्र सिला हुआ नहीं होगा, बल्कि बिना सिला हुआ रेशमी सिल्क का होगा। वहीं शरद ऋतु में मौसम के अनुसार गर्म कपड़ों की व्यवस्था की जाएगी। उस दौरान ऊनी वस्त्र का इस्तेमाल होगा, लेकिन वस्त्र का रंग पीत ही रहेगा। समिति का मानना है कि इस बदलाव से मंदिर की पूजा व्यवस्था में एकरूपता तथा अनुशासन और मजबूत होगा। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: संसद का मानसून सत्र कल संपन्न हो गया। इससे पहले संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। राज्यसभा ने कल इसे मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए।
4: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में कल झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का 31वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। समारोह में 34,947 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। गोरखपुर की जिला स्वास्थ्य समिति DHS ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में एक बार फिर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। यह जानकारी गोरखपुर के CMO डॉक्टर राजेश झा ने दी। उन्होंने बताया कि समिति वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी प्रदेश में अव्वल रही है।
5: हम लोग के DHS को इस बार 2025-26 में भी रैंक वन मिला है, और ये रैंक वन मिलना जो है वो अपने आप में बड़ी चीज मानी जाती है। इसका मतलब जो हम लोग अपना जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक करते हैं, वो बैठक हम लोग सही तरीके से करते हैं।
1: प्रदेश में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। इससे कई जिलों में कल मध्यम से लेकर तेज बारिश हुई। गोरखपुर में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई।

0: बीच मौसम विभाग ने 4 दिनों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। चंदौली जिले के SRVS महिला महाविद्यालय में कल भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय PIV वाराणसी की इकाई द्वारा मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ मुगलसराय के विधायक रमेश जायसवाल ने किया। इसमें मीडिया और सरकार के बीच संवाद को मजबूत करने, फेक न्यूज एवं भ्रामक सूचनाओं की पहचान, फैक्ट चेकिंग और डिजिटल टूल्स के प्रभावी उपयोग के संबंध में जानकारी दी गई। इस अवसर पर PIB के निदेशक दिलीप शुक्ला भी उपस्थित रहे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम राष्ट्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर होगा प्रसारण। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में निकाली जा रही हैं तिरंगा यात्राएं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर घर घर पहुंचा यह अभियान। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में लागू होगा नया ड्रेस कोड, कल से नई पोशाक में नजर आएंगे अर्चक। और प्रदेश में फिर सक्रिय हुआ मॉनसून, मौसम विभाग ने 4 दिनों के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद सुल्तान खान का सारंगी वादन, राग है नट भैरव। विलंबित लय रूपक ताल में और द्रुत लय 3 ताल में निबद्ध है। तबले पर आपके साथ संगत की उस्ताद जाकिर हुसैन ने। तो आइए सुने उस्ताद सुल्तान खां का सारंगी पर राग नट भैरव।

14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा।

0: वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे उस्ताद सुल्तान खां का सारंगी वादन, राग था नटभैरव। तबले पर आपके साथ संगत की उस्ताद जाकिर हुसैन ने। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

नदियाँ सागर में जाकर मिलती हैं, सभी धर्मों का गंतव्य एक है, उसी तरह हम सब भारतवासी एक हैं। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। 8 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को उपराज्यपाल की मंजूरी, आयु सीमा में भी मिलेगी छूट। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना राय बाकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। एक रिपोर्ट।
4: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद करते हैं। इतिहास का वो क्षण जिसने कई जिंदगियों को तहस नहस कर दिया, अपनों को खो दिया गया और असहनीय पीड़ा भी सहनी पड़ी। श्री मोदी ने कामना की कि ये दिन हमारे राष्ट्र में सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा और हम सब मिलकर एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने

0: और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भोपाल में आज एक तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली कोलार 6 लेन रोड पर मदर टेरेसा स्कूल के पास से शुरू होगी और इसमें लगभग 32 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। आयोजकों को रैली में 1 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी रैली में शामिल होंगे। यातायात, पार्किंग, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इंकार कर दिया है तथा सीबीआई जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा रद्द करने की अपनी मांगों को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 21 दिनों से जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ धरना दे रहे अभ्यर्थी स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपने आंदोलन को एक नया रूप दे रहे हैं। छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और इस भारी छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य की सीआईडी से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में जेपीएससी के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने अग्निशमन सेवा में फायर ऑपरेटर और कारागार विभाग में वार्डन और मैट्रन पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग के आदेश में उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट का भी प्रावधान है। गृह मंत्रालय ने पहले ही सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल और राइफलमैन स्तर के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए हैं। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी के साथ बातचीत में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
2: टनल का कुछ पोर्शन धंस गया है, उसमें पानी आ गया था और पानी आने के कारण लगभग 30 से अधिक लोग थे, जिसमें से सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू किए लोगों में 14 लोग जिंदा हैं और 7 को मृत घोषित किया गया है। वर्तमान में रेस्क्यू काम में थोड़ी सी बाधा हो रही है क्योंकि पानी लगातार आ रहा है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नियांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए डिजिटल मुद्रा आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शुरू की जाएगी। ये पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी वितरण में एक नए विकास का प्रतीक है।

0: ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में एक और कदम है। सब्सिडी वाले अनाज के भौतिक वितरण से लेकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी और अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी के जरिए डिजिटल डिलीवरी तक। सूत्रों के अनुसार चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के लिए खाद्य सब्सिडी के लिए सीबीडीसी आधारित डीबीटी को पूरी तरह से लागू करेगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी विशेष अतिथि होंगे। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंती भाई के अलावा केंद्र और राज्य के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। उत्तरी ओडिशा की कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख के आसपास एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।
2: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर बाढ़ के हालत गंभीर हो गए हैं। भद्रक के अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर से ऊपर बह रही है और इसका जल स्तर लगभग 19.27 मीटर तक पहुंच गया है। भंडारी पोखरी समेत नदी के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ गई है और कई इलाके अलग थलग पड़ गए हैं। चंपुआ में बाढ़ के पानी ने एक पुल को बह दिया है जिससे सड़क संपर्क टूट गया है। इसी महीने की 20 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने केरलम के 6 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है जिसमें अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट और पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सूती के रघुनाथपुर में एक भयावह हमले में 4 से 11 वर्ष की आयु के 3 बच्चों की मौत हो गई है। आरोप है कि 21 वर्षीय एक व्यक्ति ने 4 बच्चों को अपने घर के एक कमरे में ले जाकर उन पर हसीये से हमला किया। और अब खेल समाचार। पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। टोरंटो में फाइनल में कल 7वीं वरीयता प्राप्त स्वियाटेक ने दूसरी वरीयता प्राप्त एलेना रायबाकिना को सीधे सेटों में हराया। इस जीत के साथ इन्होंने सीजन का अपना पहला खिताब जीत लिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद विशाल। संसद के मानसून सत्र का समापन आज सभी अखबारों की पहली खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हंगामे के बीच धुला संसद का मानसून सत्र। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, न चर्चा न मंथन, सत्ता और विपक्ष की अड़ाअड़ी में बर्बाद हो गए जनता के 171 करोड़ रुपए। अमर उजाला लिखता है, संसद में हंगामे का ग्रहण, 19 बैठकों में 19 घंटे भी न चल पाई लोकसभा। संसद सत्र से निराशा शीर्षक के साथ हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है, मॉनसून सत्र उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। बड़े अफसोस की बात है कि सत्र के दौरान हर दिन कार्यवाही बाधित हुई। प्रश्नकाल का ना होना सबसे बड़ी त्रासदी है। दिल्ली के लाल किला धमाकों की साजिश रचने में के बड़े खुलासे को भी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। दैनिक भास्कर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, लाल किला धमाकों में अलकायदा का था हाथ, स्लीपर सेल के जरिए रची थी साजिश। पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का कड़ा रुख, हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। न्यायालय ने कहा, ज्यादा चीनी, नमक और फैट वाले पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल लगाने पर सरकार फैसला लेने में विफल रही तो खुद दिशा निर्देश जारी करेंगे। हरियाणा में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को 7 साल तक मिलेगी जीएसटी से छूट। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में किए बदलाव, 25 लाख निवेश

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू 80वें यौम आज़ादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन मनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने फायर सर्विसेज और जेल महकमे में साबिक अग्निवीरों के लिए 20% कोटे की मंजूरी दी है और उम्र की हद में रियायत दी गई है। उत्तराखंड के चमोली जिले में सिरेतामीर टनल में पानी के रिसाव और चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकये में 7 कारकुनों की मौत हो गई जबकि 14 जख्मी हुए। और कनाडा ओपन टेनिस में ईगा श्यांटेक ने एलेना रिबाकिना को हराकर खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू 80वें यौम आज़ादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया का ये खिताब आकाशवाणी के पूरे कौमी नेटवर्क पर शाम 7 बजे से नश्र किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर पहले ये खिताब हिंदी में टेलीकास्ट किया जाएगा और इसके बाद अंग्रेजी में होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में इस खिताब के टेलीकास्ट के बाद दूरदर्शन के इलाकाई चैनलों पर इसे इलाकाई जबानों में नश्र किया जाएगा। इधर आकाशवाणी से भी सदर जमहूरिया का ये खिताब मुतालिका इलाकाई नेटवर्क पर रात 9:30 बजे इलाकाई जबानों में नश्र किया जाएगा। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन है। आज उन सभी लोगों को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है जिन्होंने साल 1947 में मुल्क की तकसीम के दौरान नाकाबिल तसव्वुर दुख और तकलीफ का सामना किया और अपनी जान कुर्बान कर दी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तकसीम की हौलनाकी को याद करने के दिन के मौके पर कौमी राजधानी समेत मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनाकिद किए जा रहे हैं। मुल्क की तकसीम के सबब अपनी जान गंवाने वाले और अपने आबाई वतन से बेघर हुए लोगों को खराज अकीदत पेश करने और उनकी कुर्बानियों को याद करने के लिए हुकूमत ने साल 2021 में हर साल 14 अगस्त को यह दिन मनाने का फैसला किया था। यह दिन इस बात को यकीनी बनाता है कि आइंदा नस्लें आज़ाद भारत के वजूद में आने के वक्त हुए तशद्दुद के दौरान लोगों के दर्द और मुश्किलात को याद रखें। आज का दिन लोगों को माशरती तकसीम और इंतशार की लानत को ख़त्म करने और यकजहती समाजी हम आहंगी और लोगों को बाइख्तियार बनाने के जज्बे को मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत की याद दिलाता है। मुल्क की तकसीम के सबब इंसानी तारीख की सबसे बड़ी नकल मकानी हुई जिससे तकरीबन 20 मिलियन लोग मुतासिर हुए। आज़ादी का जश्न मनाकर मुल्क उन लोगों को भी सलाम पेश कर रहा है जिन्होंने तशद्दुद के दौरान अपनी जानें कुर्बान कर दी। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: तकसीम की हौलनाकियों को याद करने के दिन के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन लोगों की हिम्मत और हौसले को याद किया जो मुल्क की तकसीम से मुतासिर हुए थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने मुल्क की तकसीम को तारीख का एक ऐसा लम्हा करार दिया जिससे लोगों की जिंदगियां बिखर गईं, खानदान उजड़ गए, लोगों ने अपने अजीजों को खो दिया और इंतहाई मुश्किलात का सामना किया। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि इसके साथ ही लोगों ने इस मुश्किल को बर्दाश्त किया और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की, सख्तियों को कामयाबी में बदला और मुल्क की तरक्की में बेपनाह तआवुन पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आज भोपाल में एक बड़ी तिरंगा रैली का एहतमाम किया जा रहा है। ये रैली सुबह 10 बजे कोलार 6 लेन रोड से शुरू होगी और तकरीबन 32 किलोमीटर का फासला तय करते हुए संत नगर में खत्म होगी। इस रैली में 1 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के रियासती सदर हेमंत खंडेलवाल भी इस रैली में शिरकत करेंगे। बारिश

खान के मद्देनजर रैली के लिए इंतजाम किए गए हैं। चूना भट्टी समेत कई मकाम पर सेल्फी प्वाइंट भी बनाए गए हैं। इन मकाम के जरिए मनुष्यात की लानत के खिलाफ नौजवानों में बेदारी पैदा करने के पैगाम की तशहीर की जाएगी। कल यौम आज़ादी पर दिल्ली मेट्रो की खिदमात पूरे नेटवर्क पर सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह सवेरे 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने कहा है कि यौम आज़ादी तकरीबात में शिरकत करने वाले खसूसी मेहमानों, मधु किए गए अफराद और आम लोगों की सहूलत की खातिर ये

0: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने कहा है कि यौमे आज़ादी तकरीबात में शिरकत करने वाले खसूसी मेहमानों, मदऊ किए गए अफराद और आम लोगों की सहूलत की खातिर ये फैसला किया गया है। डीएमआरसी ने यह भी कहा है कि मामूल की खिदमात शुरू होने तक सभी लाइनों पर मेट्रो खिदमात आधे घंटे के वक्फे से चलेंगी। दिल्ली सरकार ने फायर सर्विसेज के शोबे में फायर ऑपरेटर ओहदों और जेल के महकमे में वार्डन और मेट्रन ओहदों पर सीधे भर्ती में साबिक अग्निवीरों के लिए 20% रिजर्वेशन की मंजूरी दी है। उमूर दाखिला के महकमे के हुक्म में अहल उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद में रियायत भी दी गई है। ये कदम साबिक अग्निवीरों की बाजाबादकारी की मरकजी सरकार की पॉलिसी के ऐन मुताबिक है। उमूर दाखिला की मरकजी वजारत ने साबिक अग्निवीरों के लिए पहले ही जनरल ड्यूटी पर काम करने वाले कांस्टेबल और सभी मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज नीज आसाम राइफल्स में राइफलमैन सतह पर 50% ओहदे रिजर्व कर दिए हैं। ग्वालियर में टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ ने फायर कॉम्बैट लीडर के तौर पर क्वालिफाई किया है। इस तरह उन्होंने भारतीय फजाइया की पहली खातून अफसर बनकर तारीख रकम की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय फजाइया ने कहा कि ये एक तारीखी कामयाबी है जिससे पेशावाराना महारत, जंगी समझबूझ और लीडर्स की हौसला अफजाई के तई फजाइया के अज़्म का इजहार होता है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक पनबिजली प्रोजेक्ट के मकाम पर जेरे तामीर टनल में पानी के रिसाव और चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकये में 7 कारकुनों की मौत हो गई जबकि 14 जख्मी हुए। नजदीक के अस्पताल में जख्मियों का इलाज किया जा रहा है। हमारे नामा निगार ने बताया है कि ये वाकया पीपल कोटी इलाके में टेहरी हाइड्रोजन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट मकाम पर पेश आया।
1: इस हादसे की इत्तला मिलते ही जिला इंतजामिया, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर सर्विसेज और तिब्बी महकमे की टीमें वहां पहुंच गईं। चमोली के जिला मजिस्ट्रेट गौरव कुमार ने वहां बचाव कार्रवाई की निगरानी की। जख्मी कारकुनों को गोपेश्वर के जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। इधर रियासत के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कल रात देर गए देहरादून में रियासत के इमरजेंसी ऑपरेशंस मरकज में राहत और बचाव कार्रवाइयों का जायजा लिया।
2: हमारा प्रयास है कि जितने भी लोग हैं उनका रेस्क्यू जल्दी से जल्दी किया जाए। उसके लिए एनडीआरएफ, एसटीआरएफ, जिला प्रशासन की टीम, हमारे यहाँ की पुलिस की टीम, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन, सभी लोग मौके पर हैं। उसके साथ साथ सभी जो मशीनरी है वो मशीनरी भी वहाँ पहुँच गई है, वहाँ काम चल रहा है और जल्दी से जल्दी निकालने की सबको कार्रवाई चल रही है।
0: हवा के कम दबाव का हल्का बनने के तनाजुर में ओडिशा में लगातार बारिश होने से बड़े दरियाओं में तुगयानी आ गई है और शिमाली जिलों में बैतरणी और बूढ़ा बलंगा दरियाओं से फिर से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। भद्रक में बैतरणी दरिया खतरे के निशान को पार कर गया है जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और भंडारी पोखरी में कई गाँव पानी से घिर गए हैं। हमारे नामा निगार ने बताया है कि हुक्काम सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब होने के अंदेशे के तनाजुर में जरूरी इकदामात कर रहे हैं।
1: ओडिशा में कई मकामात पर लगातार बारिश होने से सैलाब की सूरत हाल संगीन हो गई है। हवा के कम दबाव का हल्का बनने के जेर असर वहां बारिश हो रही है। कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। केंझार जिले में आनंदपुर के मकाम पर भी बैतरणी दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इस तनाजुर में हुकाम ने आसपास के कस्बों और गांवों के लोगों को चौकस कर दिया है और लोगों से कहा गया है कि वो महफूज मकामात पर चले जाएं। इधर चंपुआ में सैलाब के पानी से एक पुल बह गया है जिससे सड़क राबते में रुकावट पड़ गई है। बूढ़ा बलंगा दरिया में पानी चढ़ने की वजह से मयूरभंज और बालासोर जिले के निचले इलाकों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दाश की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: मगरबी बंगाल के साहिल पर हवा के गहरे दबाव का हल्का मगरिब शिमाल मगरिब में रफ्ता रफ्ता गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल की समत बढ़ रहा है। फिलहाल ये कोलकाता के तकरीबन 60 किलोमीटर मगरिब और मिदनापुर के 50 किलोमीटर मशरिक शिमाल मशरिक में मरकूज है। इसके जेर असर आज कई जिलों में तेज बारिश होने का इम्कान है। मशरिकी और मगरिबी मिदनापुर, झारग्राम, जनूबी 24 परगना

0: पुरुलिया और पश्चिम बर्धमान के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। माहीगीरों को सलाह दी गई है कि वो कल तक समंदर में ना जाएं। इधर शिमाली बंगाल में भी आज जलपाईगुड़ी और अलीपुर द्वार जिले में तेज बारिश होने की पेशगोई की गई है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज छत्तीसगढ़ में शदीद से लेकर इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। इधर गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी कहीं तेज और कहीं बहुत तेज बारिश होने के इम्कान के तनाजुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसमियात महकमे ने शिमाल मशरकी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने की पेशगोई की है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह का मौसम रहने की पेशगोई की गई है। उधर अंडमान निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में भी शदीद बारिश होने की पेशगोई की गई है। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों के मामले पर तलबा और मुलाजमत के उम्मीदवारों का एहतजाज आज 21वें दिन भी जारी है। मुजाहिरीन ने अपना एहतजाज खत्म करने से इनकार किया है और सीबीआई जांच और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल इम्तिहान को मनसूख करने के मुतालबे का इरादा किया। मुजाहिरीन ने 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने का भी ऐलान किया है ताकि इस मुजाहिरे को मजीद मजबूत बनाया जा सके। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में उम्मीदवारों का धरना जारी है। तलबा कल एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकालेंगे जिसमें रियासत भर के हजारों नौजवानों के इकट्ठा होने की तवक्को है। यौम आज़ादी की तकरीबात और इस बड़े तलबा मुजाहिरे के पेश नज़र रांची ज़िला इंतजामिया पूरी तरह चौकस है। तलबा की तिरंगा यात्रा के रास्ते पर और हसास मकामात पर बड़ी तादाद में पुलिस अहलकारों को तैनात किया गया है। कनाडा ओपन टेनिस में ईगा श्यांटेक ने एलेना रिबकीना को हराकर खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। कल रात टोरंटो में खेले गए फाइनल में सातवें नंबर की ईगा श्यांटेक ने दूसरे नंबर की खिलाड़ी एलेना रिबकीना को 6-2 और 6-3 से हराकर सीजन का अपना पहला टाइटल हासिल किया। इस तरह वो अब पूरे इतमाद के साथ यूएस ओपन टेनिस में कदम रखेंगी। इधर अमेरिका के बेन शेल्टन ने मर्दों का सिंगल्स टाइटल जीता है। उन्होंने मॉन्ट्रियल में खेले गए फाइनल में अपने हमवतन ब्रेंडन नाकाशिमा को 6-3 और 7-6 से शिकस्त दी। भारत नाइजीरिया के लागोस में मुनाकिदा दौलत मुश्तरका फेंसिंग चैंपियनशिप में शानदार 35 तमगे जीतकर मजमूई तौर पर चैंपियन बनकर उभरा है। भारतीय दस्ते ने अंडर 23 और सीनियर मुकाबलों में 13 सोने के, 8 चांदी के और 14 कांसे के तमगे हासिल किए हैं। भारत ने अपनी शानदार कारकर्दगी की बदौलत विल्किंसन सोड ट्रॉफी भी जीत ली है जो मजमूई तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले मुल्क को कॉमनवेल्थ फेंसिंग फेडरेशन की जानिब से की जाती है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया नीतिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास के आखिरी दिन से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, मानसून इजलास हंगामे की नजर, गैर मुयना मुद्दत के लिए मुलतवी, नीट पेपर लीक मामला छाया रहा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की जानिब से मुल्क के मोजिज फनकारों को साल 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप और अवार्ड तफवीज किए जाने से मुतालिक खबर को अखबारात ने अहमियत के साथ पहले सफ़े पर जगह दी है। रोजनामा प्रताप ने इस दौरान दिए सदर जमहूरिया के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि अवार्ड हासिल करने वाले फनकार मिलकर मुल्क का एक ऐसा सकाफती नक्शा पेश करते हैं जिसमें मुल्क की मिट्टी की कहानियां और गीत जुड़े हैं।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 80वीं यौम आज़ादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन मनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने फायर सर्विसेज और जेल महकमे में साबिक अग्निवीरों के लिए 20% कोटे की मंजूरी दी है और उम्र की हद में रियायत दी गई है। उत्तराखंड के चमोली जिले में जेर तामीर टनल में पानी के रिसाव और चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाक़े में 7 कारकुनों की मौत हो गई जबकि 14 जख्मी हुए। और कैनेडा

0: ओपन टेनिस में ईगा शांटेक ने एलेना रिबाकिना को हराकर ख्वातीन सिंगल्स का टाइटल जीता है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
5: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, आज 14 अगस्त का वो दिन जिसे याद करने पर हर भारतवासी की आंखें नम हो जाएं। हमारा देश 15 अगस्त को स्वतंत्र होने वाला था, लेकिन ठीक एक दिन पहले ही देश के विभाजन के कारण ऐसी हिंसा, ऐसा नरसंहार हुआ जो चाह के भी भुलाया नहीं जा सकता। देश के विभाजन की विभीषिका को याद रखने के लिए और इससे सबक लेकर आगे बढ़ने के लिए साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये दिन मनाने का आह्वान किया गया। तब से हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, आज है 14 अगस्त और आज हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहे हैं। आज जब हम स्वतंत्र हैं तो हमें विरासत में मिली इस स्वतंत्रता को और इससे पहले शहीद हुए उन करोड़ों लोगों को जिन्हें हम नहीं जानते, उनको हमारा शत शत नमन। जिन वीर सपूतों ने देश की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते फांसी को गले लगाया, उन वीरों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आज उनके बलिदान के कारण ही हम खुली हवा में सांस ले सकते हैं। श्रोताओं, 1947 में देश के बंटवारे ने एक ऐसी कील ठोंक दी है जो आज भी हमारे दिलों को चुभती है। न जाने कितनी माओं की गोद सूनी हो गई, अनगिनत बच्चे अनाथ हो गए, गांव के गांव जला दिए गए, ऐसी नफरत कि इंसान का इंसान से भरोसा ही उठ जाए। इस विभाजन का दंश आज हम भारतवासी महसूस करते हैं।

ऐसा नहीं है कि धरती वीरों से खाली हो जाए। उस समय भी अनेक लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाई। बहुत से परिवारों ने अपने घर के दरवाजे इन शरणार्थियों के लिए खोल दिए, जिनका अपना सब कुछ इस बंटवारे की भेंट चढ़ गया था। जो कभी अमीर थे, आज एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए। ये इतना गहरा घाव है कि आज भी दर्द देता है। साहिर ने लिखा था, ये किसका लहू है, कौन मरा, किस कौम के हैं ये दीन धर्म। आज जब हम इस दिन को याद करते हैं, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि कोई विभीषिका जीवन को नए सिरे से जीने की हौसले को ख़त्म नहीं कर सकती। वो लोग जो शरणार्थी बनकर दिलों में दर्द लेकर जी रहे थे, उन्होंने एक बार फिर से हिम्मत और हौसले के साथ अपने जीवन को संवारा, नए उद्योग लगाए, नए शहर बसाए और देश के विकास में अपना योगदान दिया। उनकी ये जीने की ज़िद हमें सिखाती है कि कोई भी परिस्थिति चाहे कितनी भयावह हो, कितनी ही कठिन क्यों ना हो, इंसान की हिम्मत और उसकी मजबूती के आगे टिक नहीं सकती। दोबारा वैसी हिंसा, वैसी नफरत ना हो, इसके लिए हमें सामाजिक सद्भाव और एकता की डोरी में बंधे रहना है। हिंसा और नफरत किसी भी देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। हमें भाईचारे और एकता के महत्व को समझना है। अपने बच्चों में भी हमें यही संस्कार डालने हैं कि हम सब भारतवासी एक हैं। चाहे हम अलग अलग मतों के हों, सबसे पहले हम एक हैं, क्योंकि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। 12 अगस्त से हर घर तिरंगा, ये जो आह्वान किया गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, इस पर हम आपसे यही कहेंगे कि कल 15 अगस्त को जब हम अपने घर पर तिरंगा फहराएं, तो उन शहीदों को ज़रूर याद करें जो 15 अगस्त की सुबह नहीं देख सके। आइए हम संकल्प लें कि हम सामाजिक सद्भाव को मजबूत करेंगे और अपने देश के प्रति समर्पित रहेंगे। जय भारत।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।
1: 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ, 8700014242।

0: 0001-4242 पर।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का ये पहला गाना हम आपको केसरी फिल्म से सुनवा रहे हैं। बोल हैं मनोज मुंतजिर के, संगीत शंकर एहसान लॉय का और आवाज़ बी प्राक की।

और अब अंत में हम आपको शहीद भगत सिंह फिल्म से ये रचना सुनवा रहे हैं। रचना है नक्श लालपुरी की, संगीत है जयदेव का और आवाज़ है शार्दुल सिकंदर की।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण, प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
2: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए फतेहपुर और चित्रकूट जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं फतेहपुर जिले की हलचल, आलेख और स्वर है नितेश श्रीवास्तव का।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फतेहपुर में अपने दौरे के दौरान करीब 489 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले फतेहपुर आकांक्षी जनपदों में शामिल था और विकास के मामले में प्रदेश में सबसे पिछड़े जिलों में इसकी गिनती होती थी। उन्होंने कहा कि उस समय ना तो बेहतर सड़कें थी और ना ही स्वास्थ्य सुविधाओं की उचित व्यवस्था थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। फतेहपुर जिले में भी करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश में हर जिले का समान रूप से विकास करना है।
4: विकास की योजना की बात होती है, सड़क हो, पुल हो, फ्लाईओवर हो, ब्रिजेज हो, बिजली हो, निवेश हो, हॉस्पिटल हो, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय हो या मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य, और वह आपके जनपद में होता है।
3: फतेहपुर जनपद के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक की अगुवाई में अपराध के रोकथाम के लिए कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक जुलाई महीने में पुलिस द्वारा 66 गुंडा एक्ट, 3 गैंगस्टर, 9 हिस्ट्री शीटर और 4 गैंगों का पंजीकरण कराया गया है। वहीं पुलिस मुठभेड़ के दौरान 6 साथी अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि
5: जो हमारी फतेहपुर पुलिस है उसमें जो आदतन अपराधी हैं उनके विरुद्ध हमने 66 ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनपे गुंडा की चलानी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसी के साथ साथ 3 गैंग्स पे हमने गैंग्स की कार्रवाई करवाई है। कुछ लोग हमने इसमें पकड़े भी हैं, निरुद्ध भी करे हैं। उसके साथ साथ इनकी जो अवैध संपत्ति है उनका भी चिन्हांकन करके जो अधिक की इसमें कार्रवाई की जाएगी।
3: इस महीने 17 अभियुक्तों पर इनाम घोषित किया गया है जिसमें 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। फतेहपुर जिले में कुल 64 गौशालाएं संचालित हैं, जिसमें लगभग 12,000 गौवंशों के रहने, खाने व मेडिकल की व्यवस्था पूरी तरह से की जा रही है। मॉनिटरिंग के लिए एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है जहां सीसीटीवी कैमरे की मदद से निगरानी की जा रही है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवव्रत गंगवार के मुताबिक जनपद में मौजूदा समय 64 गौ आश्रय स्थल संचालित है जिसमें 46 अस्थायी गौशालाएं हैं।
6: फतेहपुर में कुल हमारी इस समय वर्तमान में 64 गौ आश्रय स्थल संचालित है जिसमें हमारे 46 अस्थायी गौ आश्रय स्थल है। इसके अतिरिक्त हमारे 3 काजी हाउस हैं, 2 कान्हा हाउस हैं एवं ब्रद गो आश्रय स्थल हमारे 13 हैं, जिनमें सभी 64 गो आश्रय स्थलों में हमारे 12,000 गोवंश संरक्षित हैं। आदरणीय जिलाधिकारी महोदया एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय के दिए गए निर्देशों के क्रम में जल भराव एवं उसकी निकासी हेतु पर्याप्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अभी भी हमारे केवल 2 गो आश्रय स्थलों में जहां पानी की समस्या कुछ शेड में आ गया था उसको हमने पानी का निष्कासन दिया गया है।
3: जिलाधिकारी के निर्देश पर जल निकासी के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। फतेहपुर जिले में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पूर्ण विकसित रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जलंधर रेलवे स्टेशन से वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। करीब 33.10 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए गए स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है जिससे यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक सेवाएं मिल सकेंगी। पूर्ण विकास के बाद फतेहपुर रेलवे स्टेशन का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है। पहले स्टेशन पर 3 प्लेटफॉर्म थे जिन्हें बढ़ाकर अब 4 कर दिया गया है। स्टेशन परिसर में यात्री सुविधाओं का विस्तार करते हुए बेहतर प्रतीक्षालय, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, सुगम आवागमन, साफ सफाई और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की गई हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार स्टेशन के आधुनिकीकरण से यात्रियों को सुरक्षित, सहज और बेहतर यात्रा अनुभव मिलेगा। फतेहपुर जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने जिला अस्पताल में आयोजित कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग कर नवजात शिशुओं का केक काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उनकी माताओं को किट का वितरण भी किया एवं एक पौधा भी भेंट स्वरूप प्रदान किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम केवल एक उत्सव नहीं बल्कि समाज में बेटी के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण संदेश है। हमारी बेटियां परिवार, समाज और राष्ट्र की अमूल धरोहर हैं। आज की बेटियां शिक्षा, विज्ञान, खेल, प्रशासन, सेना, चिकित्सा और हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना तथा महिला एवं बाल कल्याण की अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनका उद्देश्य प्रत्येक बेटी को सुरक्षित, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है। सभी का दायित्व है कि इन योजनाओं का लाभ हर पात्र

0: परिवार तक पहुँचे।
1: फतेहपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं चित्रकूट जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजय प्रताप सिंह का।
2: चित्रकूट में प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग की करीब 84 करोड़ रुपए लागत वाली 31 परियोजनाओं की समीक्षा की। इनमें 15 परियोजनाएं अकेले चित्रकूट की हैं। मंत्री ने अधिकारियों को सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्ता तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। इन परियोजनाओं में प्रयागराज चित्रकूट, बांदा चित्रकूट और कौशाम्बी चित्रकूट मार्ग पर थीम आधारित प्रवेश द्वार, बेड़ी पुलिया से शंख चौक तक पर्यटन विकास, रामघाट पर कथा और तुलसी घाट पर आरती स्थल सहित कई धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों का विकास शामिल है। परानु बाबा आश्रम, मानिकपुर के लैना बाबा मंदिर, मारी माता मंदिर और बोड़ी पोखरी के सौंदर्यीकरण तथा हाई मास्ट लाइट लगाने के कार्य भी प्रस्तावित हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों के साथ चित्रकूट की धार्मिक और सांस्कृतिक गरिमा सुरक्षित रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। 1 करोड़ रुपए तक की निर्माणाधीन परियोजनाओं को नवम्बर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं करीब 8 करोड़ रुपए लागत से परंपरा वन स्टॉप सेंटर फॉर टूरिज्म एंड कल्चर विकसित किया जा रहा है, जहां पर्यटकों को एक ही स्थान पर पर्यटन, संस्कृति और विरासत से जुड़ी जानकारियां और सुविधाएं मिल सकेंगी। चित्रकूट में औद्योगिक विकास की नई राह खुलने जा रही है। रामसैया के पास हरसौली, रानीपुर, खाकी और संग्रामपुर गांवों में करीब 50 एकड़ भूमि पर सरदार वल्लभ भाई पटेल औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की तैयारी अंतिम चरण में है। जिला प्रशासन ने प्रस्ताव की रिपोर्ट शासन को भेज दी है। शासन से मंजूरी मिलते ही आगे की कार्रवाई शुरू होगी। करीब 3 साल के इंतजार के बाद सामने आए इस प्रस्ताव को चित्रकूट के साथ पूरे बुंदेलखंड के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में बड़े उद्योगों के साथ MSME इकाइयों को भी स्थापित किए जाने की योजना है। प्रशासन की कोशिश है कि हिंडालको, NTPC और NCL जैसे बड़े औद्योगिक समूहों के निवेश के लिए आकर्षित किया जाए। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होने के साथ कारोबार और परिवहन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग चिन्हित भूमि का कई बार निरीक्षण कर चुके हैं और पहुँच मार्ग समेत जरूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है।
3: जनपद में न्यूनतम 50 एकड़ भूमि जो जनपद मुख्यालय के 20 किलोमीटर के अंतर्गत हो उसे ढूंढा जाए, जहाँ पे इस प्रकार का इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जा सकता है। और उसके लिए रामसैया भूमि जो है चिन्हित की गई है, उसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। प्रस्ताव शीघ्र तैयार करके उसे शासन भेजा जाएगा।
2: देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता के संदेश के साथ चित्रकूट में हर घर तिरंगा अभियान 2026 जोश व उत्साह के साथ जारी है। अभियान के तहत जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM के स्वयं सहायता समूहों द्वारा 1,20,000 राष्ट्रीय ध्वजों का निर्माण और वितरण किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार समयबद्ध तरीके से ध्वजों का निर्माण और वितरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण भारतीय ध्वज संहिता और निर्धारित मानकों के अनुरूप करने तथा गुणवत्ता और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का भी विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। 9 अगस्त से शुरू है यह आयोजन, 17 अगस्त तक चलेगा। इस अभियान में भौतिक और डिजिटल दोनों माध्यमों से जन भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराने के साथ वंदे मातरम का गायन कर सकते हैं और तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी डिजिटल अभियान में साझा कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने जनपद वासियों से राष्ट्र प्रेम, एकता और गौरव के इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। बीते दिनों जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया। राजकीय जिला पुस्तकालय में संचालित इस कोचिंग सेंटर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को निःशुल्क मार्गदर्शन और अध्ययन की सुविधा मिलेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि सत्र 2025-26 में 301 विद्यार्थियों के पंजीकरण के मुकाबले नए सत्र 2026-27 में 360 छात्र छात्राओं ने पंजीकरण कराया है, जो योजना के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।
3: हमारे यहाँ इस समय भी पंजीकरण पूर्ण रूप से खुला हुआ है। अभी भी कोई बच्चे चाहते हैं तो वो प्रवेश यहाँ पे कर सकते हैं। सभी परीक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क है और हमने प्रयास किया है कि सबसे बेहतर टीचर्स को, हमने हर एक टीचर को यहाँ इंटरव्यू किया गया। आप सबके लिए ही कोचिंग आयोजित की जा रही है, अच्छी शिक्षा मिले उद्देश्य यही।
2: कार्यक्रम में विद्यार्थियों को अनुशासन, नियमित अध्ययन और सकारात्मक सोच के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया गया। विद्यार्थियों से नियमित रूप से 8 से 10 घंटे अध्ययन करने, सोशल मीडिया से अनावश्यक दूरी बनाए रखने और इंटरनेट का उपयोग ज्ञानवर्धन के लिए करने का आह्वान किया गया है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: लीजिए सुनिए समूह स्वरों में देशगान।
1: मुक्ति के संघर्ष का

अभी आप समूह स्वरों में देश गान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 9:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा।

0: पेश खिदमत है उर्दू कार्यक्रम।
1: आज की उर्दू बज्म लेकर मैं आपका मेजबान सैयद मोहम्मद उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब, कबूल फरमाएं। सामीन, योम आज़ादी हर कौम की तारीख का वो दरख्शा बाब है जो कुर्बानी, जद्दोजहद, अज़्म और हौसले की लाजवाल दास्तान सुनाता है। कल मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाया जाएगा, जिस पर पेश की मुबारकबादी कबूल हो। दोस्तों, बिलाशुबा 15 अगस्त का दिन हमें उन अजीम मुजाहिदीन आज़ादी की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके हमें एक आज़ाद वतन अता किया। ये दिन जश्न मनाने के साथ साथ अपने माजी को याद करने, हाल का जायज़ा लेने और मुस्तकबिल के लिए अज़्म नो करने का दिन भी है। सामीन, आज अहदे हाजिर अपनी तेज़ रफ्तार तब्दीली, साइंसी तरक्की, डिजिटल इनकलाब, माहौलियाती चैलेंजेस और समाजी तब्दीलियों का अहद है। ऐसे हालात में आज़ादी का मफहूम सिर्फ सियासी खुद मुख्तारी तक महदूद नहीं रहता, बल्कि इसका ताल्लुक कौमी किरदार, समाजी जिम्मेदारी, आईन और कानून का एहतराम, तालीम, अखलाक, इत्तिहाद और कौमी यकजहती से भी जुड़ जाता है। लिहाजा एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से हमारा फ़र्ज़ है कि हम मुल्क के कवानीन का एहतराम करें, कौमी वसाइल की हिफाजत करें, फ़िरका वराना हम आहंगी और गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग दें, माहौलियात के तहफ़ुज़ में अपना किरदार अदा करें और अपनी दयानतदारी, मेहनत और खिदमत के ज़रिए मुल्क की तरक्की में हिस्सा लें। ख़ास तौर से नौजवान नस्ल पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इल्म, तहकीक, इख्तिरा और मुस्बत फिक्र को अपना सरमाया बनाए और हिंदुस्तान को तरक्की, अमन और खुशहाली की नई मंजिलों तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करें। इन्हीं सब बातों के पेश नज़र आज हमने अहतमाम किया है एक मुबाहिसे का। मौजू है अहदे हाजिर में योम आज़ादी और हमारी जिम्मेदारियाँ। इस उन्वान पर गुफ्तगु करने के लिए आज की उर्दू बज़्म में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा डॉक्टर हुमा याकूब साहिबा और साथ ही साथ मशहूर शायर जनाब यासीन इब्न उमर साहब और नाचीज सैयद मोहम्मद उमर। हम सबसे पहले अपने दोनों खसूसी मेहमान का आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और अब बग़ैर किसी तमीद व ताखिर डॉक्टर हुमा याकूब साहिबा से सवाल है। हुमा साहिबा, अहद हाजिर में आज़ादी का क्या मफहूम है? आज़ादी के मफहूम में क्या कोई तब्दीली आई है? आज के दौर में एक जिम्मेदार शहरी होने के तकाजे क्या क्या हो सकते हैं? हमारे सामीन के लिए इसकी वजाहत फरमाएं।
2: सबसे पहले तो शुक्रिया मोहम्मद उमैर साहब, आपने मुझे इनवाइट करा आज के प्रोग्राम के लिए और मैं हिंदुस्तान के तमाम साथियों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। पेश की मुबारकबाद, कल 15 अगस्त है तो तमाम साथियों को यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जहाँ तक जो सवाल उमैर साहब ने मुझको करा है, मैं कहना चाहूँगी कि आज़ादी का मतलब तो एक तरह से देखा जाए, उस वक्त जब हमें आज़ादी मिली तब जो हमारा इमीडिएट कंसर्न था वो था अंग्रेजों से आज़ादी। लेकिन तब से अब तक हम ये देखते हैं कि जो हमारा जब आईन तश्कील हुआ तो उसमें जो बातें रखी गईं वो तमाम लोग जो आईन को लिखने में लगे और खास तौर पे उसकी जो कहना चाहिए लीडरशिप रही हमारे डॉक्टर बीआर अंबेडकर साहब के हाथों में, तो जो तमाम बातें हमारे आईन में लिखी गईं, मैं सोचती हूँ वो इतने विजनरी लीडर्स थे कि उन लोगों ने जो बातें उस वक्त जो उन्होंने सोची वो आज भी हमारे लिए एकदम हकीकत है। और अगर हम उन तमाम चीजों का पास रखें जो उसमें हमारे आईन में, कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई हैं, तो बहुत सारी परेशानियों से हम लोग दूर रह सकते हैं।
1: तो बहुत उम्दा बात आप कह रही हैं कि आज आज़ादी का मफहूम सिर्फ सियासी खुद मुख्तारी तक

0: की जो गंगा जमनी तहजीब है, और मैं कहूंगी कि यही उसकी एक बहुत यूनिक आइडेंटिटी है, एक पहचान है। और इस तरह की गंगा जमनी तहजीब और इस तरह की एक नेशनल इंटीग्रेशन की मिसाल हमें शायद किसी और दूसरे डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं मिलती है। तो इसके लिए तालीमी इदारे बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि जो आज के दौर में तो मैं ये देखती हूँ कि जब भी हम लोगों का नया सेशन शुरू होता है तो उसमें एक दीक्षारंभ प्रोग्राम, जिसको हम कह सकते हैं स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम होता है, तो उसमें हम हमेशा इस तरह का शेड्यूल और सिलेबस में भी हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं इस तरह की चीजें कि जिसमें कि हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की बात करें। हम अपने तालिब इल्मों को ये सिखाएं कि अमन और तमाम पीस और इस तरह की चीजें जो वैल्यूज हैं, जिनको हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज कहते हैं, तो उनको अगर हम इम्पार्ट करते हैं, हम अपने तालिब इल्मों को देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो आगे चल करके ना सिर्फ ये कि वो जो भी कोर्स कर रहे हैं वो उसको मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह से करेंगे, बल्कि उनका एक समाजी ढांचे को भी हम सुधार सकते हैं और आगे चल करके वो ना सिर्फ ये कि जिम्मेदार शहरी बनेंगे, बल्कि अपनी जो भी उनकी फील्ड है उसमें भी वो आगे चल करके आला मकाम हासिल करेंगे। और इसी तरह से जो कौमी तंजीमें हैं या और दीगर इदारे हैं, वो तमाम लोग वो बहुत मेजर रोल अदा कर सकते हैं हमारे जो तालिब इल्म है या हमारा जो एक नौजवान तबका है उनको सही रास्ता दिखाकर।
1: तो बहुत उम्दा बात आपने कही कि आम शहरी मोहब्बत, रवादारी और बाहमी एहतराम को फरोग दें, तालीमी इदारे अखलाकी कौमी तालीम पर खास तौर से तवज्जो दें, जबकि समाजी तंजीमें मुख्तलिफ तबकात को करीब लाने और उनकी सरगर्मियों को मजीद बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ एहतमाम करें ताकि उनकी सरगर्मियों से मुल्क को मजीद तरक्की मिले। यही तमाम चीजें कौमी इतिहास को मजबूत से मजबूत तर करेंगी। ये बात आप कह रही हैं, बहुत ही उम्दा चीजें आपने यहाँ पर पेश की हैं। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए वक्फा लेंगे। इस वक्फे में हमारे साथ मशहूर शायर जनाब यासीन इब्ने उमर तशरीफ रखते हैं। हम शायर साहब से दरख्वास्त करेंगे कि योम आज़ादी के हवाले से चंद अशआर पेश फरमाएं।
2: बहुत शुक्रिया उमर साहब। सबसे पहले तो तमाम सामईन को और मुल्क के तमाम हमारे भाई बहनों को मैं योम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसी हवाले से चंद अशआर हाजिर करता हूँ। तरन्नुम।

0: पर तशरीफ फरमाएं। एक सवाल और हुमा साहिबा से लेंगे। हुमा साहिबा, नौजवान नस्ल पर आज़ादी की हिफाजत और मुल्क की तरक्की के हवाले से कौन सी अहम जिम्मेदारियां इस वक्त आयद होती हैं? इस सिमत में उन्हें कैसे तैयार किया जा सकता है, इस पर आप रोशनी डालें।
1: अभी जो यासीन साहब बहुत उम्दा कुछ चंद अशार पेश कर रहे थे, और ख़ास तौर पे जो मेरे दिल को छू गई वो लाइन ये थी कि जो दिलों को जोड़ दे उस ज्ञान की बातें करो।
0: बहुत खूब।
1: तो मैं सोचती हूँ कि मौजूदा नस्ल को सबसे ज़रूरी ये है कि हम उनको सही दिशा, सही डायरेक्शन दें, कि ऐसा इल्म दें कि जिससे कि वो आगे बढ़ें, और न सिर्फ ये कि खुद आगे बढ़ें बल्कि हमारे मुल्क को, हिंदुस्तान को और आला काम पर पहुंचाएं। तो बस जरूरत इस बात की है कि हम इन नौजवानों को हम सही रास्ता दिखा सकें, हम ये बता सकें कि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारा ही मुल्क है कि हमको इसको आगे बढ़ाना है। और जैसे कि आपने शुरुआत में बात करी थी माहौलियात की, कि बहुत ज्यादा सबसे बड़ी जो आज एक हमारे लिए कंसर्न है वो है क्लाइमेट चेंज की। हम बातें करते हैं, हम ये देख रहे हैं किस तरह से चीजें हमारे जो एनवायरमेंट को असर कर रही हैं।
0: तो बहुत उम्दा बात आप नौजवानों के ताल्लुक से कह रही हैं कि नौजवानों को तालीम, तहकीक, हुनर, दयानतदारी और मेहनत को अपना शियार के तौर पर देखना चाहिए और इसमें अपना वक्त उनको लगाना चाहिए। सोशल मीडिया का जिम्मेदाराना इस्तेमाल वो करें, कौमी अकदार को अपनाएं और मुल्क की तरक्की में फ़ाल किरदार अदा करें, तो ये नौजवान नस्ल के लिए आपने बहुत ही उम्दा बात कही है। एक और यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि आप भी देख रही हैं कि डिजिटल दौर है, तो डिजिटल दौर के अंदर कैसे हम आगे तरक्की कर सकते हैं, इस पर एक सवाल है कि डिजिटल दौर में सोशल मीडिया राय आम्मा की तश्कील का एक मौसर जरिया बन चुका है। इसके मुस्बत इस्तेमाल के जरिए हुब्बुल वतनी, कौमी शियार और जिम्मेदार शहरी होने के एहसास को किस तरह मजीद फरोग दिया जा सकता है, इस पर आप क्या कहती हैं?
1: उमर साहब, आपने जैसे फरमाया कि इस डिजिटल दौर में हम देख रहे हैं कि ये एक बहुत ही मजबूत एक मीडियम है जिसके जरिए हम चाहें तो बहुत कुछ लोगों को दे सकते हैं, लेकिन इसका सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। कभी कभी होता ये है कि हम लोग बहुत गैर जिम्मेदार तरीके से कोई बात ऐसी लिख देते हैं जिसका गलत असर समाज के ऊपर पड़ता है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने जो नौजवान लोग हैं उनको इस चीज के बारे में एजुकेट कर सके कि हमें किस तरह से डिजिटल दौर में किस तरह से सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना है, ताकि जितने भी लोग हैं ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठा सके।
0: तो बहुत अच्छी बात आप कह रही हैं कि सोशल मीडिया पर दुरुस्त मालूमात, कौमी कामयाबियों, आईनी अकदार, समाजी हम आहंगी और मुस्बत पैगामात को आम किया जाए, उसको फैलाया जाए, जबकि अफवाहों, नफरत अंगेज मवाद और गलत इत्तलास से बचा जाए, इज्तिनाब किया जाए, तो ये मुल्क की तरक्की में अहम किरदार हो सकते हैं डिजिटल दौर के ताल्लुक से। बहुत अच्छी बात आपने कही। यहाँ फिर एक और वक्फा लेंगे और यासीन इब्न उमर साहब से दरख्वास्त करेंगे कि अपना एक कलाम मजीद पेश फरमाएं।
2: बहुत शुक्रिया उमर साहब। इसी हवाले से मैं एक नज्म हाजिर करना चाहूँगा। नज्म का उन्वान है, ऐ मेरे हिंदुस्तान
0: जी।

0: करो।
1: बहुत खूब, बहुत ही उम्दा आपने अपने कलाम को पेश किया। अभी आप यासीन इब्ने उमर साहब का कलाम समाप्त फरमा रहे थे। हम फिर अपने प्रोग्राम की तरफ वापस पलटते हैं और हमारे साथ में डॉक्टर हुमा याकूब साहिबा।

0: हिंदुस्तान।
1: बहुत खूब, बहुत ही उम्दा ए मेरे हिंदुस्तान। अभी आप समाज फरमा रहे थे यासीन इब्ने उमर साहब से। अभी फिर हम अपने उसी प्रोग्राम की तरफ फिर से वापस आते हैं जहां हम योम आज़ादी के ताल्लुक से आपसे गुफ्तगु कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत कर रही हैं डॉक्टर हुमा याकूब साहिबा। एक और आपसे आखिरी सवाल करेंगे कि आपके नज़दीक अगर हर शहरी अपनी जिम्मेदारी को पूरी दयानतदारी के साथ में अदा करता है तो हिंदुस्तान को आप किस शक्ल में देखती हैं आने वाले वक्त में, और आज हमारे सामीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी, वजाहत फरमाएं।
2: मैं सोचती हूँ कि आज के वक्त में अगर हर इंसान अपनी जिम्मेदारियों को समझे और अपने हुकूक को भी जाने, क्योंकि इल्म हासिल करने का मकसद ही यही होता है कि हमें ज्यादा आगाही हो हर चीज की कि हमारे हुकूक क्या हैं और हमारे फराइज क्या हैं। और आज का पैगाम भी मेरा तमाम लोगों के लिए यही है कि सब लोग मिलजुल कर रहें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, एक दूसरे के लिए दिल में जगह रखें। यही मेरा पैगाम है आज के।
1: तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि हर शहरी अगर अपनी जिम्मेदारी को अदा करता है तो हिंदुस्तान आगे चलकर तरक्की याफ्ता शक्ल में दिखाई देगा। यहाँ पर आखिरी मर्तबा हम यासीन साहब से दरख्वास्त करेंगे कि हुब्बुल वतनी पर अपना कलाम पेश फरमाएं।
3: जश्न आज़ादी के हवाले से चार मिसरे देखें।
4: त्योहार पुर बहार है ये 15 अगस्त, एक जश्न शानदार है ये 15 अगस्त। आया है साल बाद बड़े धूम धाम से, खुशियाँ लिए अपार है ये 15 अगस्त। 150 साल

0: अगस्त एक जश्न शानदार है ये 15 अगस्त।
1: सामिन, अभी आप यासीन इब्ने उमर साहब से 15 अगस्त के हवाले से एक कलाम समाअत फरमा रहे थे। सामिन, आज के मुबाइसे का लुब लुबाब निचोड़ यही है कि योम आज़ादी सिर्फ माजी की कुर्बानियों को याद करने का दिन नहीं बल्कि हाल का एहतसाब और मुस्तकबिल की तामीर का अहद भी है। आज़ादी की हकीकी हिफाजत सिर्फ सरहदों पर नहीं होती बल्कि हर शहरी के किरदार, दयानतदारी, कानून की पासदारी, कौमी यकजहती, समाजी हम आहंगी और अपने फराइज की अदायगी से होती है। और अब हम अपने दोनों खुसूसी मेहमान मोहतरमा डॉक्टर हुमा याकूब साहिबा और जनाब यासीन इब्ने उमर साहब के बे इंतहा ममनून और मशकूर हैं कि आप हजरात ने हमारे सामीन के लिए बहुत ही अच्छी मालूमात फराहम की। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। अपने मेज़बान दोस्त सैयद मोहम्मद उमेर को दीजिए इजाज़त। आदाब।
2: उर्दू कार्यक्रम समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग। कार्यक्रम में आज लीजिए सुनिए पूजा तोमर के गाए कुछ अवधि।
3: मीडियम वेव 292

0: 4.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी प्रयागराज है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: लीजिए सुनिए आशुतोष श्रीवास्तव के गाए भजन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में ये सबसे पहली रचना हम आपको सुनवा रहे हैं मीराबाई की, आशुतोष श्रीवास्तव के स्वर में।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार थे आशुतोष श्रीवास्तव। आप सुन रहे थे इनके गाया भजन। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: 14 अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
0: ये आकाशवाणी प्रयागराज है। ठीक 10 बजे आप सुनेंगे समाचार।

0: ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर होगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने विभाजन को इतिहास का वो क्षण बताया जिसने कई जिंदगियों को तहस नहस कर दिया, अपनों को खो दिया गया और असहनीय पीड़ा भी सहनी पड़ी। श्री मोदी ने कामना की कि ये दिन सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 14 अगस्त 1947 का दिन इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक का गवाह है, जिसमें लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और अमानवीय पीड़ा सहनी पड़ी। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों को अपने घर, संपत्ति और प्रियजनों को छोड़कर विस्थापित होना पड़ा। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ जारी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के कैडेटों ने शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से अधिक नौकाओं पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि यह व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है और सीबीआई जांच तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा रद्द करने की अपनी मांग दोहराई है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। उत्तरी ओडिशा की कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। इस महीने की 20 तारीख के आसपास एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम के 6 जिलों के लिए तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल स्वियाटेक ने एलेना रायबकिना को सीधे सेटों में हराया। पुरुष सिंगल्स में अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बेन शेल्टन ने मॉन्ट्रियल में अपने हमवतन खिलाड़ी ब्रेंडन नाकाशीमा को हराकर खिताब जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 107.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी प्रयागराज है। प्रस्तुत है कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर जीएस तोमर से की गई अभिनव

0: प्रज्ञा पांडे की बातचीत का दूसरा भाग।
1: श्रोताओं, वॉइस ऑफ प्रयागराज के पिछले अंक में आपने सुना प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर जीएस तोमर से बातचीत का पहला भाग। आइए सुनते हैं आज इसका दूसरा भाग। डॉक्टर साहब, युवाओं पर हम इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि आज का अगर हम दौर देखें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई बाहरी दुनिया से प्रभावित है वो है युवा। जो सबसे जल्दी प्रभावित होते हैं वो है युवा, और जिनके प्रभावित होने से पूरा देश सबसे जल्दी प्रभावित होता है वो भी हैं युवा। आज के समय में अगर हम देखें तो डिप्रेशन यानी कि अवसाद, ये एक बहुत ज़रूरी प्रश्न बन जाता है, बहुत कॉमन हो गया है। ये लगभग हर तीसरे चौथे युवा को इसकी समस्या होती है। अलग अलग कारण हो सकते हैं, और कई बार ये भी मुझे पता चला कि बिना कारण के भी अवसाद हो सकता है। क्या हम अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करके आयुर्वेद को किसी भांति शामिल करके इससे उबर सकते हैं, या फिर वो दवाएं जो अक्सर दी जाती हैं अवसाद के रोगियों को वो खानी ही पड़ेंगी लंबे समय तक?
2: अवसाद के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद में चार मेद रसायन बताए गए हैं। मेद रसायन माने ब्रेन टॉनिक्स, मंडूकपर्णी जिसे ब्राह्मी का प्रतिरूप मानते हैं, ब्राह्मी का एक अंग है, ब्राह्मी का एक भेद है, और शंख पुष्पी, किलोए और मुलेठी, ये चार मेद रसायन होते हैं जो आपको धीधृति स्मृति चारों की वृद्धि करते हैं, तो इस प्रकार के रोगियों के लिए अमृतवत फलदायी हैं, पहली बात। और दूसरी बात, योग भी आयुर्वेद का एक अंग है। उस योग में अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, प्राणायाम एक ऐसी परंपरा है, एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और साथ साथ में ध्यान, क्योंकि जो हमारी जो चक्र है हमारे मूलाधार, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार, इन चक्रों का अध्ययन हमने करके देखा, और साथ साथ में हमने चार जो हमारे जो कोष होते हैं, अन्नमय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष, ये सारे जो आनंदमय कोष, इन कोषों का बड़ा उल्लेख है। यदि हम आयुर्वेदी सिद्धांतों के अनुसार अपने खान पान को नियमित रखें, संयमित करके रखें, साथ में निद्रा, नींद को भी हमारे यहाँ कहा गया है धात्री, ये जीवन देने वाली है, तो आपको नींद आना चाहिए। नींद में सामान्य रूप से कैसी नींद आना चाहिए, इसे हम कहते हैं डीप स्लीप, गहरी नींद। एक नींद ऐसी होती है कि हम रात भर सपने देखते रहते हैं, सवेरे सो के उठते हैं तो हम अपने आप को तरातजा महसूस नहीं करते जी। एक डीप स्लीप ऐसी होती है कि दो घंटे के बाद भी हम कहते हैं कि बहुत अच्छी नींद आई। तो इस प्रकार की स्लीप को लेने के लिए हमको शवासन का अभ्यास करना चाहिए। शवासन के अभ्यास से आपको नींद अच्छी आएगी, और नींद अच्छी आएगी तो आपको लाभ मिलेगा।
1: नींद आना बहुत ज़रूरी है जी। एक और प्रश्न उठता है डॉक्टर साहब कि आपने ध्यान की बात की, योग अब पूरी दुनिया में पूरे विश्व पटल पर स्थापित हो चुका है। हालांकि पहले से भी बहुत सारे लोग इसको जानते थे, लेकिन अब हर 21 जून को योग दिवस मनाया जाने लगा है। क्या ये भी एक हिस्सा होना चाहिए हमारी जीवन शैली का, खासकर अगर हम युवाओं की बात करें तो?
2: हाँ, निश्चित रूप से योग को आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू किया है। और इसका कारण क्या था, 21 जून को, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, और योग का प्रयोग हमारे जीवन काल की मर्यादा बढ़ाने के लिए किया जाता है। और इसमें नियमित रूप से हम तीन तरह की चीज़ें सजेस्ट करेंगे, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, प्राणायाम, जिसको हम सदाबहार प्राणायाम कहते हैं, और साथ साथ में वर्टिबल कॉलम को जितना इलास्टिक आप रखेंगे उतने अपने आप को आप लंबे समय तक जीवित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे झुकने वाले आसन, पीछे झुकने वाले आसन, और साइड में झुकने वाले आसन, और ट्विस्ट करने वाले आसन, इनको हम समावेश करें, एक एक दो दो आसन, 20 से 25 मिनट का योगावासन का अभ्यास प्रतिदिन अपने आप में बहुत लाभकारी है, इसका हम प्रयोग करें। और मेडिटेशन, ध्यान करें, ये अपने आप में बहुत लाभकारी है, इसको हम प्रयोग कर सकते हैं, इससे हम अपने आप को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं, बहुत उत्कृष्ट कोटि का योग उपाय है।
1: किसी के पास समय ना हो तो?
2: समय नहीं है तो इसके लिए भी हमने व्यवस्था करके रखी है कि यदि आप सवेरे सो के उठते हैं तो ब्राह्म मुहूर्त में उठने के बाद अनुलोम विलोम के लिए किसी टीचर की जरूरत नहीं है। आप 5 मिनट का श्वास अभ्यास करें, श्वास का एक सांस से सांस लें, दूसरे से छोड़ें, लें छोड़ें, रोकना नहीं है। और नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए किसी का अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, 5 मिनट का टाइम देना है, 1:4:2, 10 तक गिनती गिनती हुए सांस खींचें, 40 तक रोकें और 20 तक दूसरी नासिका से छोड़ें, 10, 40, 20, ये अभ्यास आप कर लेंगे बहुत आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात, ऑफिस अवर्स में, लंच अवर्स में आप बैठ करके निस्पंद भाव करें। निस्पंद भाव का अभ्यास का मतलब होता है एक सामान्य आसन में बैठ जाएं, हाथ पैरों को ढीला छोड़ दें, एंटी ग्रेविटी फोर्स मिनिमाइज करें, श्वास प्रश्वास धीरे धीरे लें, 2 मिनट का निस्पंद भाव 1 घंटे की स्लीप के बराबर होता है।
1: क्या बात है।
2: और रात्रि में सोते समय शवासन का अभ्यास करें, इसके लिए समय निकालने की जरूरत नहीं।
1: तो एक अभ्यास और करते हैं संगीतासन का, और एक गीत हम आप

0: से फिर चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं से अगर कुछ साझा करना चाहें।
1: यद्यपि मैं इस समय 70 साल की अवस्था में पार कर चुका हूँ, मैं 71वें साल में चल रहा हूँ, लेकिन एक गीत मुझे बहुत पसंद है,
0: जी
1: वो आपको सुनाना चाहता हूँ, लग जा गले।
0: क्या बात है लता
1: इस
0: जी की
1: गाने को
0: आवाज़ में।
1: जरा

0: बहुत ही प्यारा गीत था रॉक साहब, और हमें लगता है कि जब तक ये दुनिया रहेगी ये गीत उसी तरह से सुना जाता
1: जी
0: रहेगा लता जी की आवाज़ में। खैर
1: जी
0: डॉक्टर साहब, कई सारे ऐसे हमारी जीवनचर्या में शामिल रही हैं चीज़ें जिन्हें आज हम भूल गए हैं। हम चाहेंगे कि आप कुछ ऐसे टिप्स हमारे श्रोताओं को दें कि वो अपने दैनिक जीवन में, मतलब उसमें बहुत अधिक समय भी नहीं लगता, बहुत अधिक पैसे भी नहीं लगते, बहुत अधिक मेहनत भी नहीं लगती। जैसे हमारे एक मित्र हैं खालिद भाई, उन्होंने कहा कि अगर आप सुबह उठने के बाद एक चुटकी में जितनी मंगरेल या कलौंजी

0: जिसको कहते हैं, उसको आप खा करके पानी से निगल जाइए तो जीवन में आपको कोई रोग नहीं होगा। क्या ये सही है? और इस तरह की और भी कुछ चीज़ें जो आप हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहें जिनको वो अपने जीवन में शामिल करके रोगों से बच सकें।
1: हाँ देखिए, एक बहुत सामान्य समस्या मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि आयुर्वेद की औषधियों के जो लाभ हैं बहुत ही उत्कृष्ट लाभ होते हैं। सामान्य रूप से जैसे वृद्धावस्था की अवस्था है, लोगों को जोड़ों में दर्द होता है,
0: जी
1: तो मैं तो लोगों को उनके आसपास उपलब्ध वनौषधियों का चिकित्सीय प्रयोग के बारे में जानकारी देता हूँ। तो अगर आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, ये बरसात का मौसम है, इसमें बात बढ़ता है, आज हमारे पास 70% से अधिक रोगी इसी के आ रहे हैं जोड़ों के दर्द के, तो मैं उनको बताता हूँ कि आपके घुटने में अगर दर्द हो रहा है तो रैणी के पत्ते को या मदार के पत्ते को तवे पे अच्छी तरह से तेल से सेक लें, चाहे वो तिली का तेल हो या सरसों का तेल हो, और गर्म करके उस पत्ते को घुटने पे बांध करके अपना एक पोलिस्टर के कपड़े से बांध लें, और जब तक आप जग रहे हैं बना रहने दें, जब वो ठंडा हो जाए तो उसको हटा दें। सवेरे सो के उठने के बाद जो आपको परेशानी होती थी उससे आपको निजात पा जाएंगे। दूसरी बात, फंगल इन्फेक्शन बहुत हो रहा है,
0: जी
1: तो फंगल इन्फेक्शन में हम क्या करते हैं कि मदार के दूध को आप एक चोला निकाल लें करीब 10 ml, और 50 ml तिल्ली या सरसों के तेल में उसको गर्म में पका दें। मदार का तेल जल करके काला काला छा जाएगा ऊपर, छान के रख लें, और किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो आप लगा देंगे, तुरंत आपको आराम मिलेगा।
0: अच्छा
1: कब्ज की शिकायत लोगों को बहुत अधिक होती है, तो उनको सामान्य समस्या बताता हूँ मैं। 4 मुरक्का, 2 अंजीर 1 गिलास दूध में पका के ले लें। जिनको दूध पीने से एलर्जी होती हो वो केवल मुनक्का को तवे पे भून करके काला नमक लगा करके सेवन करें, तो आपको सामान्य रूप से कुछ दिनों के बाद में आपकी प्रवृत्ति सामान्य हो जाएगी, मतलब प्रवृत्ति, आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: एलर्जी के लिए है
1: गैस की समस्या बड़ी कॉमन है,
0: जी।
1: तो गैस की समस्या के लिए कारण क्या होता है कि हमारा खान पान बदल गया है, हम रात को देर से खाना खाते हैं, और खाना के बाद में तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। भोजनान्ते विषमवारी, भोजन के अंत में तुरंत आपने पानी पी लिया तो पाचन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पाचक अम्ल वगैरह डाइल्यूट हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं गैस के लिए कि बड़ी इलायची को तवे पे भून करके उसको बीज को पीस करके मिश्री मिला करके, अगर आपको शुगर है तो मिश्री जगह सौंफ मिलाएं, और एक चुटकी आपने खाना खाने के बाद ले लिया तो गैस की समस्या से आप मुक्त हो जाएंगे। ये हम प्रयोग कर सकते हैं। और सामान्य रूप से जैसे आपने मगरेल की बात कही,
0: जी
1: मगरेल हमारे यहाँ जो है चतुर्बीज जो हमारे यहाँ होता है, ये डायबिटीज़ की सबसे महत्वपूर्ण दवा है।
0: अच्छा
1: तो हमको चाहिए कि डायबिटीज़ के जो रोगी हैं उन लोगों को जामुन का बीज सर्वोत्तम औषधि है। जामुन का बीज, करेला, मेथी, तेजपत्ता, ये सारी चीज़ें हमारी औषधियाँ हैं, लाभ करती हैं। और परवल और कुंदरू का साग उन लोगों के लिए अमृतवत फलदायी है, इसका हम प्रयोग करें। और बरसात में विशेष रूप का एक चीज़ का ध्यान रखें कि हितभुक, मितभुक, ऋतुभुक और अशाक भुक, ये वैदिक उपदेश है।
0: जी
1: हितभुक का मतलब वही चीज़ का सेवन करें जो आप पचा सकें, आपके लिए लाभकारी हो। मितभुक, 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी खाएं, 3 की भूख है तो 2 खाएं। और अशाक भुक, पत्ते वाले साग सब्जी बरसात ऋतु में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, कि ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं कीड़ों से और आपको बीमारी पैदा कर सकते हैं। और ऋतुभुक माने ऋतु के अनुकूल भोजन करें। अब इस समय ऋतु में अगर हम बाजरे की रोटी खाएंगे तो नुकसान करेगा, सर्दियों में हम बाजरे की रोटी खा सकते हैं, तो ऋतु के अनुकूल भोजन करें। 100 किलोमीटर की परिधि में मिलने वाले अन्नपान का हम सेवन करें। हम नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं और साउथ इंडियन डिशेज रोज खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं उसी क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली औषधियाँ, उसी क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली हमारी खाद्य पदार्थ हमारे लिए लाभकारी।
0: मतलब ये जो कहावतें चली आ रही हैं, जो लोकोक्तियाँ चली आ रही हैं पुराने समय से, इनमें कुछ ना कुछ बात है।
1: निश्चित रूप से
0: जो जैसे सावन साग ना भादो दही, क्वार करेला ना कार्तिक मही, ये मतलब वैज्ञानिक तथ्य हैं इसके पीछे।
1: घाघ बद्री की सारी कहावतें पूर्णतया वैज्ञानिक हैं, इनका हम बिल्कुल निश्चित रूप से हमको प्रयोग करना चाहिए, मानना चाहिए। कैसे हम प्रयोग करें, किस माह में किसका सेवन न करें, आपको मैं बताना चाहूंगा। तेल जो है वर्षा ऋतु के लिए सर्वोत्तम औषधि है। तेल को हम लोग करते क्या है कि गर्मी के मौसम में खूब लू के अंदर तेल को सरसों के को एक टीन में बंद करके छत पर रख दें, और गर्मी भर अप्रैल मई जून रहने दें, और जुलाई में निकाल के उसी तेल को आप खाने में प्रयोग करें, उसी तेल को पीने में,
0: पीने
1: लोगों को
0: में
1: तेल पिलाने का प्रयोग करते हैं, माने पहलवान लोग तेल पीते हैं। वो
0: सरसों का तेल
1: सरसों का तेल सर्वोत्तम लाभकारी है वर्षा ऋतु में। जो व्यक्ति सरसों का तेल 20-25 ml अगर पीता है तो वो तमाम प्रकार के वात व्याधियों से मुक्त हो जाता है, गठिया वगैरह की शिकायत से

0: हो जाएगा।
1: अच्छा
0: तैलम घृतम मधु, तेल वात रोगों के लिए और घी जो है पित्त के रोगों के लिए और शहद जो है कफज रोगों के लिए आयुर्वेद में लाभकारी बताया गया है।
1: क्या बात है। आंखें बहुत खराब हो रही हैं मोबाइल देख देख करके आजकल, उनके लिए भी कुछ बताइए ऐसा।
0: आंखों के लिए सबसे उत्तम उपाय है कि एक तो त्राटक का अभ्यास करें,
1: त्राटक,
0: हाथ हाथ पे आंख रख करके एक हाथ रख के आंख के ऊपर सामने अंगूठा करें, अंगूठे के नाखून को लगातार देखते रहें और बिना गर्दन को हिलाए हुए अंगूठे का मूवमेंट करें जहां तक देख सकते हैं। ये त्राटक का अभ्यास निश्चित रूप से आंखों की ज्योति वर्धक होता है। दूसरी बात, एक आयुर्वेद की औषधि है जिसे हम कहते हैं सप्तामृत लौह, नेत्रामृत के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। इस नेत्रामृत का प्रयोग तो हर बच्चे को मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको निश्चित रूप से लेना चाहिए कि नेत्रामृत लेने से आपको जो इसे कहते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम,
1: तो ये खाना है, आंख में डालना है।
0: नेत्रामृत को केवल खाने का औषधि है।
1: अच्छा
0: सप्तामृत
1: जी।
0: लौह और आकिक पिष्टी, इसका मिला हुआ योग है, ये बहुत लाभ करता है, बच्चों को अवश्य देना चाहिए।
1: क्या बात है।
0: और एक फैटी लिवर, हर तीसरे बच्चे को जब हम देखते हैं,
1: बिल्कुल
0: पेशेंट हमारे पास आता
1: जी।
0: है, युवा बच्चे, उनको क्या समस्या है, फैटी लिवर ग्रेड वन ग्रेड टू और अंत में जाकर के वो लिवर डिसीज के पेशेंट बन जाते हैं, तो उनके लिए भूमि आमला, कालमेघ, कुटकी, भृंगराज, चिरायता, पुनर्नवा, मकोई, इनको मिला के औषधि तैयार की है जिसके ऊपर मैंने शोध किया, आज गूगल पे अवेलेबल है, हजारों लोगों पे प्रयोग कर चुके हैं हम लोग। ये प्रवेक लिव के नाम से मार्केट में अवेलेबल है।
1: किस नाम से?
0: प्रवेक लिव,
1: प्रवेक लिव।
0: प्रवेक
1: अच्छा
0: लिव, इस औषधि को लेने से तमाम प्रकार के फैटी लिवर से लोग मुक्त हो जाते हैं। बहुत उपयोगी औषधि है, इसका हम प्रयोग करें।
1: बहुत ही उपयोगी और लाभदायक जानकारी दी डॉक्टर जी एस तोमर आपने, और हमें पूरी उम्मीद है कि वॉइस ऑफ प्रयागराज जो कि सुबह सुबह ये कार्यक्रम प्रसारित होता है, जो भी लोग अपनी गाड़ियों में सुन रहे होंगे, अपने घरों में सुन रहे होंगे हमारे श्रोता, हमें पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर साहब की बताई गई, वैद्य जी की बताई गई इन बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे और किसी न किसी तरह से आप अपने और अपने परिवार और अपने समाज को, अपनी सेहत को अच्छा करके और अधिक योगदान दे पाएंगे समाज और देश की प्रगति में। डॉक्टर जी एस तोमर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम से, वॉइस ऑफ प्रयागराज से जुड़े, हमारे स्टूडियो में आए। तो श्रोताओं, ये थे डॉक्टर जी एस तोमर वॉइस ऑफ प्रयागराज में। अगली बार फिर किसी विशेष हस्ती के साथ इसी कार्यक्रम में मुलाकात होगी। जुड़े रहिए हमसे, जुड़े रहिए आकाशवाणी से।
2: और चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।
1: तब तक के लिए मुझे यानी अभिनव प्रज्ञा पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

वॉइस ऑफ प्रयागराज। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे डॉक्टर जी एस तोमर से की गई अभिनव प्रज्ञा पांडे की बातचीत का दूसरा भाग। प्रस्तुति थी अभय कांत तिवारी की। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सूर्य प्रकाश पटेल और साथियों के गाय लोकगीत। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं सूर्य प्रकाश पटेल और साथियों के स्वर में ये लचारी।

0: लाचारी के बाद लीजिए अब सुनिए ये कजरी।
1: अरे तो सावन हरिया।

0: लोकगीतों के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सूर्य प्रकाश पटेल और साथियों के गाए लोकगीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।
1: 14 अगस्त 1900

भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

श्रोताओं, जब भी हिंदी सिनेमा में उन गीतकारों का जिक्र होता है जिन्होंने सीधे साधे शब्दों में जिंदगी के सबसे गूढ़ दर्शन और जज्बातों को पिरोया, तो एक नाम बहुत शिद्दत के साथ याद आता है, श्यामलाल बाबू राय यानी इंदिवर।

श्रोताओं, इंदिवर जी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उनकी लेखनी में जहां एक तरफ प्यार का अलौकिक रूप था, वहीं दूसरी तरफ वतन के लिए अटूट भक्ति। जब भी देश प्रेम के गीतों की बात आती है तो उनका लिखा एक ऐसा गीत याद आता है जिसे सुनकर भारत का स्वर्णिम इतिहास आंखों के सामने तैरने लगता है।

श्रोताओं, इंदिवर जी की कलम कभी पुरानी नहीं हुई। 60 और 70 के दशक में फिल्म सफ़र, सरस्वती चंद्र और रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्मों से इतिहास रचने के बाद उन्होंने 90 के दशक की नई पीढ़ी के साथ भी कदम से कदम मिलाया। राकेश रोशन और नदीम श्रवण जैसे आधुनिक संगीतकारों के साथ मिलकर उन्होंने ऐसे नए गाने लिखे जो आज के युवाओं की जुबां पर भी छा गए।

श्रोताओं, इंदिवर जी कहते थे कि गीत वही है जो सीधे दिल में उतरे और मन को शांत कर दे। 90 के दशक की फिल्मों में जहां डिस्को और पॉप का शोर बढ़ रहा था, वहीं इंदिवर जी ने अपनी शायरी की मिठास बनाए रखी। तुम मिले दिल खिले जैसा नया और आधुनिक गाना हो या जिंदगी का सफर, उनकी उपमाएं हमेशा तरोताजा रहीं।

श्रोताओं, समय बीतता है, दौर बदलते हैं, लेकिन जो गीत देश की आत्मा से जुड़े होते हैं वो कभी पुराने नहीं होते। इंदिवर जी का लिखा हर देशभक्ति गीत हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है।

0: एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज आप गीतकार इंदिवर के लिखे गीत सुन रहे थे। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। और अब युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम यूथ एक्सप्रेस।
1: गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 11:30 और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट यूथ कनेक्ट शो यूथ एक्सप्रेस। मैं हूं आपकी दोस्त अंजलि श्रीवास्तव और जैसे हर हफ्ते वैसे ही आज भी अगले आधे घंटे तक हम बात करेंगे आपकी, हमारी और हर उस यंग माइंड की जो अपने फ्यूचर को लेके कभी एक्साइटेड होता है, कभी कंफ्यूज्ड और कभी कभी थोड़ा सा नर्वस भी। और ऑनेस्टली यूथ होना ही शायद लाइफ का सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फेज है। एक तरफ सपने होते हैं, दूसरी तरफ एक्सपेक्टेशंस, एक तरफ अपॉर्चुनिटीज़ और दूसरी तरफ चॉइसेस इतनी ज़्यादा कि समझ ही नहीं आता कि किस डायरेक्शन में जाया जाए। कभी लगता है एक कोर्स कर लूँ और कभी लगता है कोई नई स्किल सीख लूँ, कभी लगता है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लूँ और कभी किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखकर तुरंत लगता है कि स्टार्टअप शुरू ही कर देते हैं। और फिर जब हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते रहते हैं तो आजकल लगता है ना कि AI हर जगह है। न्यूज़ में देखो तो सोशल मीडिया में AI, क्लासरूम्स में AI, ऑफिस में, मतलब हर जगह AI। और इसी बीच एक सवाल बहुत ढेर सारे यंग माइंड्स के अंदर शांति से चल रहा होता है कि फ्यूचर में सक्सेसफुल होने के लिए एग्जैक्टली करना क्या है। क्या सिर्फ डिग्री काफ़ी है, सिर्फ मार्क्स, सिर्फ हार्ड वर्क, या फिर दुनिया कुछ और डिमांड कर रही है। और इसी सवाल ने मुझे कल रात एक इंटरेस्टिंग थॉट दिया कि अगर फ्यूचर एक स्मार्टफोन होता तो उसका पासवर्ड क्या होता। किसी का पासवर्ड तो उसके बर्थडे होते हैं, किसी का उनके पेट्स के नाम, और कुछ लोगों का तो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि कभी कभी वो खुद ही भूल जाते हैं। लेकिन हम जिस पासवर्ड की बात कर रहे हैं उससे अनलॉक होगा आपका फ्यूचर। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पासवर्ड में नंबर्स नहीं, स्किल्स हैं। क्योंकि दोस्तों आज के ज़माने में सिर्फ डिग्री का नहीं है, डिग्री दरवाज़ा खोल सकती है लेकिन रूम के अंदर टिकना है या नहीं ये आपके स्किल्स डिसाइड करते हैं। और आज हम मिलकर फ्यूचर का ये पासवर्ड डीकोड करेंगे। और वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और अपनी क्यूरियोसिटी को भी।

दोस्तों, आजकल जब भी एआई की बात होती है तो दो रिएक्शंस आते हैं। पहला तो, वाह, कितनी अमेजिंग टेक्नोलॉजी है, इससे कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरा आता है, अब तो हमारी जॉब गई। लेकिन सच इन दोनों के बीच कहीं है। एआई कुछ काम हमसे बेटर कर सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को इंसान बनाती हैं, और वही हैं फ्यूचर प्रूफ स्किल्स। पहला स्किल जो है दोस्तों, वो है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी आसान भाषा में बोलें तो हर बात को बिना सोचे समझे ना मान लेना। टेक फॉर इंस्टेंस, सोशल मीडिया पर आपने एक रील देखी, उसमें लिखा है एक हफ्ते में इंग्लिश में फ्लुएंट बन जाइए। अब क्रिटिकल थिंकिंग कहेगी, एक मिनट भाई, इतना आसान होता तो पूरी दुनिया ही फ्लुएंट इंग्लिश बोल रही होती अभी तो। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है क्वेश्चंस पूछना, एविडेंस देखना और फिर डिसीजन लेना। एआई जवाब तो दे सकता है दोस्तों, लेकिन सही सवाल पूछना अभी भी इंसान का काम है। और दोस्तों, नेक्स्ट स्किल है हमारी क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी का मतलब है कि हम लोग केवल ये नहीं देखते कि ड्राइंग में, सिंगिंग में, नहीं, इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू दैट। क्रिएटिविटी का मतलब है किसी प्रॉब्लम को नए नज़रिए से देखना। सोचिए, दो लोगों के पास एक ही सिचुएशन है, एक प्रॉब्लम देखता है और दूसरा अपॉर्चुनिटी देख लेता है। जैसे लॉकडाउन में हमने सबने देखा था कि कुछ लोग बोर हो रहे थे, वहीं कुछ लोगों ने ऑनलाइन बिजनेसेस स्टार्ट कर दिए। यही क्रिएटिविटी है। मतलब एआई पैटर्न तो फॉलो करता है, लेकिन इंसान इन्हीं पैटर्न्स को तोड़कर कुछ नया क्रिएट करता है। अब नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल जो है दोस्तों, आज भी और आगे के टाइम के लिए भी, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी किसी इंसान को सब कुछ आता है, नॉलेज भी है, टैलेंट भी है, लेकिन लोग उसकी बात समझ ही नहीं पाते। और कभी कभी कोई इंसान कॉम्प्लिकेटेड बात को भी इतने सिंपल तरीके से समझा देता है कि सब कनेक्ट कर लेते हैं। यही कम्युनिकेशन है, सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी, समझना भी और कनेक्ट करना भी। फ्यूचर में आइडियाज़ की कमी नहीं होगी, उन्हें एक्सप्रेस कर पाने वालों की डिमांड होगी। और बेटर कम्युनिकेशन स्किल से इन्हांस होता है कोलैबोरेशन, यानी अलग अलग लोग, अलग अलग आइडियाज़, लेकिन एक कॉमन गोल। आज की दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत कम प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो एक इंसान अकेला सॉल्व कर सकता है। इसीलिए साइंटिस्ट हो गए, डिज़ाइनर्स हो गए, इंजीनियर्स, राइटर्स और रिसर्चर्स सब मिलकर काम करते हैं। और दोस्तों, ये बात ध्यान देने वाली है कि फ्यूचर टीम प्लेयर्स का है, सोलो हीरोज़ का नहीं। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी जब सिचुएशन ख़राब हो तब हम बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं ना, तो इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में देख लीजिए, हर इंस्टीट्यूशन में और हर प्रोफेशन में एक ही चीज़ के पैसे देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के। मतलब डिग्री तो आपको बता देती है कि आपने क्या पढ़ा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग बताती है कि आप उस पढ़ाई का करते क्या हैं। एंड लास्ट एंड द फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल इज लर्निंग एजिलिटी। मतलब आपने लर्निंग एबिलिटी तो सुना होगा, उसका मतलब होता है कि कोई भी हम न्यू स्किल या न्यूज नॉलेज जो है उसको गेन कर रहे हैं। बट लर्निंग एजिलिटी में क्या होता है कि आपकी जो भी प्रायर नॉलेज है उसको आप कैसे, न्यू सिचुएशन अगर आती है जो आपके फैमिलियर कंडीशंस हैं उससे अलग हटकर अगर आती है, तो उसमें आप कैसे अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब नई चीज़ सीखने की स्पीड जो है आपकी वो, क्योंकि फ्यूचर में सबसे सक्सेसफुल लोग शायद वो नहीं होंगे जो सब कुछ जानते हैं, बल्कि वो होंगे जो हर साल, हर महीने और हर दिन कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, ये रहा फ्यूचर का पासवर्ड, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग एजिलिटी।

दोस्तों, अब तक हमने फ्यूचर का पासवर्ड समझा, लेकिन पासवर्ड डालने के बाद दरवाज़ा खुलेगा किस दुनिया का? जवाब है करियर की दुनिया का। और ये दुनिया आज जो है पहले से काफ़ी अलग है। और सच बताऊँ तो हमारी जनरेशन शायद पहली ऐसी जनरेशन है जिसके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी सबसे ज़्यादा हैं और कन्फ्यूजन भी सबसे ज़्यादा। कभी कभी लगता है कि करियर ऑप्शंस OTT के कंटेंट से भी ज़्यादा अवेलेबल हो गए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज के कई करियर्स 15-20 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। मतलब अगर आप टाइम मशीन लेकर 2005 में चली जाइए और किसी को बोल दीजिए मैं पॉडकास्ट प्रोड्यूसर बनना चाहता हूँ, तो सामने वाला पूछेगा बेटा पहले ये तो बताओ कि पॉडकास्ट होता क्या है। और यही सबसे इंटरेस्टिंग बात है, दुनिया बदलती है और नई नीड्स आती हैं और फिर नए करियर्स जन्म लेते हैं। पहले जब हम लोगों से जो बड़े हैं वो हमसे पूछते थे ना कि बड़े होकर क्या बनोगे बेटा, और सवाल के जवाब

अब ना बहुत ही फिक्स्ड होते थे, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, आईएएस ऑफिसर। लेकिन आज सिनेरियो कहीं ना कहीं और ज़्यादा डायनेमिक हो रहा है। बहुत से अनकन्वेंशनल करियर ऑप्शंस भी ग्रो कर रहे हैं, जैसे यूएक्स रिसर्चर, पॉडकास्ट प्रोड्यूसर, क्लाइमेट कंसल्टेंट, डिजिटल कम्युनिटी मैनेजर, गेम नैरेटिव डिज़ाइनर और एआई एथिक्स रिसर्चर। यूएक्स रिसर्चर की बात करें दोस्तों, तो ये डील करता है कि टेक्नोलॉजी को ह्यूमन फ्रेंडली कैसे बनाया जा सकता है। और इस फील्ड में साइकोलॉजी, ऑब्जर्वेशन और एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दोस्तों, जब हमने बात करी एआई की, तो एआई एथिक्स रिसर्चर की बात होती है जब, तो हम ये सोच सकते हैं ऐसे कि अगर फ्यूचर में एआई स्कूल एडमिशन डिसाइड करे, तो जॉब्स शॉर्टलिस्ट करे या मेडिकल रिकमेंडेशंस दे, तो सवाल उठता है फेयर डिसीजंस का, बायसनेस का और अकाउंटेबिलिटी का। और इन्हीं सवालों पर काम करते हैं एआई एथिक्स रिसर्चर्स, यानी टेक्नोलॉजी को सिर्फ पावरफुल नहीं, रिस्पॉन्सिबल भी बनाना उनका काम है। और जब हम आज देख रहे हैं कि वर्ल्ड में इतने बड़े बड़े चैलेंजेस देखे जा रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज वो बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। और इसमें एक करियर ऑप्शन है जो डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वो है क्लाइमेट कंसल्टेंट्स का। और बेसिकली क्लाइमेट कंसल्टेंट्स करते क्या हैं कि कंपनीज़ को ये गाइड करते हैं कि रिसोर्सेज का बेटर यूज़ कैसे करना है, वेस्ट को कम कैसे करना है और डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच बैलेंस कैसे बनाए रखना है। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि स्टोरीज़, कहानियाँ सिर्फ मूवीज़ में होती हैं, तो ज़रा रुक जाइए। आज स्टोरी टेलिंग्स मार्केटिंग में है, पॉडकास्ट में है, सोशल मीडिया में है, गेमिंग में है, एजुकेशन में भी है। इसीलिए पॉडकास्ट प्रोड्यूसर, कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट और गेम नैरेटिव डिज़ाइनर्स जैसे करियर्स रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। और दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सब करियर्स में एक बात कॉमन है, ये जॉब्स किसी सिलेबस में से नहीं बनाई गई हैं, ये जॉब्स दुनिया की चेंजिंग नीड्स के हिसाब से बनाई गई हैं। इसलिए करियर चूज़ करते वक्त सिर्फ मार्केट मत देखिए, खुद को भी देखिए। आप किस चीज़ को लेकर नेचुरली क्यूरियस हो जाते हैं, किस इशू पर आप घंटों बात कर सकते हैं, और वहीं कहीं आपका फ्यूचर छुपा हो सकता है। तो दोस्तों, आज का लेसन सिंपल है, करियर का फ्यूचर सिर्फ डिग्री डिसाइड नहीं होगी, बल्कि क्यूरियोसिटी से डिसाइड होगा, क्योंकि क्यूरियोसिटी ही आपको नए रास्तों तक ले जाती है।

अब दोस्तों एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आंखें बंद मत करिएगा क्योंकि ऑब्वियसली रेडियो सुन रहे हैं आप। बस सोचिए आपने स्कूल और कॉलेज में कितनी सारी बुक्स पढ़ी होंगी, लेकिन कॉन्फिडेंस किस चैप्टर में पढ़ाया गया था याद? फेलियर से डील करना किस टेक्स्ट बुक में था? या फिर डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस को हैंडल करना? सच तो ये है कि जिंदगी के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स क्लासरूम के बाहर मिलते हैं। अक्सर हम सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन लर्निंग का सबसे बड़ा सोर्स कई बार फेलियर होता है। कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, कोई इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ और कोई प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, उस वक्त लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन कुछ साल बाद वही एक्सपीरियंस हमें रेजिलियंस सिखा देता है, और रेजिलियंस वो क्वालिटी है जो किसी सिलेबस में नहीं मिलती। एक और पावरफुल क्लासरूम है दोस्तों लोग, पीपल। कभी किसी सीनियर से बात करके, कभी किसी मेंटोर से, कभी किसी चाय वाले भैया से भी, क्योंकि विजडम डिग्री देखकर नहीं आती है, एक्सपीरियंस देखकर आती है। और दोस्तों यही रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना, ये थ्योरी को रियलिटी से कनेक्ट करते हैं। इस बात को ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, स्पीकर्स लेट हो गए हैं, साउंड सिस्टम काम ही नहीं कर रहा और ऑडियंस आ चुकी है। उस दिन आप जितना मैनेजमेंट सीखेंगे ना, उतना शायद ही पूरे सेमेस्टर की मैनेजमेंट क्लास में भी ना सीखें आप। और आज के यूथ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है पता है? लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ लिटरली उनकी पॉकेट में हैं। पॉडकास्ट हो गए, ऑडियो बुक्स हो गए, ऑनलाइन कोर्सेज, वेबिनार्स, कम्युनिटीज, रिसर्च ब्लॉग्स। लेकिन एक चैलेंज अभी भी है, इन्फॉर्मेशन बहुत है, अटेंशन कम है। इसलिए आज का स्किल सिर्फ लर्निंग नहीं है बल्कि इंटेंशनल लर्निंग है, मतलब जो सीखना है उसे कॉन्शियसली चूज करना है। और मुझे लगता है कि लर्निंग को लेकर सबसे ब्यूटीफुल थॉट ये है कि लर्निंग का ऑपोजिट इग्नोरेंस नहीं होता है, लर्निंग का ऑपोजिट होता है नाउ आई नो एवरीथिंग। जिस दिन हम सीखना छोड़ देते हैं, उस दिन हम ग्रो करना भी छोड़ देते हैं। तो दोस्तों क्लासरूम ज़रूरी है, डिग्री ज़रूरी है, एग्ज़ाम्स भी ज़रूरी है, लेकिन उनके साथ क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस भी उतने ही ज़रूरी है। क्योंकि फ्यूचर सिर्फ एजुकेटेड लोगों का नहीं होगा, फ्यूचर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स का भी होगा।

तो दोस्तों, अगर आज के यूथ एक्सप्रेस को एक सेंटेंस में समझें तो फ्यूचर उनका है जो फ्यूचर के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं। स्किल्स सीखिए, नए करियर्स एक्सप्लोर करिए और क्लासरूम के बाहर भी लर्निंग को जिंदा रखिए, क्योंकि फ्यूचर का पासवर्ड आपके हाथों में। और दोस्तों, आज हम आपको ये भी बता दें कि आज 14 अगस्त है और कल 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे वाले दिन हम ये तो देखते हैं कि सब लोग झंडे लेकर अपने बहुत ही प्राउडली अपना पैट्रियोटिज्म दिखाते हैं, लेकिन उसके अगले दिन 16 अगस्त को कहीं हमको सड़कों पे झंडे गिरे मिलते हैं, कहीं डस्टबिन्स में गिरे मिलते हैं। तो ध्यान रखिए कि तिरंगा हमेशा देश की शान है, एकता और स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान का प्रतीक है। तो कल ध्यान रखिएगा कि ये गलती आपसे ना हो। सो दिस वॉज मी अंजलि श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। Bye-bye.

0: अभी युवा श्रोता यूथ एक्सप्रेस प्रोग्राम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 12 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। सरकार ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 100 लाभार्थियों को लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष मेहमान के रूप में आमंत्रित किया है। सरकार ने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदक की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं।

0: 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। कुल 92 राष्ट्रपति पदकों और 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के एफएम गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है।
1: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है तथा सीबीआई जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा रद्द करने की अपनी मांग को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 18 करोड़ 60 लाख रुपए की 3 विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को पुनर्स्थापित करना तथा क्षेत्र की विरासत पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सुबह के सत्र में लगभग 0.5% नीचे कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 326 अंक गिरकर 77,754 पर और निफ्टी 73 अंक गिरकर 24,323 पर आ गया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

और अब खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं सुनिए। राजेंद्र विश्वकर्मा सूचित करते हैं कि रागिनी विश्वकर्मा 7 जनवरी सन 2026 से लापता हैं। रागिनी विश्वकर्मा की आयु लगभग 17 वर्ष, कद 4.5 फीट, रंग गेहुआ और चेहरा लंबा है। वो काले रंग का टॉप और आसमानी रंग की जीन्स पहने हुए हैं। रागिनी विश्वकर्मा के मिलने की सूचना कृपया इस पते पर दें। राजेंद्र विश्वकर्मा, पुत्र राजकुमार विश्वकर्मा, निवासी ग्राम चुरावनपुर, मजरे भावलपुर, थाना संग्रामपुर, जनपद अमेठी। मोबाइल नंबर है 7310301943। मोबाइल नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 7310301943। एक और खोई हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। श्रीराम वर्मा सूचित करते हैं कि मोहिनी वर्मा दिनांक 14 अप्रैल सन 2026 से लापता हैं। मोहिनी वर्मा की आयु 18 वर्ष 3 माह, कद 5 फीट 3 इंच और चेहरा लंबा है। वो सलवार कुर्ता पहने हुए हैं। मोहिनी वर्मा के मिलने की सूचना कृपया इस पते पर दें। श्रीराम वर्मा, पुत्र शीतला दीन वर्मा, ग्राम गौरी, थाना नवाबगंज, प्रतापगढ़। मोबाइल नंबर है 7352228134। मोबाइल नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 7352228134। अभी आप खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं सुन रहे थे।

आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए डॉक्टर गीता बैनर्जी का उपशास्त्रीय गायन। प्रस्तुत है राग मिश्र पीलू में ठुमरी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं महावीर प्रसाद भट्ट।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप डॉक्टर गीता बनर्जी से राग मिश्र पीलू में ठुमरी सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे महावीर प्रसाद भट्ट।
1: चौदह अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुत कर रही हैं मधु कुमार।

0: ही बधाई। ये दिन उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। इस अवसर पर पूरा देश तिरंगा फहराकर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का जश्न मनाता है और ये दिन हमें अपने देश के प्रति कर्तव्यों को निभाने और भारत को प्रगति के मार्ग पर ले जाने की प्रेरणा देता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए।
1: पोस्ट इंडिया, तहसील इंडिया, थाना इंडिया, गांव मुगरा, जिला प्रयागराज से प्रेमचंद यादव बोल रहे हैं मैम। नमस्कार।
0: नमस्कार प्रेमचंद जी, और आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया।
0: जी जी,
1: अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म ये गाना है, उनके ऊपर पिक्चर आई
0: जी।
1: और गाने के बोल रहे हैं, ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरे धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गाया प्रेमचंद जी।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए।
1: गांव धोधापुर पोस्ट सुमरी प्रयागराज निवासी मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति सदाधा सिटी मथुरा से आज

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए।
1: गांव धोधापुर पोस्ट सुमरी प्रयागराज निवासी मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति सदाधा सिटी मथुरा से आदरणीय मधु दीदी को करता हूँ सादर नमस्कार।
0: नमस्कार जी, बताइए अपनी पसंद का गाना।
1: दीदी सर्वप्रथम मैं आपको आकाशवाणी प्रयागराज को और सभी श्रोताओं को स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ।
0: आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आशा करती हूँ कि आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम देशभक्ति गीतों से रंगा रहेगा। तो अब आप अपनी पसंद बताइए।
1: दीदी आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ 15 अगस्त के अवसर पर फिल्म का नाम है लक्ष्य
0: जी
1: और गीत के बोल है कंधों से कंधे मिलते हैं कदमों से कदम मिलते हैं दुश्मन के दिल जब हिलते हैं जब हमारे कदम चलते हैं।
0: जी, तो आपने जो गीत पसंद किया है ये देशभक्ति गीत है, शारदा प्रसाद प्रजापति जी ने मथुरा से फरमाइश की है। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: आकाश नामी का जुर्म दिल में रहता हमारे हर पल, गंगा नदी के पास में घर है मेरा, जाता है शीतल जल, आन है मेरा राजेंद्र जिला है प्रताप
0: जी। जिला प्रतापगढ़ से राजेंद्र जी हमारे साथ हैं, तो राजेंद्र जी कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मैं फरमाइश गाऊंगा सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
0: जी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। और आज आप इस उपलक्ष्य में कौन सा गीत सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है पूजा और पश्चिम
0: जी।
1: गाने के बोल में दुल्हन चली बहन चली तीन रंग की डोली।
0: बहुत अच्छा गीत तो आपने चुना है, पूर्व पश्चिम फिल्म का, राजेंद्र जी की पसंद है, तो आइए सुनते हैं। जी राजेंद्र जी,
1: कुछ कहना चाहूंगा मैं इसको बोल जाते हैं।
0: जी बिल्कुल बोलिए।
1: इस देश के कदम कदम पे ईमान है हमारा, इस देश के कदम कदम पे ईमान है हमारा, जिंदगी जैसे भारत पे पहचान है हमारा, आए मेरे देश प्रेमी कोई रावण छीन न पाए सीता जैसे मातृभूमि का दामन, किसी मर्यादा से हम श्री राम की तरह हिंदुस्तान है हम।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बोले आप राजेंद्र जी। तो आपको सुनवाते हैं पूरब और पश्चिम फिल्म का ये देशभक्ति गीत।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए।
1: हम गुलाब चंद मिश्रा, ग्राम पचोखर, पोस्ट रामदासगंज, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। दीदी,
0: बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: पहले हम आपको बधाई देना चाहते हैं स्वतंत्र दिवस के अवसर पे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे आकाशवाणी केंद्र को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं।
0: आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। और मैं आशा करती हूँ कि हमारे सारे श्रोता जो हैं इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे जितने भी श्रोता हैं उन्होंने देशभक्ति गीतों की फरमाइश की है। तो अब आप बताइए, आपका कौन सा पसंदीदा गीत है?
1: हम फिल्म जागृति का सुनना चाहते हैं। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती की संत सुन
0: कर दिया कमाल। जी हाँ, तो अब हम आपको आपकी पसंद का सुनवाने जा रहे हैं ये गाना। लीजिए सुनिए।
1: कुछ दोस्तों का नाम ले लें?
0: हाँ जी, ले लीजिए।
1: अजीत कुमार मिश्रा, सुशील कुमार मिश्रा, सुनील कुमार मिश्रा, भग्गू जग्गू जग्गू, रिंकू छोटू, टिंकू, राजन यादव और संतोष कुमार पटेल।
0: तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये देशभक्ति गीत।

0: अभी आप हेलो फरमाइश प्रोग्राम सुन रहे थे, प्रस्तुत कर रही थी मधु कुमार। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 1 बजने को है, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 100 लाभार्थियों को लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष मेहमान के रूप में आमंत्रित किया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME ने कहा कि समारोह में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा लाभार्थियों की भागीदारी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के अनमोल योगदान को मान्यता देने जैसा है। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदक की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। कुल 92 राष्ट्रपति पदकों और 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है।

0: छह अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी की एफएम गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। तमिलनाडु में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। बस टर्मिनल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। तमिलनाडु पुलिस की अलग अलग इकाइयों ने आज फुल ड्रेस रिहर्सल की। संवेदनशील इलाकों में यातायात का मार्ग बदला गया है। स्वाधीनता दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में लाल किले के आसपास आने जाने वाले यात्रियों के लिए यातायात संबंधी परामर्श जारी किया है। ये सुबह 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें, अतिरिक्त समय लेकर चलें। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने लाल किले में स्वाधीनता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों और आम जनता की आवाजाही के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कामना की कि यह दिन सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के लालगोला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बलिग्राम इलाके से पुलिस ने 7 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत केंद्र में भेज दिया है। इन 7 को कल हिरासत में लिया गया था। आरोप है कि वे कुछ महीने पहले भारत बांग्लादेश सीमा के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए थे और बाद में काम की तलाश में दक्षिण भारत चले गए थे। घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 261 अंक गिरकर 77,819 पर और निफ्टी 60 अंक गिरकर 24,336 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The nation will celebrate the 80th Independence Day tomorrow. Prime Minister Narendra Modi will lead the celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. Flower petals will be showered at the venue by 2 Mi-17 helicopters of the Indian Air Force. After the showering of flower petals, the Prime Minister will address the nation from the ramparts of the Red Fort. More from our correspondent.
2: The grand event is set to commemorate 150 years of the enduring legacy of the national song Vande Mataram and celebrate the energy, aspirations and pivotal contribution of Yuva Shakti in driving India's journey towards Viksit Bharat by 2047. For the first time, Vande Mataram will be rendered during the celebrations at Red Fort. Around 5,000 special guests from different walks of life have been invited to witness the celebrations at Red Fort. These include artisans under PM Vishwakarma scheme, women entrepreneurs under PM Mudra Yojana, street vendors under PM Swanidhi and taxi drivers of Bharat Taxi. Delhi Police has also made elaborate security arrangements in the national capital. With Dipendra, Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
1: Today is Partition Horrors Remembrance Day. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and Defence Minister Rajnath Singh have paid homage to all those who lost their lives and to those who struggled against the atrocities during the partition in 1947. In a social media post, Mr. Modi termed the partition as a moment in history that tore apart several lives, where families were uprooted, loved ones were lost, and immense suffering was endured. The Prime Minister also wished that the day deepens everyone's resolve to preserve harmony and brotherhood in the country and collectively work towards building a Viksit Bharat. The government has invited 100 beneficiaries of PM Vishwakarma from the Delhi NCR region as special guests to witness the 80th Independence Day ceremony at the Red

0: सुनने वाला नहीं, कोई इस पीड़ा के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने वाला नहीं। सुनने और संवेदना की बात तो दूर, अपनी स्वयं की सत्ता प्राप्त होने की लिप्सा इस हद तक कि एक सनातन राष्ट्र को विभाजन की ओर धकेल करके उसके टुकड़े कर दिए गए।
1: इससे कबल तकसीम की हौलनाकी यादगारी दिन के मौके पर आज वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में लखनऊ के GPO में वाक़ सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्मे से लोक भवन तक एक खामोश मार्च का इनेकाद किया गया, जिसमें तकसीम के साने को याद किया गया। इस दौरान इस दौर के दर्द और जद्दोजहद को एक नुमाइश, लाइव पेंटिंग और तकसीम के साने पर मबनी एक शॉर्ट फिल्म के जरिए दिखाया गया, जबकि तकसीम की हौलनाकियों से मुतासर होने वाले बेघर खानदानों के अफराद ने अपने तजुर्बात से आगाह किया। हर घर तिरंगा मुहिम के एक हिस्से के तौर पर रियासत के कई अजला में तिरंगा यात्रा का इनेकाद किया जा रहा है। इस तनाजुर में फतेहगढ़ फरकाबाद में पुलिस अफसरान और अहलकारों ने तिरंगा लेकर शहर के अहम रास्तों से मार्च किया, जो हुबुल वतनी, इतिहास, सालमियत और कौम के तई लगन का पैगाम देते हैं। दरियसना लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लाला लाजपत राय वार्ड के कौंसलर रघुराम तिवारी की क्यादत में लखनऊ में एक अजीमुशान तिरंगा यात्रा का अहतमाम किया गया। जुलूस का आगाज कौंसलर के दफ्तर से हुआ और मेहमान खसूसी मकामी MLA डॉक्टर नीरज बोरा ने इसे झंडी दिखाकर रवाना किया। महकमे जंगलात की मां के नाम पर एक दरख्त मुहिम के एक हिस्से के तौर पर कल रियासत के तमाम 75 अजलाम वंदे मातरम वाटिकाज कायम किया जाएगा। एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट दीपक कुमार ने कहा कि ये खसूसी मुहिम बड़े पैमाने पर शहरियों की शिरकत को यकीनी बनाएगी।
2: प्रत्येक जनपद में एक चयनित स्थान पर 150 पौधों का रोपण किया जाएगा, जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रकृति को समर्पित श्रद्धांजलि होगी। वंदे मातरम वाटिका में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप छायादार, फलदार और पर्यावरण संरक्षण में उपयोगी प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। अवध वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी सितांशु पांडे ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर कुकरैल पिकनिक स्पॉट में वंदे मातरम वाटिका को विस्तार दिया जाएगा। यहां एक अशोक चक्र बनाया गया है, इसकी 24 तीलियों के बाहर के क्षेत्र में अशोक के पौधे लगाए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के UP T20 लीग का चौथा एडिशन आज से शुरू हो रहा है, जिसमें वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ सीजन का इफ्तिताह करेंगे। लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में होने वाले इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन काशी रुद्रास का मुकाबला गुज़िश्ता साल के रनर अप मेरठ मार्ग से होगा। इस बार मौसीकी, तफरी और फूड कार्निवाल के लिए भी खसूसी इंतजाम किए गए हैं। मानसून रियासत भर में सरगर्म, महकमे मौसमियात के लखनऊ मरकज ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश के 44 अजला में हल्की से दरमियानी बारिश की पेशेंगोई की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से लाकर खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
3: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब बहने सुनेंगी कार्यक्रम हेलो गृहलक्ष्मी।

0: की महक से ही हमारी पहचान है, जिनके हौसलों से रोशन हुआ ये वही आज़ाद हिंदुस्तान है। नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त दीप्ति मिश्रा
1: और मैं साथ में कंचन पांडे, और आपकी पसंदीदा हेलो गृहलक्ष्मी का आगाज कर रहे हैं हम आपको सबसे पहले बधाई देकर स्वतंत्रता दिवस की। तो दोस्तों, हर साल कैलेंडर में ये दिन जब भी आता है, यहाँ तक कि अगर अगस्त का महीना भी शुरू होता है, तो एक देशभक्ति का जो जज्बा होता है वो हमारे अंदर उमड़ने घुमड़ने लगता है और इतना एक अलग सा खुशी महसूस होने लगती है, आज़ादी की खुशी, जिसे आज हम अपने स्टूडियो में बयान करेंगे, महसूस करेंगे और साथ साथ जिएंगे भी।
0: बिल्कुल। और आज इस खास मौके पर हमारे पास, हमारे कार्यक्रम में जो थीम है वो बेहद खास है, क्योंकि एक तरफ जहां हमारे पास है फिल्म क्रांति

0: क्रांति का वो जज्बा और जुनून तो दूसरी तरफ है स्वदेश के मिट्टी की सौंध ही खुशबू और अपनी जड़ों से जुड़ाव। आज का पूरा कार्यक्रम आपकी फरमाइशों के नाम है, तो उठाइए फोन, मिलाइए हमें अपना कॉल और जुड़िए हमारे इस संगीतमय सफर में।
1: और इसके लिए हम अपना नंबर एक बार और आपको बता दें, हमारा नंबर है 0532-242-3649। साथ ही दूसरा नंबर है 0532-2970-462।
0: और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250।
1: तो इस भाई और दीप्ति, हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि आज हम 80वां जन्मदिन मनाने की ओर बढ़ चले हैं। अपने देश का आज़ादी का ये उत्सव हम मनाएंगे और लगता है हमें संकेत मिल रहा है कि एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं।
0: बिल्कुल। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो हेलो जी हाँ, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है?
0: हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो भाई हम आज के अपने इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म क्रांति से। क्रांति फिल्म आई थी ये 80 के दशक में,
1: जी 1981 में।
0: ये मल्टी स्टारर उस टाइम की फिल्म थी और बहुत बड़े बजट की फिल्म थी। और इसमें जो कलाकार थे ऑब्वियसली बहुत ही मजे कलाकार थे, दिलीप कुमार, मनोज कुमार जी। और इसी के साथ हमारे शायद कॉलर से हमारी
1: कॉल जुड़
0: चुके हैं
1: हमसे।
0: हेलो
2: हेलो
0: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
2: नमस्ते,
0: अपना नाम बताइए।
2: हमारा नाम कंचन है।
0: कंचन है, कंचन से फिर कंचन जी बात करें।
1: हेलो कंचन, हम भी इधर से कंचन बोल रहे हैं। आपसे तो पहले भी हमारी बात हो चुकी है ना? तो क्या सुनना चाहेंगी आज आप? आपको पता है दो फिल्में आज हमने कौन सी रखी हैं?
2: क्रांति है सुबह।
1: क्या बात है, तो कौन से फिल्म का गीत सुनेंगी आज कंचन जी?
2: क्रांति पिक्चर का है, चना जोर परम्बा।
1: अच्छा, अरे वाह, चटपटे गीत से आप शुरुआत करा रही हैं आज के कार्यक्रम की। चलिए, तो आपके लिए आपके फोन सेट पर, आपके रेडियो सेट पर हाजिर है ये गीत, एंजॉय करिए।

0: बात है वेदीप्ति, ये देखिए चने का इतिहास कितना पुराना है ना, और हम
1: हाँ
0: सब इससे जुड़ाव महसूस करते हैं इस गीत
1: बिल्कुल।
0: से,
1: और
0: क्योंकि
1: लेकिन इस गाने की एक विशेषता भी है कि इसमें ये मल्टी स्टारर फिल्म तो थी, लेकिन इस गाने में सारे सुपरस्टार्स हैं जो एक ही फ्रेम में है, ये बड़ी बात थी।
0: ये बड़ी बात थी वाकई में। इस फिल्म में कई ऐसी चीजें थी जो बहुत चैलेंजिंग रही,
1: हाँ।
0: लेकिन कितनी हुनर के साथ इस फिल्म को मतलब प्रदर्शित किया गया, बनाया गया, और आज तक ये हमारे दिलों में देखिए अपनी जगह बनाए हुए हैं। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो
2: जी, नमस्ते
0: नमस्ते जी,
2: जी,
0: अपना नाम बताएं।

0: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
1: वाह वाह प्रेम सिंह जी, कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छा हूँ। और एक बात बढ़िया बताना चाहूँगा आपको मैं।
1: बिल्कुल
0: जी, हमारे एक फ्रेंड है आकाशवाणी लखनऊ के, दीप्ति जोशी।
2: अच्छा, चलिए दीप्ति जोशी।
0: और हमारी बात हो रही है अभी फिलहाल दीप्ति जी से, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है।
2: थैंक यू सो मच। वैसे कंचन जी से बात हो रही थी, अब दीप्ति जी से हो रही है।
0: जी बताया ना, दीप्ति जोशी जी है ना आकाशवाणी लखनऊ के, आप एकदम बहुत ही अच्छे अनाउंसर है, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं सभी श्रोताओं को। और एक बात और ये भी है उनके की खासियत की, जब उनका हमारा कॉल लगता है ना कि आकाशवाणी में जी, तो मतलब वो तुरंत रिसीव कर लेते हैं। और
1: देखिए फोन तो हम भी आपका तुरंत रिसीव कर लेते हैं।
0: हाँ जी बिल्कुल,
1: तो ये वाली तारीफ आपको वहाँ हमारी भी पहुँचानी पड़ेगी प्रेम सिंह जी।
0: आपकी तारीफ बिल्कुल दीप्ति जोशी तक जरूर पहुँचेगी। और हाँ एक बात ये भी, जिन श्रोताओं को थोड़ी बात करने में हिचकिचाहट होती है ना, उनसे भी वो अच्छी तरह से बातें कर लेते हैं, वो सारी बातें निकाल लेते हैं धीरे धीरे।
2: तो हम भी भाई आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। और पिछली बार आपने वादा किया था कि जब भी हम अपने घर में रहेंगे तो हम गीत गा के जरूर सुनाएंगे।
0: तो आज मैं अभी आज घर पे नहीं हूँ, भारी हूँ आज भी।
1: तो कुछ देश प्रेम का कोई जज्बा जो ऐसा हो आपको याद आता हो, कुछ बताइए प्रेम सिंह जी।
0: जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, और विभिन्न प्रकार के लोग रहने के साथ में एकता के साथ में रहते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: सही कहा।
2: हाँ, तो अब हमको ये याद आ रहा है कि जब हम लोग स्कूल जाते थे तो ऐसे स्पीचेस देते थे और हम लोग को उसके बाद लड्डू खाने को जरूर मिलती थी।
0: जी बिल्कुल, लड्डू खाने को मिलते थे। और एक बात ये भी है, उस दिन तो मतलब पूरा माहौल ही ऐसा त्योहार की तरफ मनाते हैं, अभी भी ऐसा ही चलता है।
2: बिल्कुल चलता है और हमेशा चलता रहना चाहिए।
1: तो आज हम दीप्ति जी इनको लड्डू खिला तो नहीं सकते, पर एक मीठा गीत जरूर सुनवा सकते हैं। तो बताएं आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे प्रेम सिंह जी।
0: जी स्वदेश फिल्म का सुनवा दीजिएगा आप हमें।
1: बिल्कुल, आपकी कोई पसंद हो तो बताएं।
0: हाँ जी, इसमें एक बताया था मैंने आपको, वो ही की सुनवा दीजिएगा फिलहाल में। मेरे एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है दीप्ति जी कि जब किसी भी आकाशवाणी में कॉल लगता है ना, मैं बातें करते करते जो भी सॉन्ग बताता हूँ वो भूल जाता हूँ।
1: तो कोई बात नहीं, तो हम आपको अपनी पसंद का एक गीत सुनवा देते हैं स्वदेश फिल्म से। ठीक है
0: जी, बिल्कुल
1: बिल्कुल, आप इंजॉय करिए
0: जी। थैंक यू सो मच, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा।
2: हमें भी बात करके बहुत अच्छा लगा।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी।
1: हेलो
0: हाँ
1: जी,
0: जी
1: हाँ, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है?
0: मिल पा रही है
1: जी, आप अपना शुभ नाम बताएं।
0: जिला मिर्जापुर का सभाकांत बोल रहे हैं।
1: सभाकांत
0: ओहो,
1: जी, कैसे
0: सभाकांत
1: हैं
0: जी,
1: आप? बिल्कुल, कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छे हैं। वही
1: अच्छा,
0: रेडियो आपके कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं हमें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं। तो सभाकांत जी, क्या करते हैं आप?
0: जी हम नेत्रहीन हैं, कुछ नहीं करते।
1: अच्छा, सभाकांत जी, ये बताइए कि हम 15 अगस्त मना रहे हैं, उसी के जश्न में हमने आज अपने कार्यक्रम की थीम रखी है और फिल्म है क्रांति और स्वदेश, जैसे कि आप जानते भी हैं। आप इन रंगों को या आप अपनी इमेजिनेशन में अपने इस देश को कैसे देखते हैं?
0: ये हम लोग बहुत अच्छे लगते हैं। हम लोग इसके लिए जंक्शन भी रखते हैं 15 अगस्त को, हमारे इधर साउंड रोड वगैरह बजते हैं,
1: अच्छा,
0: इसे हम लोग मनाते हैं। बहुत झंडा फहरा करके बहुत अच्छे से मनाते हैं हम लोग
1: हाँ, नहीं,
0: इसको।
1: वो तो है। तो आप कुछ उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ गाते हैं, अगर कुछ गुनगुना सकते हैं तो हमें भी सुनाइए।
0: संदेश आते हैं।
1: अच्छा, ठीक है,
0: हेलो
1: कोई नहीं, आप अपनी पसंद का कोई एक गीत बताएं जो आप सुनना चाहते हैं क्रांति और स्वदेश से।
0: जी, स्वदेश फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं।
1: अच्छा, कोई आपका कुछ पसंद हो तो वो बताइए, कोई गीत
0: जी, आपको अपने पसंद सुना दीजिएगा। बहुत
1: आप।
0: फोन लगा, बहुत अच्छा लगा। हम सोचे हमारा कॉल नहीं लगेगा। जी
1: नहीं, आपका फ़ोन, आप मिलाती रहिए हमें फ़ोन, फ़ोन हमारा ज़रूर लगेगा। और देखिए,
0: जी
1: आपसे बात भी हो गई और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अब आप अपने रेडियो सेट पे
0: कर
1: तैयार हो
0: रहे थे
1: जाइए।
0: कॉल,
1: जी सर,
0: बहुत दिन से हम कॉल ट्राई कर रहे थे मगर हमारा लग नहीं रहा था।
1: जी, नहीं, लगता है थोड़ा सा ट्राई करते रहिए। और अब आपके रेडियो सेट पे आपके फिल्म स्वदेश का
0: बहुत
1: ये,
0: धन्यवाद सभी श्रोताओं को, 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: जी,
0: बिल्कुल,
1: आपको भी
0: आपको भी।
1: 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये
0: ओके
1: गाना आपके सेट पर, ये
0: ओके
1: रहा,
0: नमस्कार।
1: फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके नमस्कार।

0: कंचन जी, पहले कॉल लेने से पहले कुछ बातें कर लें इस गाने पर। ये जो गाना अभी आपने सुना वो खुद ए आर रहमान जी ने गाया था, और सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जो अमेरिकी नौसेना बैंड ने भारत के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए इस गाने को लाइव परफॉर्म किया था। बहुत
1: क्या
0: बड़ी
1: बात
0: बात है
1: है,
0: ये,
1: वाह बहुत
0: है
1: बड़ी,
0: ना।
1: बिल्कुल।
0: तो अब इसी के साथ हमारे एक कॉलर और जुड़ गए हैं।
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो,
2: हेलो, नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार,
1: नमस्ते, अपना शुभ नाम
2: हीरा
1: बताएं।
2: हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
1: ओहो, भगवान सिंह परमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो क्या करते
2: धन्यवाद
1: हैं
2: दीदी।
1: आप?
2: दीदी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है।
0: अच्छा, तो पूछना ये चाह रहे हैं कि आप क्या करते हैं भगवान जी,
2: जी
0: भगवान
2: दीदी,
0: जाए।
2: मैं खेती किसानी करता हूँ और आज आपके कार्यक्रम में दूसरी बार जुड़ा हूँ दीदी, करीबन 2 महीने बाद।
0: क्या बात है कि आप ऐसे ही लगातार हमसे जुड़ते रहिए और अपने पसंद के नगमे सुनते रहिए। और ये
2: जी
0: आज
2: दीदी,
0: जो है हमारा
2: आपके
0: कार्यक्रम
2: जो
0: खास,
2: फिल्में लाते हैं ना हर हफ्ते
0: हाँ,
2: दीदी, कार्यक्रम बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा लगता है, और अच्छे अच्छे फिल्मों में से आप गीत लाते हैं दीदी।
0: हमारी कोशिश ही यही होती है कि हमारे श्रोताओं तक जो भी चीज़ें जाएं वो अच्छी जाएं, उनके पसंद की जाएं। इसीलिए ये पूरा कार्यक्रम सजाया गया है अपने श्रोताओं के लिए, और वैसे सारे कार्यक्रम श्रोताओं के लिए ही होते हैं। तो बताइए,
2: जी
0: आज की जो फिल्में हैं, जो थीम है आज हमारा, वो स्वतंत्रता दिवस पर आधारित है, और
2: जी
0: फिल्में हैं क्रांति और स्वदेश। तो बताइए कौन सी फिल्म का
2: दीदी
0: कौन सा
2: क्रांति
0: गीत?
2: फिल्म में से आप देशभक्ति गीत सुना दीजिए।
0: हाँ, देशभक्ति तो हम सुनाएंगे ही, अगर आप कोई गीत बता दें तो अच्छा है।
2: दीदी इसमें तो 2-3 गीत हैं देशभक्ति, 2 गीत करीब है मुझे जहाँ तक याद है वहां तक,
0: हाँ
2: आप
0: हाँ
2: उसमें से कोई सा गीत सुना
0: ठीक
2: दीजिए।
0: है ठीक है, आप सुनिए अपने देशभक्ति गीत, ठीक है? फिर आपने हमें कॉल किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: भाई देखिए दीप्ति, ये जो आजादी का झंडा लहराता है, ये इसीलिए इतना खूबसूरत लगता है क्योंकि इसमें जो एहसास है ना आजादी का, स्वतंत्रता का, ये
1: बिल्कुल
0: अपने आप में बेजोड़
1: बेजोड़
0: है
1: है।
0: ना। इसका जैसा कोई एहसास नहीं हो सकता कि हम आजाद हैं, खुली बाहों से खुले आसमान के नीचे सांस ले रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: और ये जो देन है, ये हमारे वीर सपूतों की देन है जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए
1: इस आज़ादी के लिए।
0: और
1: बिल्कुल
0: ये तोहफा हमें दे गए।
1: हाँ, और
0: तो
1: इसी फिल्म के हम और भी बताना चाहेंगे कंचन जी कि इसी फिल्म इस गाने की फरमाइश और भी जगह से आई थी। इंदौर से दीपक पांडे जी थे और छत्तीसगढ़ राजनाथ गांव से थे सोहन लाल साहू, श्रीमती रुकमणी साहू, तेजेश्वर साहू और कुशल साहू जी की। तो
0: इन्होंने भी फरमाइश की थी
1: थी
0: इसी गीत
1: इसी
0: की,
1: गीत
0: क्रांति
1: के।
0: फिल्म की, है ना।
1: तो हम हाँ बात कर लेते हैं थोड़े से आज की जो फिल्म हमारी स्वदेश है। स्वदेश एक तरीके से कल्ट मूवी मानी जाती है क्योंकि
0: बिल्कुल
1: जब वो रिलीज हुई थी तब इतनी वो फेमस नहीं हुई थी। और इसी के साथ हमें लगता है कि हमारे एक कॉलर और हमसे जुड़ गए
0: जुड़ गए,
1: हैं।
0: बिल्कुल।
1: हेलो,
0: हेलो
1: हाँ जी,
0: हेलो दीप्ति मैम, कंचन मैम, नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, हम रेखा यादव कुखरा अड़िया प्रयागराज से बोल रहे
1: रेखा जी कैसी हैं आप?
0: हम अच्छे हैं मैम, आप कैसी हैं?
1: हम तो बिल्कुल ठीक है। और आज हम फिर इसी इंतजार में हैं कि अब एक पर्व है, कल देश की आजादी का पर्व है, तो कल तो कुछ खास बनना ही चाहिए आपके किचन में। तो
0: यस मैम,
1: हमें तो वही इंतजार रहता है क्योंकि आप बहुत अच्छे अच्छे पकवानों की लिस्ट तैयार की रहती है। आज हमने ये बनाया तो हमें सुन के बहुत अच्छा लगता है रेखा जी। और साथ में आप रेडियो सेट पर इतनी एक्टिव रहती हैं, हमारे कार्यक्रम सुनती हैं। और इस वक्त आप क्या कर रही हैं रेखा जी?
0: बस मैम आप रेडियो सुन रहे हैं।
1: अच्छा, इस वक्त रिलैक्स मूड में हैं आप, है ना। तो ये बताइए, देशभक्ति का ये जो जज्बा चल रहा है इस वक्त, ये मौजूद तो खैर हर वक्त रहना चाहिए, पर आपकी भी बचपन की कोई याद तो जरूर होगी।
0: मैडम जी, बचपन में जब हम लोग स्कूल जाते थे
1: हाँ
0: 15 अगस्त 26 जनवरी पे, तो अच्छा लगता था, ऐसा
1: हाँ
0: लगता था कि आप भी हम जाए।
1: अरे वाह, क्या बात है।
0: जब
1: हाँ तो
0: मनाया जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है।
1: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और लड्डू भी खाने को मिलते थे, वो यादें तो कभी जा नहीं सकती अपने दोस्तों के साथ। फिर उसके बाद ढेर सारी मस्ती भी
0: बचपना
1: होती।
0: ऐसी होती है कि जल्दी से उठाओ, मेरे लड्डू खाए हम।
1: हाँ, लेकिन एक चीज़ और भी पूछना चाहेंगे आपसे रेखा जी, ये जो दो फिल्में हैं, इन दो फिल्मों में से कोई एक फिल्म आपने देखी है जो आपको बहुत पसंद?
0: क्रांति फिल्म का
1: क्रांति आपने देखी है? कितनी बार देखी है भाई, हम लोगों ने तो 2-3 बार तो देखी ही होगी ऑलमोस्ट।
0: देखे हैं मैम, बहुत दिन हो गया देखे।
1: हाँ ठीक है, तो बताइए कौन से फिल्म का कौन सा गीत सुनवाए हम आपको?
0: जिंदगी की ना तू तो लड़ी, प्यार कर ले
1: क्या
0: घड़ी दो
1: बात
0: घड़ी
1: है। और
0: सबसे।
1: इस लड़ी को जोड़ने में हम आपको बताएं, इस गाने की जो शूटिंग हुई है वो कश्मीर के डल झील पे हुई है और पानी इतना ठंडा
0: ठंडा
1: था।
0: पानी था, ऊपर से बारिश
1: हाँ,
0: का भी
1: बारिश
0: उसमें
1: का था
0: इफेक्ट था, या वो
1: तो
0: वाकई बारिश हो रही नहीं
1: थी?
0: दिखा ना।
1: हाँ, तो
0: हाँ
1: ये उस समय की मतलब कि गाना तो जो था ही रोमांटिक, जो था ही अपने आप में ऐतिहासिक था, लेकिन इस गाने की शूटिंग भी अपने आप में एक ऐतिहासिक ही
0: ऐतिहासिक
1: है।
0: क्षण था वो,
1: तो
0: बिल्कुल।
1: चलिए आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आपने हमने कॉल किया, नमस्ते, बहुत बहुत
1: बच्चों का
0: धन्यवाद।
1: नाम ले?
2: हाँ हाँ बिल्कुल ले लीजिए।
1: आयुष और अनन्या हमारे नाना नानी।
2: ओ ठीक है,
1: हमारे नानी जी पनघट बहुत प्यार से सुनती है, कहती है यही अच्छा लगता है।
2: नहीं नहीं बिल्कुल, आप सभी लोग हम लोगों को इतने नियमित सुनते हैं उसके लिए धन्यवाद। नानी
1: और
2: जी को
1: जो
2: भी धन्यवाद
1: प्रोग्राम चालू कर
2: कहिएगा।
1: देते हैं आते, हमारी नानी कहती है इनको, इन लोगों का वो दुखता नहीं है क्या?
2: कह दीजिए, नहीं आप लोगों से बात करने में इतना खुशी होती है, इतना आनंद मिलता है कि
1: और
2: ऐसा कुछ
1: चाहती
2: नहीं
1: है,
2: महसूस
1: कहती है
2: होता।
1: चुप, रेडियो पास आएगी कहेंगे चुप हो जा, चुप।
0: चलिए ठीक है
2: चलिए रेखा
0: रेखा
2: जी,
0: जी,
2: अब आप सुनिए अपने रेडियो सेट पर अपना पसंदीदा गीत। ठीक है,
1: ठीक है मैम, नमस्ते मैम,
2: नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: खूबसूरत गीत फिर से देखिए कितनी पीछे ले गया, पुरानी बचपन की कितनी यादों में ले गया ना, कितना आंखें बड़ी बड़ी करके हम लोग ये गाने देखते थे कि कितना संघर्ष कर रहे हैं हमारे देश के लिए ये लोग। उस वक्त तो यही जज्बा रहता था ना मन में बचपन में।
1: बिल्कुल। और आप ट्यून्ड हैं FM 100.3 पर, और इसके साथ हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो।
2: पोस्ट इंडिया, तहसील इंडिया, थाना इंडिया, गांव मुगराव, जिला प्रयागराज से प्रेमचंद यादव बोल रहे हैं मैं। नमस्कार।
0: नमस्कार
1: प्रेमचंद जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप प्रेमचंद जी?
2: बिल्कुल अच्छे हैं मैम, कैसी हैं?
1: हम लोग अच्छे हैं।
2: श्रोताओं को, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सबको भी।
1: बिल्कुल,
0: बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमचंद जी। आपका एनर्जी लेवल तो हमेशा ही चकाचक रहता है ना, तो इसमें देश प्रेम

0: कि जब बात होगी तो और भी उत्साह आ जाना चाहिए,
1: होना
0: क्यों
1: भी चाहिए भाई। देश की बातें हो और ऊर्जा ना आए शरीर में तो क्या ही बात है। ये बताइए प्रेमचंद जी, मौसम कैसा है, बारिश हो रही है या नहीं?
2: नहीं, मौसम दोनों तरह का है, सुबह सुबह धूप होती है और रात में बारिश हो जाती है। हर रोज आज लगभग 10-15 दिन से ऐसे ही मौसम बना हुआ है।
0: तो कल स्वतंत्रता दिवस की कोई तैयारियां हैं प्रेमचंद जी की? नहीं
2: जी, हो सकता है किसी स्कूल में जाएंगे, एक गाना गाएंगे, बहुत खूबसूरत है और मैं सभी श्रोताओं को और आप सबको गाना सुनाना भी चाहता हूँ।
0: हाँ बिल्कुल, सुनाइए। बिल्कुल सुनाइए।
2: ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरे धूल से बढ़ के तेरी धूप

0: क्या बात है, सच
1: बहुत
0: में
1: सुंदर,
0: आपने
1: वाकई
0: बहुत
1: बहुत
0: सुंदर
1: खूबसूरत
0: गाया, और
1: गाया।
0: हम लोग तो कान आंख बंद करके सुन रहे थे कितना अच्छा लगा। सॉरी वो कान हो
1: नहीं
0: गया,
1: नहीं बहुत सुंदर
0: हम
1: गाया
0: आंख ही
1: आपने,
0: बोल रहे
1: वाकई
0: थे।
1: में बहुत
0: और
1: खूबसूरत।
0: बताइए प्रेमचंद जी, कौन सी फिल्म का?
2: सबसे पहले तो कुछ श्रोताओं और अपने दादी दादा और चाचा का नाम लेना चाहते हैं।
0: हाँ
1: हाँ
0: बिल्कुल
1: हाँ
0: लीजिए।
1: ले लीजिए।
2: श्रोता है बुदनी कुंदा प्रतापगढ़ से, राजेंद्र कुमार जी हैं मथुरा से, शारदा प्रसाद प्रजापति हैं दादनपुर प्रयागराज से, विकास ट्रक ड्राइवर और नीतीश आर्या हैं। हमारे दादा का नाम है शीतला प्रसाद यादव, दादी का नाम है सरस्वती यादव और चाचा का नाम है हरीश चंद्र यादव।
1: भाई इन सभी का को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, और स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी प्रेमचंद जी। लेकिन ये बताइए, इन सब लोगों को भी आप कार्यक्रम सुनने के लिए प्रेरित करते हैं या नहीं?
2: जरूर जरूर प्रेरित करते हैं, और हम कहते भी हैं कि एक रेडियो ऐसा माध्यम है जो कि सबसे पहले हम लोगों ने रेडियो ही आया, तब जाकर इतनी टेक्नोलॉजियां बढ़ी, एक फोन और टीवी ना जाने क्या क्या आ गए, तो रेडियो
1: बिल्कुल
2: हमें बहुत
1: बिल्कुल
2: कुछ सिखाता है।
1: हाँ। तो अपने जो घर के बुजुर्ग हैं उनसे भी कहिए वो कार्यक्रम सुने, उसको सराहें और बताएं उन्हें कैसा लगता है
2: जरूर
1: ना
2: जरूर कहेंगे मैम।
1: जी तो
2: तो
1: अब आप ये बताइए, आज की जो दो फिल्में हैं क्रांति और स्वदेश, इनमें से कोई आपका पसंदीदा गीत हो तो हम वो बजाएं आपके लिए।
2: क्रांति फिल्म का कोई भी गाना।
1: अच्छा ठीक है, तो हम अपनी पसंद से आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं ये गीत, सुनिए एंजॉय करिए।
2: नमस्कार मैम।

0: तमाशा हुई हुई तमाशा, मतलब इस गाने को सुन के और आपके पैर ना थिरके तो ये हो ही नहीं
1: ये तो
0: सकता है
1: ये वाली बात तो आप पर भी लागू होती है दीप्ति
0: तो
1: जी, और शायद कई श्रोताओं पर। और देखिए हम फिर ट्यून्ड है 100.3 FM पर, अपने श्रोताओं से जुड़ चुके हैं और एक कॉलर भी है हमारे साथ, चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो
2: हेलो,
1: अरे कौन बोल रही हैं आप
2: जी? नमस्ते।
1: नमस्ते, अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम तनु है, मैं इलाहाबाद से बोल रही हूँ।
1: ओ तो तनु जी आप क्या करती हैं?
2: पढ़ाई करती हूँ मैं अभी।
1: किस क्लास में हैं आप?
2: जी कॉलेज जाती।
1: ओ अच्छा, पर आप तो बोल रही हैं तनु, मतलब पता है आपको छोटा, तो आप छोटी सी बच्ची की तरह बोल रही हैं। तो तनु ये बताइए, कल जो स्वतंत्रता दिवस है उसके लिए आपके कॉलेज में कोई कार्यक्रम रखा गया है या नहीं?
2: जी रखा गया है।
1: अच्छा, तो आपने उसमें भाग लिया है?
2: जी नहीं, बहुत ज्यादा बच्चे हो गए थे तो हम लोग को नहीं दिया गया।
1: तो आप जाएंगी कल कॉलेज?
2: जी जी
1: बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, भाग नहीं लेना कोई बड़ी बात नहीं, भागीदारी होनी चाहिए किसी न किसी रूप में, है ना? तो बताइए, आज हम दो फिल्में लेकर आए हैं, कौन सी फिल्म का गीत आप सुनना चाहती हैं?
2: क्रांति फिल्म का दिलवाले, जो उसका जो टाइटल ट्रैक है वही सुनना चाहती
1: हूँ। क्रांति फिल्म का,
0: क्रांति क्रांति,
1: हाँ तो ये बताइए, क्रांति फिल्म का टाइटल ट्रैक तो हमारे पास है नहीं उपलब्ध, आप कोई और गीत बता दें।
2: चना जोर गरम वाला सुना दीजिए।
1: वो तो बच चुका है कोई, हम चलिए आपको अपनी पसंद का गीत सुनवा देंगे।
0: हम आपको स्वदेश फिल्म का गीत सुना दें, पल पल है भारी, क्योंकि ये भी गीत बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर है, आप सुनेंगे आप इसको एंजॉय करेंगे। ठीक है,
1: चलिए आप एंजॉय करिए ये गीत, और बहुत सारी शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस के लिए आपको, है ना
2: जी?
1: जी चलिए एंजॉय करें अपने रेडियो सेट पर ये गीत।

0: तो अब हमारी घड़ी इशारा कर रही है कार्यक्रम के समापन की ओर, लेकिन चलते चलते हम अपने सभी श्रोताओं से ये जरूर कहना चाहेंगे कि स्वतंत्रता दिवस आ गया है। इसकी जो ये प्रासंगिकता तभी है श्रोताओं, जब हम किसी न किसी रूप में देश प्रेम में अपनी भागीदारी दें। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ देश गीत गाकर या कोई बड़े बड़े कारनामे करें, बहुत छोटे छोटे काम करके भी, अपनी गलियों को साफ करके, वृक्षारोपण करके, किसी न किसी रूप में अपनी भागीदारी को बनाइए और देश प्रेम में अपना योगदान दीजिए, तभी हमारा ये स्वतंत्रता दिवस सफल है।
1: और इसी के साथ इस कार्यक्रम में सहयोगी रहे हमारे अनाउंसर बहन वंदना श्रीवास्तव जी, हमारी टेक्निकल टीम, और आपके लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कंचन जी और दीप्ति मिश्रा ने, और प्रस्तुति रही अभय कांत तिवारी जी की। इसी के साथ स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद।

0: The Chamba District Administration has advised devotees undertaking the famous Mani Mahesh Yatra to proceed only when weather conditions are favorable. According to the State Emergency Operations Center, 140 roads are currently blocked due to landslides, 46 power transformers, while 244 drinking water supply schemes have also been disrupted. Besides, 177 people have so far lost their lives in rain-related incidents in Himachal Pradesh during the current monsoon season. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
1: In Odisha, 2 days of incessant rain have triggered a fresh flood threat in northern parts of the state, with several rivers swelling rapidly and crossing danger levels. More from our correspondent.
2: The flood situation on the ground is grim in several parts of northern Odisha. Flood water is spreading into low-lying areas, roads are submerged and swollen rivers are cutting off connectivity. The Baitarani is flowing above the danger mark at Anantpur and Patna in Keonzhar district, while the Jalaka at Mathani in Baleswar district is flowing at 7.84 meters against the danger level of 6.50 meters. Flood water has again entered through a bridge in the Anantpur ring embankment. Joda and Balwil in Keonzhar district are also waterlogged. In Mayurbhanj, the Budhavalanga has spilled into parts of Baripada, while several roads are underwater. The Subarnarekha and Baitarani rivers are above danger levels. With more rainfall forecast, residents in low-lying and river bank areas have been advised to remain alert. Prakash Das for Akashwani News, Bhubaneswar.
1: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to address the nation on the eve of 80th Independence Day. Prime Minister Narendra Modi to lead the nation in Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi tomorrow. Partition Horrors Remembrance Day being observed today. Prime Minister, Home Minister and Defence Minister pay homage to all those who lost their lives during partition. India dispatches first tranche of 20 metric ton relief supplies to Colombia to support ongoing post-earthquake recovery efforts. And alert issued for very heavy rainfall over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Jharkhand, Uttar Pradesh and Uttarakhand today. With that, we end the midday news.
3: Namaskar. Aakashwani se dopahar samachar ke saath, main Priyanka Arora. मुख्य समाचार. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे. आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है. प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी. भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी. अब समाचार विस्तार से. राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी. राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा. ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे. हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे.
4: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा. इसके बाद राष्ट्रगान होगा. यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है. इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे. इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है. इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले और भारत टैक्सी के टैक्सी चालक शामिल हैं. दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के करीब 15,000

0: जवानों को तैनात किया गया है और 1000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए देश भर में 343 प्रमुख स्थानों पर बैंड प्रस्तुतियां भी आयोजित की जा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों और आम जनता की आवाजाही के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किले तक पहुंच सकते हैं। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। वीरता पदक जीवन और संपत्ति की रक्षा, अपराध रोकने या अपराधियों को पकड़ने में उल्लेखनीय साहस दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 83, अग्निशमन सेवा के 4, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 3 तथा सुधार सेवा के 2 पदक शामिल हैं। इसके अलावा 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 606, अग्निशमन सेवा के 28, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 18 तथा सुधार सेवा के 12 कर्मी शामिल हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। देश भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सभी प्रमुख आयोजन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
3: शहरों से लेकर सरहदी इलाकों तक इस साल पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तिरंगा रैलियां और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजन किए गए। श्रीनगर में डल झील के किनारे निकाली गई मेगा तिरंगा यात्रा हो या लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक रैलियां, उलर झील के किनारे 2 किलोमीटर लंबे तिरंगे की नुमाइश हो या डल और मानसबल झीलों में राष्ट्रीय ध्वज लहराती हुई शिकारा रैलियां, इस साल स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां बड़ी अनोखी रही। सभी जिलों में छात्रों, सरकारी कर्मचारियों, सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों ने रैलियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस बीच पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: उधर तमिलनाडु में बस टर्मिनल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय चेन्नई के पोर्ट सेंट जॉर्ज के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। चेन्नई के महत्वपूर्ण स्थानों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर आज तिरंगा यात्रा के दौरान पूरे शहर में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिल रहा है।
4: भोपाल में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हैं। कोलार 6 लेन स्थित मदर टेरेसा स्कूल के सामने से शुरू हुई ये यात्रा करीब 32 किलोमीटर का सफर तय कर भैंसाखेड़ी मंडी पहुंचेगी। आयोजकों का दावा है कि यात्रा में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। पूरे रास्ते में 500 जगह पर स्वागत की व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और सामाजिक संगठनों के लोग हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हो रहे हैं। चूना भट्टी कई जगहों पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जहां नशा मुक्ति और युवाओं को जागरूक करने के संदेश भी दिए जा रहे हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी

0: लोगों को याद कर रहा है।
1: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC ई रुपए का शुभारंभ किया। इस शुभारंभ के साथ चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने खाद्य सब्सिडी के लिए CBDC आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को पूरी तरह से लागू किया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 18 करोड़ 60 लाख रुपए की 3 विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को पुनः स्थापित करना और क्षेत्र की विरासत पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है। इसमें माता पिता का विवरण, आधार, मोबाइल नंबर, कुल बैंक खातों की संख्या, काम के स्थानों तक आने जाने का विवरण, धर्म और जाति से संबंधित 40 सवाल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने फरार ड्रग सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया को संयुक्त अरब अमीरात से वापस लाने में सफलता हासिल की है। आज सुबह नई दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उसे हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि ये मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार की कतई बर्दाश्त न करने की नीति में एक नया मील का पत्थर है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है।
2: छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य के CID से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में JPSC के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
0: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस वर्ष जनवरी से मई के बीच कथित तौर पर आत्महत्या से 19 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर्मियों की मृत्यु के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव और CRPF के महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद राहत कार्यों में सहयोग के लिए 20 मेट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस सहायता में दवाएं, चिकित्सा उपकरण, अस्थायी आश्रय और स्वच्छता सहायता तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन समय में कोलंबिया के साथ एकजुटता से खड़ा है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले में सुरंग हादसे के बाद आज घटनास्थल पहुंचे और राहत तथा बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
3: 22 लोग काम कर रहे थे,

0: जिसमें से तीन लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियां यहाँ पर हैं। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए।
1: पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन सुरंग हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरंग ढहने से हुई जान हानि पर दुख व्यक्त किया है। ओडिशा में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण उत्तरी हिस्सों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
2: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ के हालात गंभीर है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैल रहा है, सड़कें डूब गई हैं और उफनती नदियों के वजह से संपर्क टूट गया है। केंदुझर जिले के आनंदपुर और पटना में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बालेश्वर जिले में मथानी में जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आनंदपुर रिंग तटबंध में दरार आने से बाढ़ का पानी फिर से अंदर आ गया है। केंदुझर जिले के जोड़ा और बड़बिल में भी जलभराव की स्थिति है। मयूरभंज में बूढ़ा बलंगा नदी का पानी बारीपदा के कुछ हिस्सों में फैल गया है। सुवर्णरेखा और बैतरणी नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण अधिकारियों ने जोखिम वाले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और निगरानी बढ़ाना शुरू कर दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 212 अंक गिरकर 77,868 पर और निफ्टी 45 अंक फिसलकर 24,351 पर आ गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनः निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का आज के विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। कल स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं विमलेश।
3: जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं अजीत। स्वाधीनता दिवस की आप सबको बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर कविता से।
2: तो शुरू करते हैं कविता। जब भी सर झुके मेरा तब देश को सलाम हो, तमन्ना बस यही है मेरी हर सांस देश के नाम हो।
3: तिरंगे की शान पर ये जीवन कुर्बान हो, हर धड़कन में मेरी भारत ही का नाम हो। श्रोताओं, कैसी लगी कविता जरूर बताइएगा।
2: तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
3: तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। लिखते हैं,
2: अनुभव और कर्म ये दो हमारे गुरु हैं, दोनों ही साथ चलते हैं। कर्म परिस्थिति में लड़ना सिखाता है और अनुभव जीत हासिल करना।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश सुनने की।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी, कूट कुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक।
3: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
3: और भवरपुर बसना छत्तीसगढ़ से राधेश्याम, चंपा देवांगन।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
3: ये भी जानिए श्रृंखला में एक बार फिर से हम लेकर आए हैं श्रोताओं आपके लिए रोचक जानकारियों का पिटारा। जैसा कि आपको पता है कल हम मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त की आज़ादी का जश्न।
2: श्रोताओं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है 1857 से।

0: जो 1947 तक चली। हम सब जानते हैं कि 10 मई 1857 को ये मेरठ छावनी से शुरू हुआ था, जब जननायक मंगल पांडे ने बगावत का बिगुल बजा दिया था।
1: श्रोताओ, ऐतिहासिक रूप से इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है
0: जी,
1: लेकिन इससे पहले भी स्थानीय रूप से बहुत से जनजातीय और अन्य समूहों ने भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठाई और आजादी का नारा बुलंद करके राष्ट्रीय आंदोलन का मंच तैयार किया।
0: इन जनजातीय समूहों में मुंडा, भील, उरांव, गोंड, संथाल, कड़ावा इत्यादि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन आदिवासी आंदोलनों के नायकों में बिरसा मुंडा, सिद्धो और कानू और अल्लूरी सीताराम राजू जन जन में जाने जाते हैं।
1: तो श्रोताओ, एक लंबे संघर्ष के बाद आजादी मिली
0: जी,
1: तो आज हम विशेष रूप से जानेंगे कि क्या हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो पहली बात आपको बता दें श्रोताओं कि 15 अगस्त 1947 को भारत के पास कोई राष्ट्रीय गान नहीं था, इसीलिए उस दिन कोई गीत नहीं गाया गया था।
0: जी हाँ श्रोताओं, क्योंकि राष्ट्रगान जन गण मन महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था, लेकिन इसे देश का राष्ट्रगान 1950 में ही घोषित किया गया।
1: जी, तो अब बात करते हैं तिरंगे की। श्रोताओं, आपको बता दें पहली बार तिरंगा झंडा 6 अगस्त 1947 को फहराया गया था, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से झंडा 16 अगस्त 1947 को ही फहराया गया था।
0: तो क्या 15 अगस्त के दिन कोई समारोह नहीं हुआ था? श्रोताओं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
1: जी, 15 अगस्त 1947 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में तिरंगा फहराया था और 16 अगस्त 1947 को उन्होंने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया था।
0: जी,
1: आपको बता दें कि उस दिन लाल किले के प्रांगण में लाखों की भीड़ थी।
0: श्रोताओं, एक और रोचक बात आपको बता दें कि 15 अगस्त को अन्य देश भी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। वो देश हैं दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी स्वतंत्रता दिवस के दिन की। अब आज का प्रश्न, आज ही की जानकारी से, जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर।
0: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब सुनते हैं आज के विशेष शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है दादा भाई नौरोजी।
0: इस कार्यक्रम में भारत के स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके प्रयासों और योगदान की चर्चा की गई है। उन्हें आधुनिक भारत की राजनीति का पितामह भी कहा जाता है।
2: आधुनिक भारत के निर्माताओं में दादा भाई नौरोजी का नाम प्रमुख है। अंग्रेजों को उनके जुल्मों के लिए खरी खोटी सुनाने वाले पहले भारतीय वे ही थे। इंग्लैंड में उन्हीं लोगों के वोटों से वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना जाना भी उनके जैसे महान व्यक्ति का ही काम था। भारतीयों में स्वदेश के प्रति प्रेम और उन्हें स्वराज्य का नारा देने वाले भी दादा भाई नौरोजी ही थे। यही कारण है कि इस देश के लोग अगर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं तो दादा भाई नौरोजी को राष्ट्र का पितामह। 4 सितंबर 1825 को एक पारसी पुरोहित के घर दादा भाई का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था श्री नौरोजी पालनजी दोरड़ी और माता का नाम श्रीमती मीणकबाई था। पुरोहिती और थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी से ही इनके परिवार का पालन पोषण होता था। 4 वर्ष की कम उम्र में ही दादा भाई के सिर से पिता का साया उठ गया। परिवार आर्थिक कष्ट में डूब गया। दादा भाई के पिता ये चाहते थे कि उनका बेटा भी बड़ा होकर पारिवारिक पुरोहिताई का काम करे, लेकिन उनकी मां ने उन्हें पुरोहित बनाने की बजाय स्कूल भेजना उचित समझा और उनकी पढ़ाई का खर्च जुटाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करने में कोई कसर ना छोड़ी। उन दिनों देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था और विदेशी शासन को इसकी कोई चिंता ना थी कि भारत के लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। बंबई के तत्कालीन गवर्नर श्री माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन कुछ भिन्न विचार के थे। उन्होंने अपनी कोशिशों से नेटिव एजुकेशन सोसाइटी नाम की एक संस्था बनाई जो भारतीय बच्चों को शिक्षा देने का काम करती थी। इस संस्था ने बंबई

में दो स्कूल खोले। उनमें से एक में अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी और दूसरे में देशी भाषा। दादा भाई की मां ने उन्हें देशी भाषा वाले स्कूल में भर्ती करवा दिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज में वो न केवल पढ़ने में तेज थे अपितु दूसरे क्षेत्रों में भी वे सबसे आगे थे। उनकी योग्यता को देखकर उनके एक प्राध्यापक ने उन्हें भारत की आशा नाम दिया था। आगे चलकर

0: तुम इंग्लैंड जाकर बैरिस्टरी कर लो।
1: लेकिन सर, इंग्लैंड जाना और वहां रहकर बैरिस्टरी पढ़ना, इन सब के लिए तो बहुत पैसा चाहिए।
0: इसकी तुम चिंता ना करो, तुम्हारी बैरिस्टरी की पढ़ाई का सारा खर्चा मैं दूंगा। तुम जाने की तैयारी करो।
1: सर, आप मेरी पढ़ाई के लिए खर्चा करेंगे? लेकिन सर, मैं अपनी माँ और घर के अन्य लोगों से पूछकर ही कुछ फैसला कर सकता हूं।
0: जैसे तुम्हारी मर्जी।
2: दादा भाई ने जब अपने घर में इंग्लैंड जाने और वहां बैरिस्ट्री पढ़ने की बात कही तो पारसी समाज के बुजुर्गों ने इसका विरोध किया। उन्हें डर था कि इंग्लैंड जाकर दादा भाई कहीं ईसाई न बन जाएं। परिणाम यह हुआ कि दादा भाई ना इंग्लैंड जा सके और ना ही बैरिस्ट्री पढ़ सके। दादा भाई अपने विद्यार्थी जीवन में ही सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने लगे थे। जनता की भलाई और उन्नति के काम में वो पूरी तरह जुट गए। लड़कियों की शिक्षा को कार्य रूप देने वाले वे पहले व्यक्ति थे। ऐसे समाज में जहां लड़कियों को शिक्षा देने के प्रबल समर्थक न थे, दादा भाई ने कुछ विद्यार्थियों को इकट्ठा करके बंबई में एक संस्था बनाई। इस संस्था द्वारा उन्होंने लड़कियों की शिक्षा का कार्यक्रम शुरू कर दिया। अपेक्षा के अनुसार तत्कालीन समाज ने उनका कड़ा विरोध किया।
3: अरे भाई, कौन हो तुम? ये घर घर जाकर क्या प्रचार कर रहे हो?
1: जी, मैं दादा भाई हूँ।
4: दादा भाई?
1: और हमारी संस्था ये प्रयत्न कर रही है कि लड़कियाँ स्कूल जाएं और शिक्षा प्राप्त करें।
4: अरे लड़कियाँ पढ़ेंगी है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है।
3: अरे लड़कियाँ घर से बाहर जाएंगी? अरे ना भाई ना।
5: अरे जाओ, कुछ और काम करो।
1: सुनिए सुनिए, आप लोग मेरी बात तो सुनिए। देखिए, लड़कियों का अलग से स्कूल होगा और यदि वो पढ़ लिख जाएंगी तो उनके जीवन में नई रोशनी आएगी, वो परिवार और समाज को बेहतर बनाने में सहायक होंगी।
2: दादा भाई के इस प्रचार का लगातार विरोध होता रहा, किंतु दादा भाई और उनके सहयोगियों ने हिम्मत ना हारी। उन्होंने लड़कियों का एक नियमित स्कूल खोल दिया और उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप कुछ लड़कियां उस स्कूल में आने भी लगी। कुछ पढ़े लिखे बुजुर्ग लोग दादा भाई की लगन और ईमानदारी से प्रभावित हुए बिना न रह सके। सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया और देखते ही देखते बंबई में लड़कियों के कई स्कूल खुल गए। 30 वर्ष की आयु में ही दादा भाई को एक व्यापारी कंपनी के सहयोग से इंग्लैंड जाने का मौका मिला। वे जानते थे कि व्यापारिक तिकड़मबाजी में तो वे सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन इंग्लैंड जाने का ये मौका उन्हें फिर नहीं मिलेगा। वे इंग्लैंड जाकर अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता और भारतीयों की उन्नति के लिए सक्रिय कार्य करना चाहते थे। अतः इंग्लैंड पहुंचते ही उन्होंने अपने व्यापारिक कामों के साथ देश सेवा का काम भी शुरू कर दिया। उनका विश्वास था कि यदि इंग्लैंड की आम जनता और सरकार को भारत की दुर्दशा से परिचित कराया जाए तो भारत की हालत में सुधार हो सकता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की सभाओं में दादा भाई ने अपने राजनीतिक विचारों को अंग्रेजों के सामने रखा।
6: भारत का शासन भारत के हित में होना चाहिए और ये भारत में 1,00,000 सैनिक रखकर नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लाखों भारतीयों की सहमति और विश्वास से हो सकता है।
2: मई 1869 को इंग्लैंड से बंबई आकर उन्होंने भारतीयों की एक सभा बुलाई।
6: मेरे साथियों, साथियों, हमें भारत में भी ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसी जनता की अपनी प्रतिनिधि संस्थाएं बनानी चाहिए।
5: क्या ब्रिटिश सरकार ऐसा होने देगी?
6: ब्रिटिश सरकार के सामने हम अपना प्रस्ताव रखें, उससे पहले हमें इसके योग्य बनना होगा।
7: लेकिन वो कैसे?
6: इसके लिए हमें लोगों को तैयार करना होगा और जनमत को तैयार कर अन्याय व गलत बातों के खिलाफ आवाज उठानी होगी।
7: लेकिन लेकिन हमारी आवाज सुनेगा कौन?
4: और क्या ब्रिटिश सरकार इस जनमत की आवाज को बर्दाश्त करेगी?
7: क्या अंग्रेज सरकार इसे बर्दाश्त करेगी?
6: वो बर्दाश्त ना करे, पर हमारे लिए ये जरूरी है कि हम इंग्लैंड में एक ऐसी संस्था बनाएं जो भारतीयों की मांगों को इंग्लैंड

0: की पार्लियामेंट में उठाए।
1: देखते देखते बंबई के लोगों में नई लहर दौड़ गई और इसके बाद बंबई में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शाखा कायम हुई। दादा भाई ने सोचा कि यदि इंग्लैंड की लोकसभा में भारत का कोई प्रतिनिधि हो तो भारत की दुर्दशा का हाल वहां की जनता तक पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए वे पुनः इंग्लैंड गए और वहां के लोकसभा चुनाव में खड़े हुए, किंतु इसमें वो हार गए। इस हार से वो जरा भी निराश नहीं हुए। भारत की एक और राष्ट्रीय शख्सियत मदाम भीकाई कामा ने उनके अगले चुनाव के लिए काम आरंभ किया। परिणामतः उन्हें इंग्लैंड की लोकसभा चुनाव में सफलता प्राप्त हुई। इतिहास में यह पहला अवसर था जब ब्रिटेन की लोकसभा में एक साधारण भारतीय चुना गया था। लोकसभा की कार्रवाई में शुरू से ही उन्होंने ये साबित करना शुरू कर दिया कि भारतीय लोग विद्या, बुद्धि और सतर्कता में अंग्रेजों से कम नहीं। उन्होंने अपने प्रयत्नों से लोकसभा में सिविल सर्विस में भारतीयों को भर्ती करने का प्रस्ताव पास करवाया। भारत के लोगों के लिए उनका ये प्रयास बहुत महत्वपूर्ण था। 81 वर्ष की आयु में भी वो देश के सुधार में दिन रात लगे रहते थे। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। मित्रों के आग्रह पर सन 1907 में वे लंदन से स्वदेश लौट आए। 30 जून 1917 का वो दिन दुर्भाग्यपूर्ण था जब स्वराज्य का सपना अपनी आंखों में लिए देश का ये वयोवृद्ध नेता 92 वर्ष की आयु में इस दुनिया से सदा के लिए विदा हो गया। गोखले और महात्मा गांधी ने दादा भाई की कर्तव्य निष्ठा को आगे बढ़ाया। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की इस मूर्ति के प्रति देश सदैव ऋणी रहेगा।

0: दादा भाई नौरोजी, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है सरदार वल्लभ भाई पटेल।
1: ये कार्यक्रम भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी अहम भूमिका और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आधुनिक भारत के निर्माण और एकीकरण में उनके विशेष योगदान के बारे में विस्तार से बताता है।
2: मैं कम बोलने वाला आदमी क्यों? क्यों मैं कम बोलता हूं? एक सूत्र है कि जो मैंने सीख लिया है कि मौनम मूर्खस्य भूषण, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं, वो विद्वानों का काम है। लेकिन जो हम बोले उसी के पर हम न चल सके तो हमारा बोलना नुकसानकारी है, इसलिए भी मैं कम बोलता।
3: भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महात्मा गांधी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई, पंडित नेहरू ने भारत के नव निर्माण की नींव रखी, तो सरदार पटेल ने 500 से भी अधिक देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाकर उसे एक स्वतंत्र, एकीकृत और अखंड राष्ट्र की पहचान दी।
4: लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को गुजरात में हुआ था। वल्लभ भाई की आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। आगे पढ़ने के लिए वे पास के शहर पेतलाड़ चले गए। वहां वे पढ़ाई के साथ साथ ही खेलकूद, कुश्ती और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते थे। तभी एक दिन,
5: वल्लभ वल्लभ।
6: हाँ।
5: अरे तुमने कुछ सुना
6: क्या? क्या हुआ घनश्याम?
5: अरे वो अपने देसाई सर है ना,
6: हाँ?
5: उन्होंने राम जी को क्लास से निकाल दिया।
6: क्लास से निकाल दिया?
5: हाँ।
6: मगर क्यों? वो तो बड़ा सीधा साधा लड़का है।
5: राम जी के पास किताब नहीं थी, घर से पैसे नहीं आए, इसलिए वो खरीद नहीं सका। पर देसाई सर भला उसकी क्यों सुनते, उन्होंने राम जी पर 4 आना फाइन कर दिया।
6: किताब न लाने पर 4 आने फाइन? फिर क्या हुआ?
5: फिर क्या?

0: आज क्लास में आते ही देसाई सर ने पूछा,
1: क्यों राम जी फाइन लाए हो?
0: तो बेचारा राम जी बोला, नहीं सर मेरे पास पैसे नहीं है। तो जानते हो इस पर सर एकदम भड़क गए और बोले,
1: निकल जाओ मेरी क्लास से और जब तक फाइन लेकर ना आओ तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना।
2: ये तो सरासर अन्याय है। ठीक है तो कल से सिर्फ राम जी ही नहीं, हम में से कोई भी उन्हें शक्ल नहीं दिखाएगा।
0: क्या कह रहे हो, देसाई सर का गुस्सा नहीं जानते हो तुम?
2: जानता हूं, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे अन्याय करना बुरी बात है वैसे ही अन्याय सहना भी बुरी बात है। हम गरीब घरों के लड़के हैं, हमारे माँ बाप किसी तरह पेट काट कर हमें पढ़ाते हैं। अगर हमें बिना कसूर जुर्माना भरना पड़े तो हमारे माँ बाप इतना पैसा कहाँ से लाएंगे भाई?
0: लेकिन अभी तो सिर्फ राम जी के चार आने का ही सवाल है।
2: सवाल चार आने का नहीं है घनश्याम, सवाल है अन्याय के आगे सिर झुकाने का। देसाई सर को गुस्सा कुछ ज्यादा ही आता है, बात बात पर मारपीट, बात बात पर फाइन। इसी तरह वो पारिक सर हैं जो जबरदस्ती लड़कों को अपनी दुकान से कापी कलम खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। सब जानते हैं वो बाजार भर में सबसे महंगा सामान बेचते हैं, फिर भी हमें उनकी दुकान से सामान खरीदना पड़ता है।
0: हाँ और अगर ना खरीदो तो नंबर कम देते हैं।
2: इसीलिए तो कहता हूं सब मिलकर एक हो जाओ और इस अन्याय का विरोध करो। चलो सब लड़कों से बात करते हैं।
0: ठीक है,
2: उनसे कहते हैं कल से कोई लड़का उनकी क्लास में न जाए।
0: लेकिन वल्लभ सुनो तो सही, अगर इतने सारे लड़के क्लास में ना जाकर इधर उधर घूमेंगे तो प्रिंसिपल साहब नाराज नहीं होंगे क्या?
2: हाँ ये तो तुम ठीक कहते हो। ठीक है, इसका हल भी मैंने सोच लिया है।
0: क्या?
2: स्कूल के बाहर जो धर्मशाला है उसमें बैठेंगे, ना इधर उधर भटकेंगे ना शोर करेंगे। तुम जाकर उस धर्मशाला में हमारे बैठने की व्यवस्था करो और सुनो बाबू से कहो कहीं से 3-4 घड़ों की व्यवस्था करें।
0: घड़ों की व्यवस्था? पर वो क्यों?
2: अरे भाई इतने लोग दिन भर वहां बैठेंगे तो पीने का पानी भी तो चाहिए। हम लोग वहीं बैठकर अपना काम करेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे।
0: हाँ वल्लभ ये ठीक है।
3: वल्लभ भाई की ये पहली हड़ताल सफल रही। 3 दिन तक सिर्फ उनकी कक्षा के ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल के विद्यार्थियों ने अपनी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार किया। आखिर प्रिंसिपल साहब ने अपने सहयोगियों की ओर से क्षमा मांगी और आश्वासन दिया कि फिर कभी किसी छात्र को बिना अपराध सजा नहीं दी जाएगी।
4: इस घटना से वल्लभ भाई के 2 प्रमुख गुण प्रकाश में आए। एक था उनका कुशल नेतृत्व और दूसरा संगठन की अद्भुत शक्ति। वल्लभ भाई में एक और विशेषता थी और वो थी उनकी शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता। कठिन से कठिन परिस्थिति में वे बड़ी जल्दी सही निर्णय लेते थे और फिर पूरी दृढ़ता और लगन से उसके पालन में लग जाते थे। उनके इन्हीं गुणों को देखकर गांधी जी ने उन्हें अपना विश्वास पात्र सहयोगी बनाया था।
3: मैट्रिक करने के बाद वल्लभ भाई ने डिस्ट्रिक्ट लीडर की परीक्षा पास कर गोधरा में वकालत शुरू की। बाद में उन्होंने लंदन से बैरिस्टर की परीक्षा पास की और अहमदाबाद में प्रैक्टिस करने लगे। जल्दी ही एक कुशल और निर्भीक वकील के रूप में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। उन्हें अहमदाबाद नगर पालिका का सदस्य और बाद में उसका अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक हित के लिए कई बार अंग्रेज अफसरों से लोहा लिया और विजय प्राप्त की। ऐसी ही एक घटना थी नागपुर के झंडा सत्याग्रह की।
5: ये क्या दिनेश भाई, आज फिर झंडा लेकर जुलूस निकालने का इरादा है क्या?
6: हाँ भाई इरादा तो पक्का है।
5: पर सुना है कल सिविल लाइंस वाले जुलूस में काफी लोग गिरफ्तार हो गए।
6: हाँ काफी स्वयंसेवकों ने गिरफ्तारी दी और जानते हैं उनमें करोड़पति सेठ जमनालाल बजाज भी थे।
5: अच्छा सेठ जमनालाल को भी नहीं छोड़ा, तो फिर अब जुलूस का नेतृत्व कौन करेगा?
6: सेठ जमनालाल की गिरफ्तारी की खबर सुनकर अहमदाबाद से वल्लभ भाई पटेल आ रहे हैं, वही खेड़ा सत्याग्रह वाले, बड़े जीवट वाले व्यक्ति हैं, अब वही इस झंडा सत्याग्रह की बागडोर संभालेंगे।

0: ये लो, वो आ ही गए।
1: क्यों दिनेश भाई, कैसे हो? यहाँ का क्या समाचार है?
0: जी मैं अच्छी तरह हूँ, पर आप यात्रा से आए हैं, थके होंगे, कुछ देर आराम कर लीजिए, बाकी बातें कल होंगी।
1: नहीं भाई, मैं किसान का लड़का हूँ, आज का काम कल पर नहीं छोड़ता। तुम पहले यहाँ का हाल सुनाओ।
0: यहाँ का हाल ठीक नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि सेठ जमनालाल की गिरफ्तारी से बहुत से लोगों की हिम्मत टूट गई है। सबसे पहले तो हमें स्वयं सेवकों की आवश्यकता है।
1: मेरा भी यही ख्याल है, पर नागपुर में इतने स्वयं सेवक मिलने कठिन है। ऐसा करें कि सभी प्रांतों के कांग्रेस अध्यक्षों को मेरी ओर से पत्र लिखवाएं
0: जी,
1: और उनसे अनुरोध करें कि अधिक से अधिक स्वयंसेवक यहां भेजने की व्यवस्था करें।
0: उससे क्या होगा
1: भाई? अंग्रेज सरकार हमें झंडा लेकर चलने नहीं देगी, पकड़कर जेल में डाल देगी। अगले दिन फिर झंडा लेकर जुलूस निकालने के लिए और स्वयंसेवक चाहिए या नहीं?
0: हाँ।
1: ऐसा प्रबंध करना है कि हर रोज कम से कम 50 लोग जुलूस निकालें और गिरफ्तारी दें। देखना है अंग्रेज सरकार की जेल में कितनी जगह है।
2: सरदार पटेल की देखरेख में जुलूस निकलने लगे और गिरफ्तारियां होने लगी। नागपुर जेल भर गई तो सत्याग्रहियों को अकोला जेल भेजा गया, लेकिन 110 दिन चले इस सत्याग्रह में किसी दिन स्वयं सेवकों की कमी नहीं हुई। आखिर अंग्रेज सरकार को शांतिपूर्ण जुलूसों और सभाओं पर से पाबंदी हटानी पड़ी।
3: सरदार पटेल की एक ऐसी ही महत्वपूर्ण विजय थी बारदोली के किसान आंदोलन की सफलता। उनकी इसी सफलता पर गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। हुआ यूं कि सरकार ने बारदोली जिले के किसानों पर लगने वाले कर में एकदम से 22% की वृद्धि कर दी। गरीब किसानों के लिए इतना कर देना संभव नहीं था। सरदार पटेल ने पहले किसानों की ओर से सरकार से अपील की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तब उन्होंने सत्याग्रह का शंख फूंक दिया। उन्होंने गांव-गांव, घर-घर में जाकर किसानों से कहा कि वे बिल्कुल टैक्स न दें।
1: मैं आप लोगों को यह साफ साफ बता देना चाहता हूं कि अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के लिए मैं आपको कोई बड़े बड़े हथियार नहीं दे सकता। बस आपका अपना दृढ़ निश्चय और कष्ट सहने की आपकी सामर्थ्य, यही वो हथियार है जिनसे आपको ये लड़ाई लड़नी है। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर आप कष्ट सहने के लिए तैयार हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी एक दिन आपके आगे घुटने टेकने के लिए विवश हो जाएगी।
4: ठीक है, हम सब तैयार हैं।
1: भाइयों, मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग डरते हैं कि उनकी जमीनें छिन जाएंगी, लेकिन एक बात तो बताइए, क्या अंग्रेज सरकार अपने साथ यह जमीन विलायत ले जाएगी?
4: नहीं।
1: अंग्रेज सरकार के ये आला अफसर क्या खुद आपकी जमीन जोतेंगे?
4: नहीं।
1: तो फिर आप लोग किस लिए डरते हैं? सरकार आपकी जमीन छीनकर दूसरों को दे देगी। अगर आपकी एकता में बल है तो कोई दूसरा आपकी जमीन पर हल नहीं चला सकेगा। सारे गुजरात के किसान आपका साथ देंगे, सारे देश के किसान आपका साथ देंगे। अरे, किसान के लिए कष्ट सहना कोई नई बात है क्या? जाड़े, गर्मी, बरसात में कौन खून पसीना एक करके फसल उगाता है? कीड़े मकौड़ों, सांप बिच्छुओं की परवाह न करके कौन उन फसलों की रखवाली करता है? अंग्रेज सरकार भला इन कष्टों से बढ़कर और क्या कष्ट दे सकती है? आप एक बार इन कष्टों को हंसकर सहने का निश्चय कर लीजिए, आपकी जीत निश्चित है।
4: ठीक है, हम सब तैयार हैं।
3: बारदोली के किसान सत्याग्रह पर सबकी आंखें लगी हुई थीं। ये गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के आदर्शों की परीक्षा थी, और इसमें विजय भी अहिंसा और सत्य की ही हुई। असहयोग आंदोलन, खादी प्रचार,

0: चुनावों की व्यवस्था, सूखा, बाढ़, महामारी आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत बचाव कार्य, इन सभी में सरदार पटेल के कुशल नेतृत्व और संगठन कौशल का प्रमाण मिलता रहा। और इसी तरह 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ।
1: जब हिंद वासियों ने त्याग और तप से स्वतंत्रता हासिल कर ली है,
0: सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। उनके सुयोग्य प्रशासन से विभाजन के समय की भीषण स्थिति जल्दी ही काबू में आ गई। 15 दिसंबर 1950 को बंबई में दिल के दौरे से उनका निधन हुआ। 1991 में उन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। यही कृतज्ञ राष्ट्र की इस लौह पुरुष के लिए श्रद्धांजलि है।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे उमंग। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। 3 बजे हैं, हमारी आज की ये सभा अब समाप्त होती है। शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। श्रोताओं, हमारे विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में नन्हे मुन्ने सुनेंगे अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया।

0: बच्चों
1: जय हिंद। कैसे हैं आप सब बच्चों? कल तो स्कूल में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा है ना दीदी?
0: बिल्कुल। और इसके लिए हमारे स्कूलों में बहुत ढेर सारे कार्यक्रम होंगे है ना बच्चों। डांस होगा, गायन होगा, भाषण होगा। आप सबने भी इसमें पार्टिसिपेट किया होगा है ना?
1: बिल्कुल किया होगा दीदी। और दीदी कल बच्चों को एक और खास चीज का इंतजार होता है।
0: वो क्या?
1: वो जिसका आपको भी इंतजार रहता था जब आप छोटी थी।
0: लड्डू। हाँ, सच में उस लड्डू का स्वाद आज भी जैसे मुंह में घुलसा जाता है, बहुत निराला होता था
1: सच में।
0: पर दीदी कोई ऐसा भी हो सकता है जिसे लड्डू पसंद ना हो?
1: ये गोल गोल मीठे मीठे लड्डू किसे पसंद नहीं होगा भला? एक तो इसका रंग कितना प्यारा और लुभावना होता था ना दीदी, कैसे नहीं मन करेगा खाने को।
0: ये तो बात है कि दीदी आपने रंग की बात की है तो याद आया कि हमारी थाली में भी कितने तरीके के रंग होते हैं हमारे भोजन के है ना। ऐसे ही रंग बिरंगी थाली को बच्चे देखते हैं और उन्हें अच्छा लगता है तो वो खाने का भी मन करता है उनको।
1: बिल्कुल। और बच्चों जब थाली में ढेर सारे रंग होते हैं ना तो वो बन जाती है जादू की थाली। और ये होती है हमारी पारंपरिक थाली जिसमें पता है क्या क्या होता है? पीले रंग की दाल होती है तो हरे रंग की सब्जी, चटनी, सफेद रंग का दही होता है, चावल हो सकता है और कभी कभी रसगुल्ला भी तो हो सकता है।
0: सफेद सफेद हाँ, या फिर लाल नारंगी रंग का टमाटर हो सकता है, गाजर हो सकता है। हो अब सोचकर देखिए खाने का मन ही हो गया है ना दी?
1: सच में बच्चों पता है थाली में मौजूद हर रंग सबका अपना अपना महत्व है। हर रंग अलग अलग काम करते हैं तभी तो थाली में हर रंग मौजूद होने चाहिए। और दीदी पता है इन रंगों का जादू कैसे काम करता है?
0: बताइए दीदी।
1: देखिए अगर हमारी थाली में होगा हरा रंग तो वो हमें देगा आयरन और विटामिन, इससे हमें ताकत तो मिलेगी ही साथ ही हमारी आंखों की रोशनी बढ़ेगी।
0: क्या बात है। और फिर आता है पीला जादू यानी दाल, खिचड़ी, हल्दी वाला चावल। अब ये जो पीला है ना इसमें पाया जाता है प्रोटीन और हल्दी जो पेट को ठीक रखता है और बीमारियों को दूर भगाता है।
1: और बच्चों के लिए जो सबसे जरूरी है वो है सफेद रंग का जादू जिसमें आता है आपका दही, दूध, चावल और मीठा मीठा रसगुल्ला भी। तो इससे क्या होता है आपको बच्चों बहुत सारी कैल्शियम मिलती है, इससे हड्डी मजबूत होती है, दिमाग शांत रहता है।
0: अब बारी आती है लाल लाल नारंगी नारंगी रंग की जादू की। अब वो क्या है? वो है टमाटर, गाजर और अचार। इसमें पाया जाता है विटामिन सी जो हमारी त्वचा को ना चमका देता है,
1: क्या बात है ना? है।
0: हमें बीमार होने से भी बचाता है।
1: और एक और कलर ऐसा है बच्चों जो बहुत जरूरी है अपने खाने में शामिल करना, वो है हल्का सा ब्राउन यानी भूरे रंग का मीठा सा जादू। पता है क्या है वो?
0: क्या है
1: वो? है गुड़।
0: अरे वाह,
1: है ना, खाने में कितना टेस्टी होता है और बहुत आसानी से पचता भी है और खाने को भी पचाता है। और आयरन का ये बहुत अच्छा

0: सोर्स भी होता है तो ताकत भी भरपूर देता है।
1: और ये सिर्फ खाना नहीं है, ये है पांच का फॉर्मूला। वो क्या है?
0: क्या है?
1: अन्न प्लस
0: हाँ
1: दाल प्लस सब्जी प्लस दही प्लस मीठा या अचार। इसी को कहते हैं रंग बिरंगी थाली, पारंपरिक थाली।
0: हाँ बिल्कुल। तो भाई ये तो चीज़ें अब आप देखेंगे बच्चों कि हमने कितने रंग का खाना खाया, और मम्मा अगर आपको रंग बिरंगी चीज़ें दें तो झटपट झटपट खा लो और खूब खूब हेल्दी रहो।
1: और मेरे पास एक छोटी सी कहानी है कि
0: कहानी?
1: हाँ,
0: अरे
1: क्योंकि
0: और दीदी, आप
1: बच्चे
0: बच्चों
1: हो
0: पता है ये हमारे साथ जो दीदी बोल रही है, उन्होंने अपना नाम तो बताया ही नहीं जो कहानी लेकर आई है।
1: हाँ, लेकिन नहीं, पहले तो नाम जान जाइए, हमारी कंचन दीदी जो इतनी ढेर सारी जानकारियां दी
0: और एक
1: आपको।
0: बढ़िया सी कहानी सुनाएंगे अभी दीप्ति दीदी।
1: तो चलिए बच्चों, तैयार हो जाइए। ये अब कुछ बच्चे होते हैं ना दीदी, बहुत ढेर सारे कलर भी उनको दे दीजिए तब भी वो खाने से मना करते हैं। तो इसी पर एक छोटे से बच्चे बिट्टू की कहानी है,
0: हाँ
1: जो कि
0: हाँ
1: 7 साल का था, बहुत नटखट था। लेकिन बिट्टू की एक बड़ी ही और भी ख़राब आदत थी कि जब भी उसे मम्मी खाने को बुलाती तो वो मुंह फुलाकर बैठ जाता। मम्मी मुझे ये हरी सब्जी नहीं खानी, ये दाल नहीं खानी, ये सफ़ेद सफ़ेद चावल नहीं खाने, मुझे चिप्स खाने हैं, ये बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खाना है। तब जब भी मम्मी बिट्टू के सामने थाली रखती तो थाली ऐसे ही रह जाती, वो खाता नहीं। तो एक दिन क्या किया मम्मी ने, जब छोटी सी जब थाली अपने बच्चे के लिए, बिट्टू के लिए सजाई और सामने रखी, और बिट्टू ने जब मुंह बनाया ना, तब उस थाली में से एक रोशनी निकली। जब बिट्टू ने ध्यान से देखा उस रोशनी को, तो थाली की हर चीज़ आपस में बातें कर रही थी।
0: अरे वाह।
1: तो सबसे पहले लाल लाल टमाटर अपनी गोल मटोल मूंछों पर हाथ फेरते हुए बोला, अरे बिट्टू, मुझे नहीं खाओगे? मैं तो तुम्हारा सुपर हार्ट हूँ, मुझे खाओ तो तुम्हारा दिल हमेशा मुस्कुराएगा, तुम्हें
0: वाह
1: कभी थकान नहीं लगेगी। तभी पास बैठी हरी हरी पालक रानी मुस्कुराई और बोली, और मैं तो तुम्हारी आंखों का सुपर चश्मा दूर भगाने वाली हूँ, मुझ में वो ताकत है जो दूर दूर की चीज़ें तुम आसानी से देख सकते हो।
0: वाह
1: फिर
0: वाह।
1: वहीं बैठे हुआ पीली पीली दाल उछल के बोली, और मैं तो तुम्हारे पैरों का सुपर रनर पावर हूँ, अगर मुझे नहीं खाओगे तो शाम को पार्क में दोस्तों के साथ सबसे तेज दौड़ कैसे लगाओगे? तभी कटोरी में से ठंडी ठंडी सफेद दही बोली, और बिट्टू भैया मेरी बात भी सुन लो, मैं हूँ तुम्हारी हड्डियों का आयरन मैन कवच, मुझे खाओगे तुम्हारी हड्डियाँ लोहे जैसी मजबूत हो जाएंगी। बिट्टू ये सब देखकर आंखें फाड़े हैरान खड़ा रहा। उसने देखा कि उसकी थाली की कोई भी चीज़ साधारण नहीं थी, बल्कि हर कलर का अपना जादू था, उसका जादुई खजाना था। हर रंग के पास बिट्टू को सुपर हीरो बनाने की एक ताकत थी। बिट्टू ने हंसते हुए कहा, ओहो, तुम लोग सब मिलकर मुझे सुपर हीरो बनाना चाहते हो, तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और बिट्टू ने जल्दी से पूरी रंग बिरंगी थाली को चट कर दिया। और बच्चों, इसे अभी क्या समझने को मिला, क्या समझा दीदी आपने, कंचन
0: यही
1: दीदी?
0: कि हर रंग का अपना कितना महत्व है,
1: महत्व
0: और
1: होता
0: कुछ
1: है।
0: को भी हमें छोड़ना नहीं है, झटपट झटपट खा लेना है बिल्कुल टेस्ट लेते हुए, और उससे मिलेगी हमें ढेर सारी
1: सारी ताकत,
0: ताकत।
1: और इसी ताकत को हम सुनते हैं अपने इस प्यारे से बाल गीत में।

0: आपने कितना प्यारा गीत
1: वही तो
0: सुनाया।
1: इस मिट्टी के बेटे बनने के लिए हमें अंदर से मजबूत बनना
0: बिल्कुल,
1: पड़ेगा।
0: तो उसके लिए तो भाई रंग बिरंगी थाली को हम ठुकरा नहीं सकते।
1: और साथ में एक चीज और है जो आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है, मेन
0: हाँ
1: विषय है,
0: हाँ
1: वो है टीकाकरण, है
0: बिल्कुल
1: ना।
0: भाई, टीकाकरण का तो ये है दीदी, ये तो हमने खाने के बाद की जो बहुत ज़रूरी है, पर टीकाकरण तो उस वक्त भी हमारा साथ देता है, हमें हेल्दी रखता है, जब हमारे नन्हे नन्हे साथी खा भी नहीं पाते थे,
1: हाँ
0: है ना।
1: बिल्कुल। तो ये कभी ना कभी दोस्तों, छोटे मोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने मेरे बच्चों, आप सभी को एक छोटी सी छोटा सा इंजेक्शन और सुई तो लगा ही होगा, है ना। तो दर्द तो हुआ ही होगा। तो ये इंजेक्शन, ये सुई क्या थी, इसके बारे में जल्दी जल्दी हम बता देते हैं।
0: ये
1: ये होती है वैक्सीन। और ये वैक्सीन क्या होती है कि ये बच्चों डॉक्टर जो है हमें इंजेक्ट करते हैं हमारे शरीर में जब हम बहुत छोटे होते हैं। वो एक प्रैक्टिस गेम की तरह होती है, ट्रेनिंग की तरह, जिसमें वायरस का एक बहुत छोटा कण डाला जाता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को

अभी नन्हे मुन्ने सुन रहे थे अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों बाद युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
2: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
3: UP 112 है उत्तर प्रदेश का सुरक्षा चक्र, क्योंकि ये बेफिक्र होकर खुली हवा में आजादी के साथ सांस लेने का हौसला देता है।
4: तो किसी भी आपात स्थिति में पुलिस, फायर ब्रिगेड, प्राकृतिक आपदा, एम्बुलेंस, साइबर अपराध, महिला या बाल अपराध संबंधित प्रथम प्रतिक्रिया और तत्काल सहायता के लिए 112 मिलाएं।
3: UP 112 की ओर से प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।
4: शहर या देहात, दिन हो या रात, UP 112 है आपके साथ।
3: UP 112 नंबर एक, सेवाएं अनेक।
5: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, प्रणाम। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और ट्यून कर चुके होंगे अपना युवाणी का सफ़र, जिसे हम शुरू करते हैं हर शाम 5:15 बजे विद 100.3 FM। तो एक बार फिर स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल हमारे सभी डियर लिसनर्स का। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट एंड दोस्त अभिषेक,
1: और अभिषेक के साथ आज है आप प्यारी सी, ऑफ कोर्स, पूजा यादव।
0: पूजा प्यारी तो हो पर थोड़ी चुलबुली भी है ना।
1: तो मैं हूँ, इसमें कोई शक नहीं।
0: हाँ, और साथ ही मैं देख रहा हूँ कि तुम बार बार मोबाइल फोन में कुछ देख रही हो, कुछ चेक कर रही हो, और ये माथे पे जो हल्की सी शिकन दिख रही है, मतलब सब कुछ ठीक तो है ना?
1: ऑफ कोर्स अभिषेक, सब ठीक है, लेकिन मैं फोन को जरा D&D मोड में लगा रही थी ताकि जब हम बात करें अपने श्रोताओं से तो जरा भी डिस्टर्बेंस हमें ना हो।
0: अरे वाह, देखो ना दोस्तों, पूजा कितनी समझदार है, और ये बहुत ज़रूरी भी है साथियों। हमारे पास हर वक्त ये जो इडियट बॉक्स है ना, यानी हमारा फ़ोन, ज़रूरत ना रहे तो उसे चुपचाप रख ही देना चाहिए।
1: बिल्कुल, क्योंकि जब हम मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया और बाहरी चकाचौंध से थोड़ा सा खुद को अलग करते हैं ना, तभी हम अपने लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं, बेहतर कर पाते हैं और अपनी लाइफ को भी ट्रैक पर ले आते हैं।
0: बिल्कुल पूजा, लेकिन आजकल लोगों की दिनचर्या कुछ ऐसी सेट हो चुकी है ना कि हम देखते हैं सुबह आँख खुलते ही फ़ोन, पढ़ाई के बीच फ़ोन, खाना खाते वक्त फ़ोन, और यहाँ तक कि सोने से पहले भी फ़ोन। हाँ, क्या हमारी जिंदगी डिजिटल दुनिया के इर्द गिर्द कुछ ज्यादा ही सिमट सी गई है?
1: बिल्कुल अभिषेक, ये बात वाकई समझने की है कि क्या स्मार्टफोन, इंटरनेट ने हमारी लाइफ को इजी बनाया है, क्या हम

0: तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं या कहीं ना कहीं ये तकनीक हमारा इस्तेमाल कर रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है।
1: बिल्कुल, और साथियों इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए आज की इस बातचीत में हम करेंगे डिजिटल डिटॉक्स की आवश्यकता के बारे में ढेर सारी बातचीत। आखिर क्यों जरूरी है डिजिटल डिटॉक्स और क्या है इसके फायदे, सब कुछ जानेंगे लेकिन इस गाने के बाद।

0: तो श्रोताओं, जैसे कि गाने के पहले हम बात कर रहे थे डिजिटल डिटॉक्स के बारे में, तो आइए इसे और डिटेल से समझते हैं।
1: साथियों, डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है कुछ समय के लिए मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और दूसरी डिजिटल गतिविधियों से दूरी बनाना, ताकि हम अपने माइंड और दिनचर्या को दोबारा बैलेंस्ड कर सकें।
0: लेकिन ये बात भी ध्यान रखने की है कि डिजिटल डिटॉक्स का मतलब तकनीक को पूरी तरह से छोड़ देना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है तकनीक का इस्तेमाल जरूरत के अनुसार करना, आदत या मजबूरी के कारण नहीं।
1: यानी कि फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया हमारे साधन के रूप में उपयोगी होने चाहिए, लेकिन हमारी दिनचर्या की रूपरेखा तय करने वाले कंडक्टर की तरह बिल्कुल नहीं इस्तेमाल होने चाहिए।
0: आज लगातार स्क्रीन पर रहने से हमारा ध्यान बार बार भटक सकता है। पढ़ाई या काम के बीच आने वाले नोटिफिकेशंस हमारी एकाग्रता को प्रभावित कर सकते हैं, और सोशल मीडिया पर लगातार दूसरों की जिंदगी देखना कभी कभी हमें अनावश्यक तुलना, तनाव या बेचैनी की तरफ ले जाता है।
1: तो साथियों, देर रात तक स्क्रीन देखने की जो हमारी आदत ना होती है कहीं ना कहीं पूजा, ये भी हमारी दिनचर्या को बहुत अधिक प्रभावित करती है। इसके अलावा बात करें, लंबे समय तक बैठे रहना भी शारीरिक गतिविधि को कम कर सकता है। इसलिए डिजिटल डिटॉक्स साथियों सिर्फ मोबाइल से दूरी नहीं, बल्कि अपने समय, ध्यान और जीवन पर दोबारा कंट्रोल पाने की एक बेहतर कोशिश के रूप में है।
0: क्योंकि साथियों, जब नोटिफिकेशंस और लगातार आने वाले डिजिटल व्यवधान कम होंगे तो हम पढ़ाई या अपने काम पर ज़्यादा फोकस हो पाएंगे। इसलिए ये कंट्रोल की भावना होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम बैलेंस बनाकर चले अपने लाइफ में और अपने करियर में भी।
1: बिल्कुल। और साथ ही साथियों, सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करने से हमारी रात की जो दिनचर्या शेड्यूल है, सोने का स्लीपिंग आवर्स है हमारे, कहीं ना कहीं ज़्यादा व्यवस्थित हो सकते हैं वो, और हमारी नींद और भी बेहतर हो सकती है, और हमारी अगली सुबह भी पूजा कहीं ना कहीं उतनी ही खूबसूरत और सुंदर हो जाती है। इसलिए रात को सोने से पहले हमें स्क्रीन को बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए।
0: बिल्कुल अभिषेक, आज हम खास तौर पे देख रहे हैं कि जो यूथ हैं वो कहीं ना कहीं लेट नाइट चैट्स वगैरह या सोशल मीडिया चलाने का वो चलन आजकल ज़्यादा हो गया है, तो वो अगर देर से सोएंगे तो देर से उठेंगे भी,
1: और ये कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के साथ जुड़ चुका है आज के समय में। देर रात से सोना और सुबह भी उतनी देर से जगना कहीं ना कहीं ये हमारे पूरे सिस्टम को, दिनचर्या को और मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है।
0: बिल्कुल। इसके अगर उलट हम देखें तो कहीं ना कहीं हमें अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। कभी गौर कीजिए, एक ही कमरे में अगर सारी फैमिली मेम्बर्स हों लेकिन हर कोई अपने फ़ोन में ही बिजी रहे, तो वो किस तरह का माहौल होगा। कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल भी नहीं हो सकती ऐसी जगह पे।
1: बिल्कुल।
0: और जैसे कि पहले के टाइम अभिषेक होता था कि हम लोग अपनी भाई बहनों के साथ कैरम खेलते थे। मुझे अभी भी याद है, आज शायद ही कभी देखा है अभिषेक तुमने कि आज कैरम कोई खेलता होगा,
1: बहुत कम दिखाई देते हैं लोग। हम बैठ करके चार लोग एक साथ बैठ करके पुर्जी बना करके जी हुजूर खेलते थे, इवन बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते थे, हाइड एंड सीक खेलते थे, खो खो कबड्डी शाम होते ही खेलते थे। कहीं ना कहीं हम आज के परिदृश्य में पूजा, ये सारे जो खेल हैं जो हमारे शरीर को, हाँ हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को फिट रखते थे, दिखाई नहीं देते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक स्थिति है आज के समय की। और साथियों, बात करें डिजिटल डिटॉक्स की जब हम कर रहे हैं, तो हमारे सामने की जो, जैसा हम बात कर रहे हैं कि हम फैमिली महत्व कम देते हैं, दोस्तों को महत्व कम देते हैं, मोबाइल या सोशल मीडिया पर ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो इसके बजाय डिजिटल डिटॉक्स भी हमें आमने सामने की बातचीत, किताबों, संगीत, खेल, प्रकृति और अपने शौक के लिए समय निकालने के लिए ही बात सिखाता है। क्योंकि वो हमें ये बात सिखाता है कि हमें फ़ोन का कम से कम और सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम दुनिया की अनरियलिस्टिक चीज़ों के बजाय सही काम पर फोकस कर सकें, दोस्त परिवार और समाज के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित कर सकें।
0: क्योंकि हर सेकेंड पर खुद को अपडेट रखने की ज़रूरत से थोड़ी दूर जाकर हमें अपने विचार

0: और भावनाओं को महत्व देना चाहिए, और ये हमारी मेंटल पीस के लिए बहुत जरूरी है, और आज इसकी सख्त जरूरत हम सभी को है।
1: बिल्कुल। और दोस्तों, ये सब करने के लिए किसी बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत नहीं होती है। शुरुआत छोटी रखिए, जैसे हर दिन कुछ समय नो स्क्रीन टाइम तय करें।
0: और भी कई सारी टिप्स हो सकते हैं, जैसे कि खाना खाते वक्त फोन से हमें दूर रहना है, और सोने से पहले, जैसे कि अभिषेक ने बहुत बात की है इस पे, तो स्क्रीन टाइम हमें कम करना है और फोन को अपने बिस्तर से दूर रखना है, ये बहुत जरूरी है। गैर जरूरी नोटिफिकेशंस हमें बंद कर देने हैं, और सोशल मीडिया के लिए एक टाइम लिमिट सेट करनी होगी। और सबसे जरूरी, जब भी फोन उठाने का मन करे, अक्सर होता है कि हम रैंडमली ऐसे फोन उठा लेते हैं और स्क्रॉल करने लगते हैं, हमें पता भी नहीं है कि हमने क्यों फोन लिया है अपने हाथ में,
1: बिल्कुल।
0: तो एक सवाल खुद से जरूर पूछें, क्या वाकई आपको इसकी जरूरत है, या देयर इज समथिंग रीजन कि आपको कुछ चेक करना है, या कहीं ना कहीं आपकी एक आदत बन चुका है।
1: और साथियों, ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने लिए बेहतर दिनचर्या शेड्यूल कर पाएंगे। लेकिन पूजा, आज पढ़ाई, काम, बैंकिंग, संचार और जानकारी सब कुछ डिजिटल माध्यम से हो चुकी है, तो ऐसे में पूरी तरह से डिजिटल दुनिया से दूर रहना भी तो संभव नहीं।
0: तो बहुत ज़रूरी है अभिषेक कि हम तकनीक से जुड़े रहें, अपनी हम प्रतिभा भी दिखाएं, और जैसे कि तुमने कहा कि डिजिटल तो अब हमारी लाइफ का हिस्सा हो गया है, आज हम कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया, और ये हमारी इकोनॉमी को बहुत बूस्ट कर रहा है, लेकिन पर्सनल लाइफ इससे इफेक्ट ना हो बहुत ज़्यादा, इस पर
1: इसके लिए
0: हमें ध्यान
1: हमें
0: देना बहुत
1: बैलेंस
0: ज़रूरी
1: जाना
0: है,
1: बनाना बहुत जरूरी
0: और
1: है।
0: यही वजह है कि आज हमने इस टॉपिक पर बात की।
1: तो डियर लिसनर्स, स्क्रीन को थोड़ा विराम दीजिए और जिंदगी को थोड़ा आराम दीजिए। फिलहाल हम भी दे रहे हैं खुद को थोड़ा विराम और आपको सुनवाते चल रहे हैं ये गीत।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
8: वेलकम बैक दोस्तों, और पूजा बात करते हैं हमारी आज की इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी के बारे में। जैसा कि हर रोज़ हम अपने प्रेरणापुंज सेगमेंट में लेकर आते हैं ऐसी खास शख्सियत जिनके जीवन संघर्षों को हम जानते हैं, समझते हैं, और कहीं ना कहीं उसको हम भी अपने जीवन में उनके मूल्यों को आत्मसात करते हैं।
9: बिल्कुल अभिषेक, साल 1855, राजमहल की धुंधली पहाड़ियों पर छाई खामोशी को अचानक एक ललकार ने चीर दिया, करो या मरो अंग्रेजों, हमारी माटी छोड़ो।
8: हाथ में धनुष बाण, आंखों में आत्मसम्मान का स्वाभिमान और सीने में सदियों के अत्याचार का संतोष लिए हजारों संथाल हूल और इसकी कमान संभाली थी 19वीं सदी के एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कान्हू मुर्मू ने।
9: कान्हू मुर्मू महज एक नाम नहीं बल्कि अंग्रेजों के दमन चक्र और महाजनों की गुलामी की जंजीरों को अपने खून से काटने वाले उस इतिहास का नाम है जिसकी गूंज 1857 की क्रांति से भी पहले ब्रिटिश हुकूमत के कानों में खौफ बनकर गूंजी थी।
8: कान्हू मुर्मू का जन्म वर्तमान झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगना डीह गाँव में हुआ था। वो संथाल समुदाय से ताल्लुक रखते थे। कान्हू और उनके भाई सिद्धू, चांद और भैरव भी इस ऐतिहासिक विद्रोह में उनके साथ कंधे से कंधा।

0: मिला कर लड़े थे।
1: 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषक भू राजस्व नीतियों, जमींदारों की बेदखली और महाजनों के अत्यधिक ब्याज दरों के कारण संथाल जनजीवन पूरी तरह से तबाह हो गया। शोषण से तंग आकर 30 जून 1855 को भोगनाडी गांव से लगभग 20,000 से अधिक संथाल एकत्र हुए
0: और इसी दिन से संथाल हुल की शुरुआत हुई। संथाल विद्रोह का प्रभाव वर्तमान झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के विशाल क्षेत्रों में फैल गया। संथालों

0: एक संथाल एकत्र हुए।
1: और इसी दिन से संथाल हुल की शुरुआत हुई। संथाल विद्रोह का प्रभाव वर्तमान झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के विशाल क्षेत्रों में फैल गया। संथालों ने ब्रिटिश डाकियों, जमींदारों की हवेलियों और पुलिस थानों पर आक्रमण कर शोषण की व्यवस्था को नष्ट कर दिया। विद्रोह इतना भीषण था कि कुछ समय के लिए क्षेत्र में ब्रिटिश प्रशासन पूरी तरह से ठप हो गया था।
0: ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए आधुनिक हथियारों और सेना का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था।
1: संथालों के पास केवल पारंपरिक हथियार थे, फिर भी वो वीरतापूर्वक लड़े। इस संघर्ष में सिद्धू, चांद और भैरव शहीद हो गए। कान्हू मुर्मू को ब्रिटिश सेना ने पकड़ लिया और 23 फरवरी 1856 को भोगनाडीह गांव में ही सबके सामने फांसी दे दी गई।
0: कान्हू मुर्मू का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों को संथालों के अधिकार को स्वीकार करना पड़ा और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम यानी SNT एक्ट इसके बाद अस्तित्व में आया।
1: साथियों, आज भी कान्हू मुर्मू और उनके भाइयों की याद में हर साल 30 जून को हुल दिवस मनाया जाता है। और इसी के साथ आपको बता दें कि सिद्धू और कान्हू के सम्मान में झारखंड के दुमका में स्थित प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का नाम सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय यानी SKMU रखा गया है। कान्हू मुर्मू का नाम आज भारतीय इतिहास में शोषण और शोषक के खिलाफ अटूट प्रतिरोध का प्रतीक है।

0: क्रिकेट विशेषज्ञों ने कहा था कि ये एक्शन टिकेगा नहीं, लेकिन उसी एक्शन ने दुनिया के महानतम बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया।
1: आज हमारे खास सेगमेंट खेल जगत में हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेट में यॉर्कर किंग कहे जाने वाले जसप्रीत बुमराह की। साथियों, 6 दिसंबर 1993 को अहमदाबाद गुजरात में जन्मे जसप्रीत बुमराह का शुरुआती जीवन आसान नहीं था। जब वो सिर्फ 5 साल के थे तो उनके पिताजी का निधन हो गया था, तो ऐसे में उनकी सारी जिम्मेदारी उनकी माताजी ने संभाली।
0: बुमराह को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। वो अक्सर घर की दीवारों पर गेंद फेंककर अभ्यास किया करते थे, जहां से उनकी सटीकता और दीवार के निचले हिस्से पर गेंद मारना यानी यॉर्कर फेंकने की एबिलिटी डेवलप हुई और आज वो यॉर्कर किंग कहे जाते हैं।
1: यॉर्कर गेंदबाजी यानी कि जब गेंदबाज गेंद को ऐसे बाउंस देता है कि वो सीधे बल्लेबाज के जूतों के अंगूठे या पैड के ठीक नीचे गिरती है, तो यही स्टाइल क्रिकेट की दुनिया में यॉर्कर कही जाती है।
0: इस गेंद पर बल्लेबाज के पास शॉट खेलने के लिए बिल्कुल जगह या समय नहीं होता। अगर बल्लेबाज का बल्ला सही समय पर नीचे नहीं आया तो गेंद सीधे विकेट उखाड़ देती है या बैट्समैन PLBW यानी लेग बिफोर विकेट हो जाता है।
1: बुमराह का गेंदबाजी करने का तरीका यानी ये जादुई एक्शन आम गेंदबाजों जैसा बिल्कुल नहीं है। वो बहुत कम दूरी से भाग कर आते हैं। गेंदबाजी करते वक्त उनका जो हाथ होता है ना, वो बिल्कुल सीधे रहता है और गेंद कब और किस तरह से निकलेगी इसका अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मुश्किल होता है। और शुरुआत में कई दिग्गजों का मानना ये भी था कि इस अजीब एक्शन की वजह से वो बार बार चोटिल भी होंगे, लेकिन बुमराह ने अपनी ज़बरदस्त फिटनेस के दम पर इसकी अलग अंदाज को पूजा दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बना लिया।
0: बिल्कुल अभिषेक, और उनकी अचीवमेंट्स की बात करें तो विश्व कप 2024 के असली हीरो वो कहे गए, यानी उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में केवल 4.17 की इकोनॉमिक से 15 विकेट लिए थे।
1: और बात करें टेस्ट में हैट्रिक की, तो वो हरभजन सिंह इरफान पठान के बाद टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले तीसरे गेंदबाज हैं। और खास बात यह कि यॉर्कर गेंद की गेंदबाजी के साथ साथ वो आउट स्विंग, इन स्विंग, स्लोवर बॉल और बाउंसर पर उनका पूरा कंट्रोल रहता है।

0: तो पूजा, धीरे धीरे वक्त हो चला है अपने कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव का, है ना। तो अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चनेयर सेगमेंट का, जिसमें हम हर रोज़ एक प्रश्न लेकर आते हैं और हमारे लिसनर्स उसका जवाब देते हैं। तो साथियों, हमारा जो कल का प्रश्न था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 23 मार्च 1931 की शाम को करीब 7:33 बजे लाहौर सेंट्रल जेल में उन्हें फांसी दी गई थी। अदालत के आदेश के अनुसार उन्हें 24 मार्च की सुबह ही फांसी दी जानी थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने डर के कारण उन्हें निर्धारित समय से लगभग 11 घंटे पहले ही फांसी दे दी थी।
1: और बात करें अगर आज के सवाल की, तो आज का हमारा सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? सवाल एक बार फिर से, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? आप इसका सही जवाब दे सकते हैं हमारी ईमेल आईडी, है yuvvaniald@gmail.com, और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8004926250।
0: तो पूजा, बहुत सारी बातें आज के प्रोग्राम

0: में हमने की, जो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की जीवन से जुड़ी, चाहे वो सोशल मीडिया की बात हो, डिजिटल डिटॉक्स की बात हो,
1: बिल्कुल
0: सभी से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिला। चाहे प्रेरणा पुंज की बात हो, उनके मूल्यों को भी हमने जाना, सीखा, समझा। और भी करेंगे हम बहुत ढेर सारी बातें हमारे आने वाले एपिसोड्स में, लेकिन अभी के लिए अपने श्रोताओं को सुनवाते चलते हैं अपने प्रोग्राम का ये
1: आखिरी
0: आखिरी
1: गीत।
0: गीत।

0: तो दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम युवानी का सफ़र कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा हमारी मेल आईडी पर, जो कि है yuvvanild@gmail.com। और साथियों, उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम बेहतर लगा होगा। पूजा, हम अपने साथियों से फिर मिलेंगे और करेंगे ढेर सारी बातें, है ना?
1: तब तक के लिए मुझे यानी पूजा यादव
0: और मुझे यानी अभिषेक को दीजिए इजाज़त।
1: नमस्कार, नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये प्रसारण दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर राष्ट्रध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे।
1: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। इसके अलावा विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदक की भी घोषणा की गई है। 664 सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा के लिए पदक देने की घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सवेरे 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रवर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा ई रुपए का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में सरकार की यह महत्वपूर्ण पहल है। इस पहल का उद्देश्य गरीबों के लिए सरकारी लाभार्थी योजनाओं से बिचौलियों को हटाना है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में वस्त्र क्षेत्र के समग्र विकास और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति मजबूत करने से संबंधित विषयों पर चर्चा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने वस्त्र क्षेत्र के विकास में नई गति लाने के तरीकों के साथ साथ नवाचार, प्रौद्योगिकी, सतत विकास, निर्यात, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव और फरीदाबाद पुलिस आयुक्त को जहरीली गैस से एक व्यक्ति की कथित मौत और अन्य के घायल होने की घटना पर नोटिस जारी किया है। घटना का संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के अंदर जांच की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में आज एक ग्राम रक्षा गार्ड की एक अन्य गार्ड के साथ झड़प में मौत हो गई और दूसरा गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले सेना के खिलाड़ियों से बातचीत की। सेना के खिलाड़ियों ने इस बार 8 स्वर्ण, 7 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 16 पदक जीते थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि खिलाड़ी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जुलाई महीने में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति 9.87% से घटकर 9.78% रह गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मुद्रा स्फीति में कमी का मुख्य कारण ईंधन और ऊर्जा दरों में कमी आना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। आइए आपको जानकारी दे दें इस सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले हमारे कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की। पहले इस सभा के शेष कार्यक्रम, आज शाम 7 बजे आप सुनेंगे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे तुषार रघुवंशी की वार्ता, डिजिटल किसान मोबाइल से खेती करें। अंग्रेजी कार्यक्रम में रात्रि 8:30 पर सुनिएगा डॉक्टर ऋतुराज त्रिपाठी की वार्ता ह्यूमन बॉडी एंड फूड। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा सुनते हैं आप रात 9:30 पर। रात्रि 10 बजे सुनिएगा नाटक वतन के लिए, लेखक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। रात 10:30 पर सुनिएगा डॉक्टर गीता बैनर्जी का उपशास्त्री गायन। ये थे इस सभा के शेष कार्यक्रम। अब डालते हैं एक नज़र कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों पर। कल सुबह 7 बजे से आप सुनेंगे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लाल किले की प्राचीर से भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का देश की जनता के नाम संबोधन का सीधा प्रसारण। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 8 बजे सुनिएगा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेश की जनता के नाम संदेश। और रात 10 बजे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर आयोजित समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाइयों को हम सुनवाएंगे यतीन्द्र कुमार से की गई बातचीत, शाक सब्जियों की खेती में सावधानियां। सुबह 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर अंशु वैश्य की वार्ता होगी, कुत्ते के काटने पर प्राथमिक उपचार। लोकगीतों के कार्यक्रम लोक माधुरी में 10:05 पर सुनिएगा पन्ना लाल यादव और साथी। इसके अलावा श्रीकांत वैश्य के गाए लोकगीत। 10:30 पर हमारे संग्रहालय से श्रृंखला में स्वतंत्रता संग्राम के दिन स्वतंत्रता सेनानी रघुवंश लाल अवस्थी से कुसुम जोशी की भेंटवार्ता। 12:15 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा सिद्धार्थ मिश्र का गायन। 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में ग्रामीण बहनें सुनेंगी डॉक्टर निहारिका तिवारी की वार्ता, स्वतंत्रता संग्राम के भूले बिस्तरे नायक और नायिकाएं। 2:30 पर सुनिएगा लोकगीत, गायक कलाकार होंगे कल्पनाथ और साथी, जगदीश चंद यादव और साथी। इनके अलावा संगम लाल यादव और साथी। धरती के गीत कार्यक्रम में शाम 5 बजे आपको सुनवाएंगे अनिता नाथ के गाए लोकगीत। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे कर्नल अबरार अहमद से की गई बातचीत, विरासत की आज़ादी युवाओं की जिम्मेदारी। शाम 7:31 पर सुनिएगा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर में आयोजित विभिन्न समारोहों पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। रात्रि 9:30 पर सुनिएगा कॉम्पियर्ड फिल्म संगीत जय गान। रात्रि 10:45 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई वादन। ये थी जानकारी इस सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना। मानसी, जिनकी उम्र है 17 वर्ष, कद 5 फुट 1 इंच, रंग सांवला,

मजबूत शरीर, चेहरा लंबा है। ये दिनांक 16 मार्च 2026 से ग्राम मोहद्दी नगर मजरे जमालपुर थाना लालगंज प्रतापगढ़ से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप संपर्क करें शंकरलाल प्रजापति से, जिनका मोबाइल नंबर है 9621963497। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 9621963497। लक्ष्मी गौतम, जिनकी उम्र है 18 वर्ष, कद 5 फुट 5 इंच, रंग सांवला, इकहरा बदन, चेहरा गोल है। ये दिनांक 16 मार्च 2026 से ग्राम रायपुर तियाई लालगंज प्रतापगढ़ से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप संपर्क करें रवि गौतम से, इनका मोबाइल नंबर है 9565100303। नंबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं 9565100303। करिश्मा, जिनकी उम्र है 17 वर्ष, कद 5 फुट 4 इंच, रंग गोरा, चेहरा लंबा है। ये दिनांक 22 मार्च 2026 से लहिया कामापट्टी थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप संपर्क करें अमरनाथ पटेल से, इनका मोबाइल नंबर है 8957737933। नंबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं 8957737933। ये थी खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना। और अब सुनिए देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देश गान, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने को हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम पंचायत घर।

0: पंचो राम राम। ए भोला भैया, और बतावा खेती किसानी के का हाल चाल बा?
1: भैया देखा एकदम खेती किसानी बढ़िया चलत बाटे, और अपन तो काम ही है भैया, सुबेर संध्या खेती किसानी से जो जुड़ा काम है ओका निपटावत रहा। ए लिए कि भैया खेती किसानी काम ऐसा टे ना कि ई सोचा कि इकट्ठा कोनो काम करबे तो ई ना होई, ये प्रतिदिन जो ना है थोड़ा थोड़ा काम जो ना है करत रहा जो ना है। जैसे अभी देखा इस समय का है कि बरसात के मौसम बटे, और ए समय में का होते फसल में जो ना है जब बारिश के मौसम होते तो खर पतवार ज्यादा निकलत हैं।
0: हाँ।
1: तो भैया देखा इसमें आए थोड़ा थोड़ा अपन जो ना है खर पतवार के जो ना है निराई वगैरह करत रहे ताकि जो ना है वो बढ़े ना पावे।
0: ये भोला भैया, ये तो हम देखते हैं कि चाहे जौन फसल होए, आप जौन है अपन आधुनिक तकनीकी से और लेकिन अपन परंपरागत खेती के ध्यान रख के खेती करे थे, और हम देखे थे कि आपके जौन फसल है वो बढ़िया लहलहात है।
1: भैया देखा ये भी खेती किसानी का है ना भैया, ये जितना मन से मेहनत से कर बया उतना बढ़िया का जो ना है लाभ मिला थे परिणाम मिला थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया, लेकिन भैया आज अपने पंचायती में हम एक खास विषय पर चर्चा करी चाहिए थी, वो है वर्षा ऋतु में पशुअन के देखभाल।
1: अरे एकदम दादा बहनी तू कही गौ जो ना ये मौसम ऐसा टे ना भैया, देखा जाए वो हम इंसान हुई चाहे पशु हुई सबके विशेष ध्यान रखे पड़ा थे, लेकिन जो ना आप कहें कि वर्षा ऋतु में पशुओं के देखभाल ये तो बहुत ही जरूरी बात है। का इस मौसम में का है ना कि अपने पशुओं के तमाम तरह के बीमारी लगे के जो ना है संभावना बनी रहती।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया, यही से हम कहे कि आज अपनी पंचायती में ए पर जरूर चर्चा करब भोला भैया से कि, और जैसे कि हमार सब सुने वाले पंच भैया का सुने और गुने कि कैसे ई मौसम में अपने पशुओं के देखभाल करें, उनका बीमारी आजारी से बचाए रखें।
1: बिल्कुल भैया देखा राधा बहनी एक बात यह है ना कि ये मौसम में सबसे विशेष बात ये ध्यान रखेगा कि जहाँ अपने पशुअन के हम सब बांधी वो बढ़िया सा छाँवदार रहा है, मतलब कि वहाँ पानी उनी ना चुए और उनके जो पशुशाला है वो अच्छे तरीके से छावा रहा है ताकि हुआ कोनो भी तरीके के नमी वगैरह ना बने पावे, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उका तुरंत सुखावे के उपाय रखें और हवादार उनका जो ना है रहाई के व्यवस्था करें ताकि हुआ कोनो भी तरीके से जो ना है नमी ना बना पावे।
0: भैया ये तो बढ़िया बताएं कि देखा जो पशुशाला है हम सब के जहाँ पे बांधे के व्यवस्था करें हुए अपने पशुअन के उनका साफ सुथरा रखें, लेकिन एक बहुत जरूरी बात यो है भैया कि जो न अपने पशुअन के हम सब चारा देते हैं भूसा देते हैं ये समय में ना फफूंदी बड़ी जल्दी लागत है, तो उनका जौन नाद हो जौन भी दे वाला बर्तन हो उनका भी साफ सुथरा रखें और चारा थोड़ थोड़ दें जैसे कि वो हमारे पशुअन खाए लें, ओकरे बाद उमा साफ पानी भरें, देख लें कि पानी पहले से भरा ना होए, उमा उनो तरह के गंदगी ना पड़े हो जैसे कि कोनो तरह के बीमारी ना हो। और भोला भैया बीमारी से बचावे के एक तरीका और है कि समय पर उनके टीकाकरण करावे के।
1: बिल्कुल बिल्कुल, एक चीज और बहनी की जैसे उनका चारा भी जौन देता है ना तो बहुत गीला चारा ना दें, उनका सूखा चारा दें ताकि बारिश में जो ना है वो खराब भी ना हो, अगर थोड़ा बहुत बच जाता है तो वो ना हौदा में खराब ना हो। और साथ ही साथ देखा इस समय का है ना कि बहुत सारे बीमारी के जो ना है घर तो रहबे करा थे, तो अगर तनको कोनो दिक्कत होती है तो कई उपचार के लिए जो ना है सलाह जरूर लें, जौन भी हमें डॉक्टर भैया लोग रहा थी उनसे जाके
0: कहे के मतलब है कि तुरंत पशु चिकित्सक से जाकर के सलाह ले लें और हो सके तो उनका बुलाए के दिखवाए दें कि कौनो का तरह के दिक्कत है, अगर आपके पशुअन खाना ना खा तो अगर आपके पशुअन के खांसी ज्यादा आवत होए, कौनो तरह के लगत है कि दस्त होत है या कौनो तरह के उनके शरीर में कम

0: कमजोरी लागत हो या अंतर दूध में दिक्कत लागत हो, तो अपन पशुअन के समय से चिकित्सक के दिखा लें।
1: बिल्कुल। और जो दुधारू पशु वहाँ भैया दिखा, उनका कहा है कि बारिश में भीगे से बचावें, ऐसे कि अगर वो भीग जाए बारिश में तो देखा जो दूध देता है उहू में भी कमी आ सकत है।
0: ए भैया एक बात और बहुत जरूरी है, वो ये है कि जो हमारे सब के पशुअन होते ना, उनका ये देखे की जरूरत है कि उनके आसपास कौनो बिजली के खंबा ना हो। देखा भैया बरसात के समय है, अब बरखा बादल कब कहाँ गरजे बरसे लागे उनका कुछ कहे के नहीं होते, तो ऐसे में कौनो तार टूट जाए, पानी में गिर जाए, उसे कौनो करंट फैल जाए, ओका भी ध्यान देवे की जरूरत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखा राधा बहनी बात बताई तुम लोग ढेर कर था, लेकिन
0: समझ गए समझ गए भोला भैया कि जब तक पंचायती में ढोल नगाड़ा ना बाजे कुछ नीक नहीं लागे थे।
1: हाँ तो देखा वो तो गीत गाना ही तो बहुत जरूरी बा, लेकिन पंच भैया ने यही बताया था कि और एक अलावा का अपने पंच भैया की सुनो भैया जो ना।
0: देखा भैया आज एक विशेष बातचीत है कि डिजिटल किसान मोबाइल में खेती कैसे करें, कहे के मतलब है कि कैसे मोबाइल से जुड़ के अपने खेती के बढ़िया बना सके। एक पर हाँ बातचीत बाटे तुषार रघुवंशी से, रानू जायसवाल भैया बातचीत करें ओके सुना जाए, लेकिन उससे पहले भैया अपने पंचायती में जब तक गवनाए ना हुए कुछ नीक नहीं लागत है, तो आज आए सूर्य प्रकाश पटेल और संघातिन के कजरी के गवनाई, हम तो कहा तुम सुना और पंच भैया भी सुने।
1: बिल्कुल सुनवाई दे बहनी।

0: बहनी, देखा ये जो नहाए सूर्य प्रकाश पटेल और साथी के जो नहाए गावा कजरी लोकगीत रहा, बिना पानी के खेतिया ना भाए। देखा इतना बढ़िया कजरी लोकगीत रहा बहनी, जब कजरी सुना जाते ना तो फिर से वह जो नहाए बचपना वाला दिन याद आ जाते।
1: हम समझ गए समझ गए, बोला भैया आपके वो गौरन में झूला झूले वाला दिन याद आएगा ना।
0: बिल्कुल भी देखा बहनी, कहा है ना कि झूला तो अब जो नहाए लगा रहा थे, जब नहा घरे दुआरे सब लगा है नीमी के पेड़े पे लड़का गदेला ने, अब झूला थे लेकिन देखा हमारे सबके जो नहा लड़का ही तो नहीं रह गया, लेकिन अंदर से मन होते कि चलिए अब झूला बैठ के झूल इन जाए,
1: कजरी सुन के मन लहलाएगा।
0: हाँ तो भी देखा अपने जो नहा पंचायती में जो नहा जो झूला लगा रहा नहीं, देखा जब कजरी उजरी हो थे और झूला पे जो नहा सब बढ़िया झूला थी लड़कन, तो कितना बढ़िया आनंद के वो भाव होते। तो ये गीत सुन के पूरा वह जो ना है भाव बनत रहा। तो पंच भैया से देखा एक बात और कहा जो ना है कि अब देखा किसान के जो ना है खेती किसानी की जो पारंपरिक खेती तो करते है, लेकिन साथ साथ देखा आज आधुनिक दौर में कहा है ना बहुत सारी जो ना है तकनीक जब से आ गया है,
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो खेती किसानी भी जो ना है बहुत तकनीकी रूप से मजबूत हो गया है, तो ओहू में बहुत वैज्ञानिक अनुसंधान होता है, तमाम नया नया उसमें उपाय आवाता है, यंत्र आवाता है, तो खेती किसानी में बड़ा सहयोगी उनके भूमिका है। और वैसे ही आज देखा डिजिटल, जब हम बात करी थी कि डिजिटल इंडिया के बात करी थी,
1: मोबाइल तो, से जुड़े के बात कर रहे
0: थे, हाँ, तो डिजिटल में जो ना राधा बहनी देखा बहुत बड़ा स्वरूप आ जाते हर तरीके से। और आज देखा हम सब जो ना कहूँ ना कहूँ डिजिटल के ऊपर आधारित हो गया है, चाहे कोनो लेन देन हो तो या कोनो सूचना हो, हर चीज़ देखा फोन पे मोबाइल पे अपने आसानी से उपलब्ध है। तो वैसे खेती किसानी से जुड़ा भी बहुत सारा काम जो ना है देखा आज मोबाइल में जो ना है नियंत्रित होता है, मोबाइल से नियंत्रित होता है,
1: ऐसे जुड़ के लाभ मिल सकत है।
0: बिल्कुल बहनी, और अहमे देखा कहा है ना कि आज खेती किसानी से जुड़ा कोनो भी जानकारी जो ना है देखा तनी के बस खाली जो ना है समय लागत है, उसका बस आप जो ना है खोज करा और मोबाइल के माध्यम से जो ना है इंटरनेट के माध्यम से जो ना है तमाम जानकारी खेती किसानी से जुड़ा अनुभव ओपे मिलत रहा थे, और नया नया का हमारे खेती किसानी में आवत है खोजबीन होता है ओपे भी जानकारी किसान भैया हन के मिलत रहते। तो ये कह सकते हैं कि आज के जो किसान हैं अब वो डिजिटल किसान हो गया।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो किसान भैया हन के देखी थी उन्हें गाँवों में भैया देखा अपने सबके पंचायती में देखी थी मोबाइल पे सारा जो उन्हें मौसम देख लेती कि बारिश हुई ना हुई और धाने में कौन दवाई डाले क्या है का करे क्या है
1: कह गया भैया देखा,
0: वही सब बातचीत के जो उन्हें सुनवाई खातिर एक बातचीत बता रहे ना कि जेके विषय रहा डिजिटल किसान मोबाइल से खेती करें, यह विषय पे देखा एक बातचीत है तुषार रघुवंशी से जो ना है रानू जायसवाल भैया देखा बतियान हैं, और का बतियान हैं कैसे बतियान है का हमारे किसान भैया सुनाए और एका जरूर गुनाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनवाए दे भैया।
0: तो भैया देखा सुना डिजिटल किसान मोबाइल से खेती कैसे करें।
2: देखो भैया समय समय पर अपने खेती किसानी में कृषि विशेषज्ञ भैया आवत हैं, आज वही के परिपेक्ष में तुषार रघुवंशी जी कृषि एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में शोध छात्र हैं, ये अपने बीच आए हैं और हमारे किसान भैया बहनी हरन के मोबाइल से खेती तक के बारे में फरियाए फरियाए बती हैं। तुषार भैया सबसे पहले हम आपसे ये जानने चाहते हैं और हमारे किसान भैया बहनी हरे ये जानने चाहते हैं कि आप ये बताओ डिजिटल खेती आखिर है का।
3: जी धन्यवाद, बहुत सरल एवं आसान भाषा में कहें तो जब किसान खेती से जुड़े कामों में मोबाइल इंटरनेट और डिजिटल तकनीकों का उपयोग करता है तो उसे डिजिटल खेती कहा जाता है। पहले तो किसान जानकारी के लिए कृषि विभाग जाया करता था, कृषि विज्ञान केंद्र पे जाया करता था तथा अनुभवी किसानों पर निर्भर रहता था, बट आज वह जानकारी

0: मोबाइल के एक क्लिक से कुछ ही मिनटों में मिल जाती है। उदाहरण के तौर पर किसान किसी भी मोबाइल से मौसम का पूर्वानुमान देख सकते हैं, मंडियों के ताज़ा भाव की जानकारी ले सकते हैं, फसल में कौन से रोग या कीट की पहचान कर सकते हैं, सरकारी योजनाओं की जानकारी और आवेदन तक कर सकते हैं,
1: अच्छा
0: कृषि वैज्ञानिकों से सलाह भी ले सकते हैं तथा फसल बीमा और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाओं जैसी प्रमुख योजनाओं की स्थिति भी देख सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा ये बताओ तो सर भैया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के बहुत चर्चा है, का किसान भैया बहनी हरे एकर काम उपयोग आई सकत है?
0: जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ शहरों या बड़ी कंपनियों तक ही सीमित नहीं रहा,
1: हाँ
0: बल्कि खेती में भी इसका बहुत इस्तेमाल हो रहा है। इससे किसानों को कई कामों में सही समय पर सही सलाह भी मिल जाती है, जैसे पौधों में कौन सी बीमारी लगी है, खेत में कौन से कीट लगे हुए हैं, मौसम की जानकारी हो गई, खाद की कितनी मात्रा है, ये सब AI पर उपलब्ध है। मान
1: अच्छा
0: लीजिए किसान अपने खेत की फसल देखता है, उसमें कोई बीमारी लगी हुई है, वो अपना मोबाइल निकालता है और फोटो खींच करके उस AI आधारित ऐप पर डाल देता है। उसकी मदद से वो बीमारी के बारे में जान सकता है तथा कैसे नियंत्रण करना है उसकी भी जानकारी ले सकता है।
1: अच्छा एकर मतलब ये है कि जोन किसान भैया बहनी हरे पहले ब्लॉक पे जात रहन, कृषि विशेषज्ञ भैया हरिन के पौधन के सही स्थिति के बारे में बतावत रहन, कर उपयोग AI के द्वारा भी कई सकत हैं। अच्छा ये बताओ भैया, आजकल एग्री स्टैक की बहुत चर्चा चलत है, का है ऐसे किसान भैया बहनी हरिन के का का लाभ है और किसान भैया बहनी हरे विदा एकर उपयोगिता का है?
0: जी, एग्री स्टैक किसानों से जुड़ी सेवाओं का एक डिजिटल व्यवस्था में जोड़ने का एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है।
1: हाँ
0: ये भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा किया गया पहल है। आसान भाषा में कहे तो इसका उद्देश्य किसान से जुड़ी अलग-अलग जानकारियां और सेवाओं को डिजिटल रूप से एक दूसरे से जोड़ना है,
1: अच्छा
0: ताकि किसान को बार-बार अलग-अलग जगहों पर जानकारी या दस्तावेज देने की आवश्यकता ना पड़े। इसमें किसान की पहचान, उसकी भूमि का विवरण, बोई गई फसल और कृषि से जुड़ी अन्य सारी जानकारियों को डिजिटल रूप से जोड़ा जा सकता है। इसी
1: अच्छा
0: दिशा में फार्मर ID यानी किसान पहचान संख्या जैसी व्यवस्था विकसित की जा रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि भविष्य में किसान की सरकारी योजनाएं, कृषि ऋण, फसल बीमा, बाजार एवं अन्य कृषि सारी सेवाओं तक अधिक आसानी और पारदर्शिता के साथ पहुंच मिल सकेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसान की भूमि और फसल से जुड़ी जानकारी डिजिटल रूप से उपलब्ध है, तो
1: हाँ
0: किसी योजना का लाभ लेने या फसल बीमा जैसी सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकता है।
1: अच्छा ये बताओ तो सर भैया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में किसान भैया बहनी हरिन के कौन कौन सावधानी के ख्याल रखे के चाहिए?
0: जी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जैसे कि सारे किसान भाई जानते हैं कि 6,000 रुपया सालाना इसमें उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन
1: हाँ
0: समय पर लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ बातें अति आवश्यक हैं, जैसे कि उनका EKYC यानी नो योर कस्टमर वो पूरी कराएं,
1: समय समय
0: आधार
1: पर
0: समय समय पर पूरी कराएं,
1: हाँ
0: आधार बैंक खाते से लिंक होना चाहिए,
1: हाँ
0: फार्मर रजिस्ट्रेशन होना अत्यधिक आवश्यक है, मोबाइल नंबर अपडेटेड रखें ताकि उनकी सारी जानकारियां आपके मोबाइल पे मिले, ताकि
1: मिल
0: आपकी
1: जाए।
0: किस्त कब मिल रही है उसका नोटिफिकेशन आता रहे।
1: अच्छा
0: भूमि अभिलेख सही रखें, क्योंकि भूमि अभिलेख ही नहीं सही रहेगा तो उसकी जानकारी कैसे उपलब्ध होगी। इन छोटी छोटी बातों से किस्त रुकने की संभावनाएं कम हो जाती हैं।
1: अच्छा ये बता, अगर किसी किसान की फसल प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो जाता है, मोबाइल के का उपयोगिता हो सकत है और मोबाइल कैसे काम आ सकत है?
0: ऐसी स्थिति में भारत सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही उपयोगी है।
1: अच्छा
0: यदि किसान ने बीमा कराया है तो नुकसान की सूचना समय सीमा के भीतर उसे देनी चाहिए।
1: हाँ
0: इसमें मोबाइल के माध्यम से वो शिकायत दर्ज करा सकता है, आवेदन की स्थिति भी जान सकता है तथा बीमा से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसलिए किसानों को बीमा अवश्य कराना चाहिए और उसकी सारी जानकारी वो मोबाइल से ले सकता है।
1: अच्छा मतलब कुल मिला जुला के किसान भैया बहनी हरिन के मोबाइल में वो सारी सुख सुविधा है जोने के जानकारी उन्हें
0: जी
1: चाहें। अच्छा ये बताओ तुषार भैया, उत्तर प्रदेश के किसान के लिए मोबाइल पर कौन कौन सी उपयोगी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध हैं जोने से वो

0: ओकर लाभ किसान भैया ले सके से।
1: वैसे तो उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण सेवाएं शुरू की गई हैं, उनमें से प्रमुख है ई गन्ना ऐप, यूपी भूलेख, ई नाम, किसान सुविधा ऐप तथा दामिनी ऐप। ई
0: हाँ
1: गन्ना ऐप में हम उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए एक विकसित किया गया ऐप है, जिससे गन्ना पर्ची सर्वेक्षण, तौल, भुगतान की स्थिति तथा कैलेंडर जैसी जानकारी मोबाइल पर प्राप्त कर सकते
0: अच्छा,
1: हैं।
0: तुषार भैया का ई गन्ना बाटे का ऐसे किसान भैया बहनी हरिन के यह जानकारी मिल सकत है कि कौन रोग लगा है गन्ना में, ओकर कौन कौन दवाई है, ओके कैसे दूर किया जा सकत
1: जी,
0: है?
1: कुछ जानकारी इससे मिल सकती है, कुछ जानकारी दूसरे ऐप भारत सरकार द्वारा चलाए गए हैं, जैसे कि प्लांटिक्स ऐप और भी ऐप हैं
0: हाँ,
1: जिसपे वो जानकारी ले सकते हैं।
0: अच्छा, डिजिटल तकनीक अपनाने में किसान भैया बहनी हरन के कौन कौन सावधानी रखे के चाहिए और कैसे करें कि उसे उनका नुकसान न हो?
1: देखिए, डिजिटल सेवाएं पाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ तो डिजिटल साक्षरता ही है।
0: हाँ,
1: डिजिटल साक्षरता इसलिए क्योंकि कई किसानों को मोबाइल ऐप और ऑनलाइन सेवाओं का सही उपयोग करने की पूरी जानकारी नहीं
0: नहीं
1: होती।
0: होते हैं।
1: इंटरनेट की उपलब्धता भी प्रमुख है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की गति या नेटवर्क कमज़ोर होने से भी डिजिटल सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाता है।
0: अच्छा,
1: साइबर धोखाधड़ी आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज है।
0: हाँ,
1: फर्जी कॉल, लिंक या ओटीपी साझा करने से किसानों के बैंक खाते और व्यक्तिगत जानकारी खतरे में पड़ जाती है। इसलिए किसान केवल सरकारी या विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी लें।
0: अच्छा,
1: ओटीपी, बैंक विवरण या आधार की जानकारी किसी अनजान व्यक्ति से तो बिल्कुल भी साझा ना करें।
0: तुषार भैया ये बताओ, मोबाइल ऐप है ऐसे किसान भैया बहनी हरे अपने बिजनेस के दुगना कह सकते हैं का? ऐसा करें कि जौन से उनकर आमदनी भी दुगना हो जाए और उनकर जौन सामान है जौन पैदा किए हैं ओके मार्केट में कैसे बेचें, का ऐसे लाभ मिल सकत हम?
1: जी बिल्कुल, आज मोबाइल केवल खेती करने का ही साधन नहीं बल्कि अपने उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने का भी एक प्रभावी माध्यम बन गया है। किसान अब फेसबुक से व्हाट्सएप बिजनेस, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसी डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से अपने उत्पादों की जानकारी अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यदि किसान नियमित रूप से अपने खेत, फसल की गुणवत्ता, उत्पादन प्रक्रिया, उपलब्ध उत्पादों की तस्वीरें या छोटे वीडियो साझा करे तो ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा और बिक्री के अवसर भी मिलेंगे। इसके साथ ही ई नाम, ONDC तथा विभिन्न उत्पादक संगठन जिनमें FPO और स्थानीय ऑनलाइन मार्केट प्लेस के माध्यम से भी खरीदारों तक पहुंच सकते हैं। अपने मोबाइल नंबर, स्थान और उत्पाद की सही जानकारी साझा करके वे नए ग्राहक भी जोड़ सकते हैं।
0: अच्छा,
1: इस प्रकार डिजिटल माध्यम अपनाकर किसान अपनी पहचान बना सकते हैं, बिचौलियों पर निर्भरता भी कम कर सकते हैं और अपने उत्पाद को बेहतर मूल्य प्रदान करा सकते हैं।
0: अच्छा, ये बात सही कहते हैं कि पहले सेठ साहूकार के द्वारा नुकसान करत रहन भाई, उन्हें सही रेट न मिले किसान भैया बहनी हरन के,
1: जी
0: तो मोबाइल के द्वारा उन्हें अच्छा उचित दाम मिल सका था।
1: जी
0: अच्छा तुषार भैया, एक बात और बताओ है कि देखे खेती में मौसम का बहुत उपयोगिता रहता है, तो किसान भैया बहनी हरे मोबाइल से मौसम के बारे में जानकारी लेके अपनी खेती किसानी में ओकर उपयोग कर सकते हैं, तो कैसे करें उन्हें और कैसे उन्हें लाभ मिल सकता है?
1: जी आज किसान मोबाइल के माध्यम से मौसम की जानकारी पहले से कहीं अधिक
0: अधिक
1: आसानी से और समय पर प्राप्त कर सकते हैं। मौसम की जानकारी किसान के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बारिश, तेज हवा, तापमान, आंधी या बिजली गिरने जैसी परिस्थितियों के अनुसार वह खेती के काम की योजना बना सकता है।
0: हाँ,
1: इसके लिए कुछ उपयोगी डिजिटल माध्यम हैं जिनमें कि मेघदूत ऐप, मौसम ऐप एवं दामिनी ऐप प्रमुख है।
0: अच्छा,
1: मेघदूत ऐप किसानों को मौसम के साथ साथ फसल और कृषि कार्यों से जुड़ी सलाह भी देता है,
0: हाँ
1: जैसे कब सिंचाई करें, कब बुआई करें या
0: हाँ
1: मौसम के अनुसार कौन सा कृषि कार्य करना उचित रहेगा।
0: अच्छा,
1: इसी प्रकार से एक मौसम ऐप है जिसमें किसान अपने क्षेत्र का मौसम, पूर्ण अनुमान, बारिश और अन्य मौसम संबंधी जानकारी देख सकते हैं।
0: हाँ
1: दामिनी ऐप भी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे किसान भाइयों की जान उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बिजली गिरने की वजह से होती
0: चली
1: है,
0: जाती है।
1: तो दामिनी ऐप विशेष रूप से बिजली गिरने की चेतावनी देने में उपयोगी है।

0: अच्छा
1: जी
0: अच्छा तो सर भैया एक बात तो और है, किसान भैया बहने हरे पशु पालत हैं, जैसे जानवर हैं, मोबाइल के द्वारा पशु का सुरक्षा, उनके अपने उत्पाद का सही रेट का एकर उपयोगिता कैसे कथन?
1: हाँ, पशुपालन के लिए भी कई उपयोगी डिजिटल ऐप सरकार द्वारा और कुछ प्राइवेट संगठनों द्वारा भी उपलब्ध कराया गया है। इनमें
0: हाँ
1: से एक प्रमुख ऐप है ई गोपाला ऐप, यह
0: अच्छा
1: नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि NDDB द्वारा विकसित ऐप है
0: हाँ हाँ
1: और डेयरी किसानों के लिए काफ़ी उपयोगी है। सरकारी जानकारी के अनुसार इसमें पशुओं के पोषण, स्वास्थ्य, प्रजनन और डेयरी प्रबंधन से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध हैं।
0: अच्छा। तो सर भैया आप हमारे किसान भैया बहने हरन के प्रोग्राम में आएन और खूब बढ़िया से फरिया फरिया बताएन, किसान भैया बहनी हरे मोबाइल से खेती तक के विषय में लाभ ले हैं, आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ देखा राधा बहनी, ये जो
0: हाँ
2: ना है
0: भैया
2: बातचीत रहा डिजिटल किसान मोबाइल से खेती करें, जे पे तुषार रघुवंशी भैया से रानू जायसवाल भैया बातचीत करे रहे हैं, और कितना बढ़िया तरीके से जानकारी दें हमारे किसान भैया जो ना है। अपने के डिजिटल तो है यहाँ, लेकिन अब ओके जो ना है लाभ खेती किसानी में ज़रूर करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अगर
2: और
0: अच्छे से सुने हुई हैं पंच भैया तो समझत हुई हैं कि कैसे अपन मोबाइल का इस्तेमाल करके अपन खेती किसानी के और भी उन्नत कर सकते हैं।
2: बिल्कुल देखा राधा बहनी, एक बात यह है ना कि अब जो ना है समय के साथ साथ अगर अपने खेती किसानी में जो ना है आधुनिकता वैज्ञानिकता नहीं लिया हो तो हमारा खेती किसानी के जो कार्य है वो पीछे हो जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: तो
0: भैया,
2: अपने के आधुनिक बनाए कि अपन खेती किसानी काम करे क्या है। और हम तो कहा देखा बहनी जो ना अपन कार्यक्रम कैसे लगा होकर प्रतिक्रिया के बारे में जो ना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया,
2: हाँ
0: देखा ये कार्यक्रम हमार जो पंचायत घर कार्यक्रम है, वो पंच भैया हरन के कार्यक्रम है, उनके हमार कार्यक्रम कैसा लगा, या हमार कार्यक्रम के जरिए कोनो विषय विशेषज्ञ से बात करे चाहत हो, कोनो प्रश्न पूछे चाहत हो, या कोनो तरह के समस्या के समाधान चाहत हो, तो अपन सुझाव और प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ओकरे लिए हमारे सभी के व्हाट्सएप नंबर आए 800-4926-250, नंबर एक बार और नोट कर लें 800-4926-250, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही फेसबुक पेज पर जाकर के कमेंट करके बता सकते हैं कि उनका कार्यक्रम कैसा लगा।
2: और भैया देखा अब तो समय होता है पंच भैया से विदा लेके,
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: तो पंच भैया मौसम के ध्यान रखत भाई, अपन अपन पशुपन के विशेष ध्यान रखें। तो पंचों राम
0: राम राम।
2: राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। कृपया हमारे विशेष प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: Independence Day, we now bring you Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu's address to the nation.
1: ये आकाशवाणी है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब प्रस्तुत है भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश।

मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। आपसे कुछ ही घंटों बाद हमारे देश की स्वाधीनता के 80वें वर्षों का शुभारंभ होगा। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीय ये पर्व उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारा तिरंगा हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है, इसे हम पूरी शान से फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत माता पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुई। सभी देशवासी स्वतंत्र भारत की नियति के निर्माता बने। हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सके और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान अपने प्रयासों से राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार तथा कलाकार, मार्गदर्शक बुद्धिजीवी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की टीमों के कर्मठ सदस्य, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि,

न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाजसेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सभी सफाई मित्र देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में सक्रिय असंख्य देशवासी तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का पालन करने वाले सभी नागरिक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार है। मैं उन सभी के हृदय से सराहना करती हूँ। तीनों सेनाओं के जवानों, सभी सशस्त्र पुलिस बलों एवं पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों और दूतावासों में कार्यरत देशवासियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। प्यारे देशवासियों, स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास के लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर है। वयं राष्ट्रे जागरूयाम, ये वेदवाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहे। हमारे स्वाधीनता संग्राम में संघर्षरत अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जन जन के गीत बन गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनगिनत देशवासी स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज सुधार तथा राष्ट्र निष्ठा के उच्च आदर्श प्रस्तुत किए। भारत माता की उन सभी महान संतानों को मैं सादर नमन करती हूँ जिनके आदर्श पर चलते हुए हमारा देश स्वतंत्र हुए और आगे बढ़ा। आज 14 अगस्त के दिन को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। हम उन लाखों देशवासियों को याद करते हैं जो विभाजन से जुड़े हिंसा में मारे गए या विस्थापन की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से लाखों लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा और बंटवारे की विभीषिका सहन करनी पड़ी। फिर भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुए उस समय देश के विभाजन के गंभीर परिणामों के साथ साथ 550 से अधिक रियासतों को नव स्वाधीन भारत के साथ जोड़ना भी एक असाधारण चुनौती थी। सरदार पटेल ने राजशाही व्यवस्थाओं को समाप्त करके हमारे स्वाधीन लोकतंत्र में उनका विलय किया। एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आधुनिक भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। प्यारे देशवासियों, भारत के लोगों द्वारा निर्मित हमारे संविधान नागरिकों की भागीदारी पर आधारित है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि के निवासियों में जन भागीदारी की भावना सदा से विद्यमान रही है। उस भावना को नई ऊर्जा के साथ हमारे देशवासी आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय अभियानों को जन भागीदारी से आगे बढ़ाया जा रहा है, ये हमारे लोकतंत्र की प्रेरक उपलब्धि है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्रों में असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरी भी कर सकता है। हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख है। जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे विधायिका में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करें। कार्यपालिका का कर्तव्य है कि जनहित और राष्ट्रहित की नीतियों को कार्य रूप दे। न्याय व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अभाव के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे। हर नागरिक को, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को समानता के आधार पर सम्मान के साथ समय से न्याय मिलना चाहिए। प्यारे देश

देशवासियों, पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है। विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा विकास में बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है। हमारे देशवासी महात्मा ज्योतिबा फुले की 100वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के नए प्रतिमान स्थापित हुए हैं। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में सफलता मिली है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश की योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 59 करोड़ खाता धारक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। उनमें 32 करोड़ से अधिक महिला खाता धारक शामिल है। 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था द्वारा उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए गए हैं। किसान सम्मान निधि तथा किसान क्रेडिट कार्ड से खेती, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे गतिविधियों से जुड़े किसान भाई बहनों को संबल मिला है। विश्व का इतिहास साक्षी है कि सांस्कृतिक आत्मबल पर आधारित विकास गतिमान और स्थायी होता है। आज देश में ये चेतना बलवती हो रही है कि सांस्कृतिक गौरव का भाव देश की संप्रभुता को आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान, कला संस्कृति, अध्यात्म और सदाचार की अनमोल विरासत सौंपी है। हम विरासत और विकास के समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकार ने जन कल्याण की सुविधाओं को पारदर्शी तरीके से जन जन तक पहुंचाया है। हमारे देश में हाईवेज, वाटरवेज, रेलवेज और एयरवेज के रूप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इससे नई उद्यमों के लिए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, नए रोजगारों का सृजन हो रहा है तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। प्यारे देशवासियों, विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत के विकास दर विश्व की औसत विकास दर की तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है। आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी भारत विश्व स्तर पर अग्रणी योगदान दे रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के कुछ लक्ष्यों को हमारे देश ने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी के विकास को पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व गति मिली है। हमारी विदेश नीति देश हित पर आधारित है। शांति, सहयोग, संवाद तथा वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श हमारी विदेश नीति के स्तंभ है। आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा पारस्परिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए हमने अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ग्लोबल साउथ के देशों में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विश्व पटल पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। हमारे

प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहित मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में विश्व समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व हो। हमारे इस प्रयास को अनेक देशों का प्रबल समर्थन मिल रहा है। प्यारे देशवासियों, प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारे प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी आस्था हमारी परंपरा का हिस्सा है। संताली भाषा के एक सरल गीत में हमें गहरा संदेश मिलता है। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा रचित उस गीत के कुछ शब्द इस प्रकार है। दारे गुजुक कान नेलते मिरु चणे राग बया दाया हाया गे गुजुक कान अबुआ जति धर्म दारे चेदा बाबन राग बया आबो ओना नेलते। इस गीत में एक पेड़ के पूरी तरह सूख जाने के कारण रोते हुए एक तोते का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, हे मेरे भाइयों, मरते हुए पेड़ को देखकर तोता पक्षी दुख भरी आवाजों में रो रहा है। हे मेरे भाइयों, मानव संस्कृति रूपी वृक्षों का विनाश होता देखकर हम मानव समाज के लोग विलाप क्यों नहीं कर रहे हैं? इस गीत का संदेश यह है कि सभी मनुष्यों को मानवीय मूल्यों और प्रकृति के संरक्षण के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक हरा हरा पेड़ मानव समाज के नैतिक और स्वस्थ रहने का प्रतीक है। एक पेड़ माँ के नाम तथा लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट यानी लाइफ जैसे अभियानों की भावना के अनुरूप सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बेटियां प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देने वाले ड्रोन दीदी से लेकर वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर बनने तक विभिन्न क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हाल ही में ग्लासगो में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुल 13 स्वर्ण पदकों में 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से अधिक महिला सदस्य हैं। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। अब हमारे देश 3 करोड़ महिलाओं को नई लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मुद्रा योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले उद्यमियों में लगभग 2/3 लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयासों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वे विभिन्न क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। मतदान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी हमारी गणतंत्र की विशेष सफलता है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का 33% प्रतिनिधित्व आरक्षित करने के लिए वर्ष 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया जा चुका है। इस अधिनियम के लक्ष्य को प्राप्त करने से महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा तथा हमारे लोकतंत्र और अधिक समावेशी बनेगा। देश की कुल आबादी में 65% लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। ये युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड है, कमिटेड है और स्किल्ड है। जमीनी स्तर पर युवाओं द्वारा किए गए विभिन्न समस्याओं के इनोवेटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को देखकर मुझे समाज और देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है। केवल 28 वर्षों की औसत आयु वाली युवा टीम द्वारा हाल ही में रॉकेट का सफल प्रक्षेपण करके अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए चरण का शुभारंभ किया गया है। हमारे अनेक युवा स्वरोजगार के मार्ग पर चलते हुए रोजगार प्रदान करने की संस्कृति को अपना रहे हैं। युवा उद्यमियों की भागीदारी से हमारे देश में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। विश्व के बड़े बड़े उद्यम भारत के युवाओं की प्रतिभा और लगन से प्रभावित रहते हैं तथा उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में निजी

करते हैं। ऐसे युवाओं ने विश्व समुदाय में भारत की युवा शक्ति की साख बढ़ाए हैं। हमारी युवा पीढ़ी भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति मेरी आस्था को और प्रबल बनाती है। हमारे विद्यार्थी भारत के भविष्य निर्माता है। जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है, उसी तरह विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के सम्मिलित प्रयास जरूरी है। सार्वजनिक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए अवसर के द्वार खोलती है, इसीलिए सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो। सरकार के प्रयासों तथा नई आर्थिक गतिविधियों से युवाओं के लिए अनेक प्रकार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमारे युवा सफलता के नए मार्ग चुन सकते हैं। हमारे युवाओं का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य देश के भविष्य का आधार है। परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। खेल कूद को युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देश के सभी क्षेत्र के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। इन प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन और उपलब्धियां के उच्च शिखरों तक पहुंच रहे हैं। एक ओर हमारे देश में सबसे बड़ी युवा आबादी है तो दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 70 साल और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपनेपन की भावना तथा उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए पूरे समाज को संवेदनशील रहना चाहिए। प्यारे देशवासियों, सत्य और न्याय के पक्ष में मानवता विरोधी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की भारतीय परंपरा पर हम गर्व करते हैं। 26 जुलाई को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया है। उसके पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के आरंभ का 1 वर्ष पूरा होने पर हमने अपनी सेनाओं के अतुल्य पराक्रमों को स्मरण किया। आतंकवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक ऑपरेशन भारतीय सेनाओं की अचूक क्षमता का प्रमाण है। आतंकियों और उनके समर्थकों को ये कठोर संदेश दिया गया कि वे चाहे कहीं भी जाकर छुप जाए, लेकिन उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देश के साथ अतीत में की गई सिंधु जल संधि का निलंबन करना हमारे देश के विशेषकर किसानों के हित में एक निर्णायक कदम है। दशकों से नक्सलवाद देश के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ था। भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा विकास की सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा इन आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। राष्ट्र गौरव की रक्षा हेतु निर्मित मराठा सैन्य परंपरा से जुड़े 12 दुर्गों को पिछले वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में स्थान दिया गया है और इस वर्ष भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन के स्थल सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत भूमि में एक और भगवान बुद्ध से जुड़े आध्यात्मिक स्मारक है तो दूसरी ओर आत्मसम्मान तथा अपनी गौरवशाली परंपराओं की रक्षा हेतु युद्ध करने की हमारी प्रभावशाली क्षमता के प्रतीक भी विद्यमान है। मेरे प्यारे देशवासियों, सभी भारतवासियों का विकास और कल्याण

0: On the eve of Independence Day, you were listening to Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu's address to the nation.
1: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अभी आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश सुन रहे थे।
2: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
4: मीडियम वेव 401।
5: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच सबसे तेज गति से बढ़ रही है भारत की अर्थव्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के लाल किले पर फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया जाएगा पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर लखनऊ में मौन पदयात्रा में हुए शामिल। कहा, विभाजन की त्रासदी से सबक लेकर मजबूत भारत के निर्माण का ले संकल्प। और मुख्यमंत्री ने अयोध्या में कहा, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए संकल्पित है सरकार। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति

0: द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सकें और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक हम विकसित भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे।
1: स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास के लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर है। वयं राष्ट्रे जागरूयाम, ये वेदवाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहे।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है। उन्होंने कहा कि विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी गई है।
1: पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है, विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा विकास में बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इससे नए उद्यमों के लिए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, साथ ही नए रोजगारों का सृजन हो रहा है और निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: प्यारे देशवासियों, विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर की तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि देश की कुल आबादी में 65% लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। ये युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड, कमिटेड और स्किल्ड हैं। सार्वजनिक परीक्षाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है।
1: विद्यार्थी भारत के भविष्य निर्माता है। जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है, उसी तरह विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के सम्मिलित प्रयास जरूरी है। सार्वजनिक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए अवसर के द्वार खोलती है, इसीलिए सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि खेलकूद को युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देश के सभी क्षेत्रों के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा, इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले और भारत टैक्सी के टैक्सी चालक शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी।

0: समाचार दिल्ली।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित मौन पदयात्रा में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने विभाजन त्रासदी पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने 1947 में देश के विभाजन की त्रासदी को मानवता के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत भारत तभी बनेगा जब समाज एक पहचान के साथ आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारी पहचान केवल एक भारतीय नागरिक की होनी चाहिए।
2: हमारी व्यक्तिगत पहचान हमारे नातेदारी, रिश्तेदारी, पारिवारिक संबंधों के लिए हो सकती है, लेकिन हमारी एक पहचान होनी चाहिए और वह एक भारतीय के रूप में, भारत के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में। ये हमारा एक सामूहिक दायित्व बनता है कि हम सब अपनी उस पहचान को बनाएं, उस पहचान के साथ हम आगे बढ़ें, अन्यथा आपस में हमारा ये विभाजन, यह उन तत्वों को जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं उनको मजबूती प्रदान करता है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के पुण्य स्मृति महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज का बदला हुआ अयोध्या धाम हमें फिर से त्रेता युग का स्मरण कराता है। श्री योगी ने चढ़ावा मामले पर कहा कि SIT की जांच जारी है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है।
3: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने इसके लिए सिफारिश की, SIT बनी, SIT के अनुसार कार्रवाई हुई, कार्रवाई चल भी रही है। वह जो अपराधी था उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, दूध का दूध पानी का पानी ये पहले दिन से कह रखा है और उसके अनुरूप इस पे कार्रवाई करने के लिए सरकार भी और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी पूरी तरह कृत संकल्पित है। इसमें कोई संदेह किसी को होना भी नहीं चाहिए।
1: केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है। इसमें 40 सवाल हैं। इनमें माता पिता का विवरण, आधार, मोबाइल नंबर, कुल बैंक खातों की संख्या, काम के स्थान तक आने जाने का विवरण, धर्म और जाति से संबंधित सवाल शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ हिंदुत्व विचारक VD सावरकर पर उनकी टिप्पणी को लेकर शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही रद्द कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभियोजन आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक मंजूरी नहीं दी थी। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच सबसे तेज गति से बढ़ रही है भारत की अर्थव्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के लाल किले पर फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया जाएगा पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर लखनऊ में मौन पदयात्रा में हुए शामिल। कहा, विभाजन की त्रासदी से सबक लेकर मजबूत भारत के निर्माण का लें संकल्प। और मुख्यमंत्री ने अयोध्या में कहा, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावा मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए संकल्पित है सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स, FM 100.3 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे चित्रपट संगीत।
5: अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्तरंजित दिन जब देश

0: विभाजन हुए और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
2: हमारा हिंदुस्तान जहान में सबसे अच्छा है क्योंकि यहां है अच्छे लोग, अच्छा सिस्टम और देशवासियों की सेवा व सुरक्षा के लिए यूपी 112 की अच्छी सेवाएं।
1: पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, प्राकृतिक आपदा, साइबर क्राइम, महिला व बाल अपराध जैसी किसी भी आपातकालीन स्थिति में 112 पर कॉल करें।
3: यूपी 112 की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथम प्रतिक्रिया के लिए कॉल यूपी 112 नंबर 1 सेवाएं अनेक।
4: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

श्रोताओं, आज की रात कुछ खास है, क्योंकि ये सिर्फ एक रात नहीं बल्कि उस सुबह की प्रतीक्षा है जिसने हमें आज़ादी का सूरज दिखाया था। कल हमारा देश अपनी आज़ादी की 80वीं वर्षगांठ मनाएगा। तिरंगा आसमान में लहराएगा तो उसके तीन रंग हमें त्याग, शांति और साहस का संदेश देंगे। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आइए उन वीरों को याद करें जिनके बलिदान की बदौलत हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं।

0: सबसे पहले हैं भारत वासी।
1: श्रोताओं, भारत केवल एक भौगोलिक नक्शा नहीं बल्कि एक बहती हुई चेतना है। यहाँ की मिट्टी में सिर्फ अन्न नहीं उगता, यहाँ की मिट्टी में किसान का पसीना, सैनिक का त्याग और सदियों की परंपराएं महकती हैं। जब कोई राही देश के खेतों की लहलहाती फसलों को देखता है तो उसके दिल में बस एक ही सदा उठती है।

कभी कभी प्यार सिर्फ मोहब्बत के इजहार का नाम नहीं होता, प्यार जब वतन से हो तो वही जज्बा कुर्बानी बन जाता है। अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसमें प्रेम भी है, जुनून भी है और मातृभूमि के लिए समर्पण का रंग भी है। बसंती चोला हमारे स्वतंत्रता संग्राम के उन वीरों की याद दिलाता है जिनके लिए देश की आज़ादी से बढ़कर कुछ भी नहीं था।

0: श्रोताओं, चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन देशभक्ति की ये भावना यहीं खत्म नहीं होती। कल तिरंगा जब हवा में लहराए तो उसकी ओर सिर्फ आंखें उठाकर मत देखिए, दिल उठाकर देखिए। याद कीजिए उन शहीदों को जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। सलाम कीजिए उन सैनिकों को जो आज भी सीमाओं पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, और एक संकल्प लीजिए, हम अपने हिस्से का भारत बेहतर बनाएंगे। नफरत से नहीं, प्रेम से, बंटवारे से नहीं, एकता से, सिर्फ अधिकारों से नहीं, जिम्मेदारियों के साथ। इसी उम्मीद, इसी विश्वास और इसी गर्व के साथ मुझे यानी अंशुमान को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: चौदह अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर, परिवार, जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। दिस इज आकाशवाणी प्रयागराज। इन आवर इंग्लिश प्रोग्राम टुनाइट वी ब्रिंग यू ए डायलॉग एंटाइटल्ड ह्यूमन बॉडी एंड फूड। पार्टिसिपेंट्स आर डॉक्टर ऋतुराज त्रिपाठी एंड नेहा गुप्ता।
2: Good evening, listeners. Welcome to all of you in English program. Friends, in today's episode, we discuss human body and food. Dr. Rituraj Tripathi is with

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में

0: युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
1: महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
1: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है।
1: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
0: राष्ट्रपति ने भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय की भावना के साथ विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प सुदृढ़ है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाड़ा अप्पा राव के एक गीत का उल्लेख किया। इसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रेरणादायक और सुविचारपूर्ण भाषण दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू के विचार राष्ट्र की शक्ति और प्रत्येक भारतीय की आकांक्षाएं दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश देशवासियों को विकसित भारत के लिए नए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं। बिरला ने कहा कि देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का अवसर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रेल भवन परिसर में तिरंगा रैली का नेतृत्व किया। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य रेलवे संगठन में देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का आयोजन वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे तीसरे चरण के साथ किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया।
2: हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज भारत केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला देश ही नहीं रहा, बल्कि हम ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में एक उभरती हुई

0: शक्ति बन चुके हैं। हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन जो 2014 तक मात्र 46,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार लाल किले पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इस भव्य आयोजन के माध्यम से राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150 वर्ष पुरानी विरासत को याद किया जाएगा। साथ ही 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में देश की यात्रा में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाया जाएगा। समारोह में 2500 सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेट तथा मेरा युवा भारत के स्वयंसेवक भाग लेंगे। इस वर्ष लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थी महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर, स्वच्छ भारत मिशन के शहरी सफाई कर्मचारी, राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम के युवा नवोन्मेष, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षित उत्कृष्ट युवा और पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी कारीगर इस समारोह में शामिल होंगे। समारोह के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न एजेंसियों के लगभग 15,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। लाल किले पर 1,000 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। ये सेवा सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। यात्री सवेरे 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। एक रिपोर्ट।
3: इनमें से 13 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल है। लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र के लिए चुना गया है। हवलदार गजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह, बशीर अहमद, कांस्टेबल जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह, तारिक हुसैन और इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया जाएगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रवर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम उन लाखों देशवासियों को याद कर रहे हैं जो विभाजन से जुड़ी हिंसा में मारे गए या विस्थापित की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि आज हमें जिस स्वतंत्रता का सुख प्राप्त हुआ है वो पिछली पीढ़ियों के महान बलिदान से मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन लोगों को याद करने का अवसर है जिन्होंने विभाजन के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनों को खोया और पलायन करने के लिए मजबूर हुए। हरियाणा के गुरुग्राम में इस अवसर पर एक कार्यक्रम में श्री नवीन ने उन सभी परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया और विस्थापन का दर्द सहा।
4: जब 1940 में लाहौर प्रस्ताव में द्वीप राष्ट्र के सिद्धांत की चर्चा हुई, उसी समय इस देश के लोगों को अंदाजा मिलने लगा था कि इस देश में जब आजादी मिलेगी तो आजादी का दंश हमें विभाजन के रूप में देखना पड़ेगा। मैं आज उन सभी परिवारों को जिन्होंने अपने परिवार जनों को खोया, जिन्होंने विस्थापन का दर्द झेला, मैं उन सबको आज नमन करता हूँ।
1: रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी है। वरिष्ठ अधिकारी आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से मुलाकात कर कल प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के संबंध में जानकारी ली। बड़ी संख्या में छात्रों की यात्रा में शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। छात्रों ने कहा है कि तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण रूप से निकाली जाएगी।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय डिजिटल बैंक मुद्रा डिजिटल रुपया शुरू किया। इस अवसर पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार जरूरतमंदों को मुफ्त राशन वितरण पर 2,10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। इस अवसर पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उड़ीसा में लगातार घनघोर वर्षा जारी है। वर्षा के कारण बालेश्वर, भद्रक, क्योंझर और मयूरभंज के कुछ हिस्से प्रभावित हुए हैं।
1: आज उत्तरी ओडिशा में चारों तरफ पानी ही पानी है। बैतरणी, जलका, बूढ़ा बुलंगा, सुवर्णरेखा और सालंदी नदियों का एक बार फिर उफान पर है। खेत पानी में डूब गए हैं और सड़कें व गांव में पानी भरा हुआ है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। कई लोग राहत शिविरों में हैं और कुछ इलाकों के निवासी राहत सामग्री और गांव में बाढ़ का पानी घुसने को लेकर चिंता जता रहे हैं। IMD ने आज सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग और 14 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जल जीवन मिशन के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को इसे शुरू किया था। योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: where thousands have been evacuated, many remain in shelters, and residents in some pockets are voicing concerns over relief supplies and flood water entering their villages. The IMD has today issued an orange warning for Sundargarh, Jharsuguda, Bargarh and Sambalpur, and yellow warning for 14 districts. More rain is likely to keep the flood threat alive. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
1: Meanwhile, IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh and Uttarakhand till tomorrow. The Met Department has also predicted heavy rainfall over Bihar, Jharkhand, Madhya Maharashtra, Madhya Pradesh, Nagaland, Mizoram, Tripura, Manipur, Odisha for the next 2 days. The weather agency has forecast a generally cloudy sky with a spell of very light rainfall at a few places in the national capital tomorrow. On to sports. Indian Grandmaster R. Pragyananda bounced back from his previous round defeat to secure a convincing victory over Dutch player Jordan van Forest in the fourth round of the Sinkfield Cup. The win took Pragyananda's tally to 2.5 points from 4 games, placing him in a share of second position in the 10-player 9-round tournament. Pragyananda had suffered a defeat against Germany's Vincent Kramer in the previous round. His latest victory will boost his confidence and strengthen his bid for a podium finish. On the eve of the Parsi New Year, Navroz, President Draupadi Murmu has extended greetings and best wishes to all people of the Parsi community living in India and abroad. In her message, the president said that Navroz symbolizes new beginnings and renewed hope. President Murmu noted that the festival of joy and harmony reminds all of the values of coexistence and service to humanity. She highlighted that the Parsi community has made significant contributions to the country's development through its spirit of enterprise and philanthropy. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu says India remains fastest growing major economy amid global instability. Addressing the nation on the eve of Independence Day, President Murmu reiterates government's resolve to ensure development reaches every individual. Government taking comprehensive steps to curb use of unfair means in public examinations to safeguard future of students. President calls for responsible use of natural resources for future generations. Nation to celebrate 80th Independence Day tomorrow. Prime Minister Narendra Modi to lead the celebrations from the iconic Red Fort. 78 gallantry awards announced for Defence Forces and Central Armed Police Forces personnel. And flood situation remains grim in Odisha due to relentless monsoon spell. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. That's all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि दुनिया की गैर यकीनी की सूरत हाल में भारतीय मईशत तेज रफ्तारी के साथ फरोग पाती हुई अहम मईशत के तौर पर तरक्की कर रही है। यौम आजादी के मौके पर कौम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अंत्योदय के जज्बे की रहनुमाई में इस बात को यकीनी बनाना मुल्क का अहद है कि हर की तरक्की हर एक फर्द तक पहुंचे। हुकूमत तालब इल्मों के मुस्तकबिल को तहफ़ फराहम करने की गरज से पब्लिक इम्तहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक जामे इकदामात कर रही है। कल मुल्क 80वां यौम आज़ादी मनाएगा। वज़ीर आज़म ने मोदी तारीखी लाल किले से तकरीबात की क़्यादत करेंगे। दिफाई फोर्सेज और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के अमले के लिए 78 बहादुरी के अवार्ड्स का ऐलान किया गया है। मानसून की मुसलसल बारिश के बाइस उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल संगीन बनी हुई है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि दुनिया के कई हिस्सों में जंग और अदम इस्तेहकाम के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत है। 80वें यौम आज़ादी के मौके पर आज शाम कौम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारतीय मईशत की शरह नमू औसत आलमी शरह नमू से 2 गुना से भी ज्यादा रहने की तवक्को है।
3: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में 2 गुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
2: सदर जमहूरिया ने कहा कि

0: भारत ने पायदार तरक्याती अहदाफ 2030 में से बाज अहदाफ मुकर्रर वक्त से पहले ही हासिल कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि कौमी मफाद भारत की खारजा पॉलिसी की बुनियाद है, जबकि अमन ताउन मुजाकरात और वसुधैव कुटुंबकम का नज़रिया भारत की खारजा पॉलिसी के सुतून हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने इक्तिसादी ताउन बढ़ाने और बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए कई मुल्कों के साथ आज़ाद तजारती समझौते किए हैं। सदर जमहूरिया ने उजागर किया कि मुल्क को नक्सलिज्म से पाक बनाना एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि आज वो इलाके जो कभी नक्सलिज्म से मुतासिर थे, वहां अब जोश व जज्बा नजर आ रहा है।
1: भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। आज नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा विकास के सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा इन आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया।
0: अपने खिताब में मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि तलबा भारत के मुस्तकबिल के मेमार हैं और हर फर्द को अपने मुस्तकबिल की हिफाजत और उसे संवारने में अपना रोल अदा करना चाहिए। पब्लिक मुसाबकती इम्तिहानात तलबा के लिए मौके के दरवाजे बन गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हुकूमत इन इम्तिहानात में इस्लाहात की खातिर जामे इकदामात कर रही है।
1: सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो। सरकार के प्रयासों तथा नई आर्थिक गतिविधियों से युवाओं के लिए अनेक प्रकार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमारे युवा सफलता के नए मार्ग चुन सकते हैं।
0: मुआशरे के महरूम तबकात की फलाह बहबूद के बारे में सदर जमहूरिया ने कहा कि 25 करोड़ से ज्यादा अफराद को गुर्बत की सतह से निकाला गया है। उन्होंने मजीद कहा कि मुफ्त राशन के जरिए 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया गया है और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की गई है। मुल्क के डिजिटल बुनियादी ढांचे के बारे में सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार किया है और दुनिया भर में होने वाले बरवक्त डिजिटल लेन देन निस्फ से ज्यादा भारत में होते हैं।
1: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गाँव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तालीम के मैदान में लड़कियों की गैर मामूली कारकर्दगी पर भी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा और रियासती कानून साज असम्बलियों में खवातीन के लिए 33% नुमाइंदगी मुख्तस करने की गरज से 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मंजूर किया गया। उन्होंने कहा कि इस कानून के मकासद हासिल होने से क़यादत में खवातीन का रोल मजीद मजबूत होगा और हमारी जमहूरियत ज़्यादा जामे बनेगी। खेलों के फरोग के बारे में सदर जमहूरिया ने कहा कि खेलों को नौजवानों की तरक्की और मुल्क की तामीर के एक वसीले के तौर पर अपनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया मुर्मू ने कहा कि मुल्क 2047 में आज़ादी की सद साला तकरीब तक विकसित भारत की तामीर की जानिब गामजन है। मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि अंत्योदय के जज्बे से तहरीक हासिल करते हुए मुल्क आज़म है कि तरक्की के समरात हर फर्द तक पहुँचें। उन्होंने कहा कि आज़ादी की तहरीक की अजीम विरासत और उसके नज़रियात को अपनाते हुए मुल्क जदीद तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म ने मोदी ने कहा है कि सदर जमहूरिया ने यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क के नाम एक फ़िक्र अंगेज और हौसला बख्श खिताब पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का खिताब मुल्क की ताकत और हर भारतीय की उमंगों की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया का पैगाम मुल्क के लोगों को विकसित भारत के लिए नए जज्बे और पुख्ता अज़्म के साथ काम करने की तरगीब देता है। मुल्क कल अपना 80वां यौम आज़ादी मनाने जा रहा है। वज़ीर आज़म ने मोदी दिल्ली के तारीखी लाल किले से यौम आज़ादी की तकरीबात की क़यादत करेंगे। भारतीय फदाइया के 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों के जरिए तकरीब के मकाम पर फूल बरसाए।

0: जाएंगे। कौमी परचम फहराने के अमल को 21 तोपों की सलामी के साथ हम आहंग किया जाएगा। वजीर आजम लाल किले की फसील से कौम से खिताब करेंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: लाल किले पर यौम आज़ादी की तकरीबात के दौरान पहली बार कौमी गीत वंदे मातरम गाया जाएगा। वंदे मातरम के शानदार विरासत के 150 साल पूरा होने की अजीम तकरीब में 2047 तक विकसित भारत के सफ़र में युवा शक्ति की तवानाई, उमंगों और अहम ताउन को भी उजागर किया जाएगा। इस तकरीब में लड़के और लड़कियां कैडेट समेत बर्री फ़ौज, बहरिया, फ़जाई फ़ौज और माई भारत वॉलेंटियर्स के 2500 जवान शिरकत करेंगे। ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 5000 खसूसी मेहमानों को लाल किला पर मुनक़िद होने वाली तकरीब के लिए मदऊ किया गया है। इसमें PM विश्वकर्मा स्कीम के मुस्तफ़ीद फ़नकारों, PM मुद्रा योजना से मुस्तफ़ीद होने वाली कारोबारी ख़वातीन, PM स्वनिधि के तहत खांचा फरोशों और भारत टैक्सी के टैक्सी ड्राइवर शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने कौमी राजधानी में सिक्योरिटी के वसी तर इंतजाम किए हैं। मुख्तलिफ एजेंसियों के तकरीबन 15,000 सिक्योरिटी अहलकारों को तैनात किया गया है और 1,000 CCTV कैमरे लाल किले पर नस्ब किए गए हैं। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: कल यौम आज़ादी के मौके पर दिल्ली मेट्रो के तमाम टर्मिनल स्टेशनों से खिदमा सुबह सवेरे 4 बजे शुरू हो जाएंगी, ताकि यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत करने के लिए खसूसी मेहमानों, मदऊईन और आम लोगों को आने जाने में सहूलत फराहम हो सके। सभी लाइनों पर मामूल के मुताबिक बाकायदा सर्विस शुरू होने के वक्त तक मेट्रो ट्रेनें 30-30 मिनट के वक्फे से चलेंगी। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने यौम आज़ादी के मौके पर आज रेल भवन के अहाते के अंदर एक तिरंगा रैली की क़यादत की। रेलवे की वजारत ने कहा कि भारतीय रेलवे मुल्कगीर हर घर तिरंगा मुहिम में फ़ाल तौर पर शिरकत कर रही है और पूरी रेलवे तंजीम में हुब्बुल वतनी, कौमी फ़ख्र और इत्तेहाद के जज्बे की तकरीबात मना रही है। ये मुहिम वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के तीसरे मरहले के साथ यकजहती मुनक़िद की जा रही है। इस मौके पर रेल भवन में वसी पैमाने पर वंदे मातरम पर दस्तखत करने का भी एहतमाम किया गया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने यौम आज़ादी 2026 के मौके पर डिफेंस फोर्सेज और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के अमले के लिए बहादुरी के 78 अवार्ड्स की मंजूरी दी है। 13 अवार्ड्स बाद अजमर्ग दिए जाएंगे। इनमें 9 कीर्ति चक्र, 1 बाटू शौर्य चक्र, 19 शौर्य चक्र, 5 बाटू सेना मेडल्स, 36 सेना मेडल्स शामिल हैं। कीर्ति चक्र के लेफ्टिनेंट कर्नल मानियो फ्रांस PF मेजर जितेंद्र राठी को नामजद किया है, जबकि हवलदार गजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह, बशीर अहमद, SG कांस्टेबल जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह, तारिक हुसैन और इंस्पेक्टर STF सुनील कुमार को कीर्ति चक्र बाद अजमर्ग दिए जाएंगे। पारसियों के साल नवरोज के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और बैरून मुल्क रहने वाली पारसी बिरादरी के तमाम अफराद को मुबारकबाद दी है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि नवरोज नई शुरुआत और नई उम्मीद की अलामत है। सदर जमहूरिया ने वाज़े किया कि खुशी और हम आहंगी का ये त्यौहार हम सबको बकाए बाहमी और इंसानियत की अकदार की याद दहानी कराता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने IGRMS भोपाल जुनूब वस्ती जोन सकाफती मरकज और संगीत नाटक अकेडमी के कलाकारों के ग्रुप के साथ आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया ने कहा कि इन कलाकारों के शाहकारों की कल राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा यौम आज़ादी के इस्तकबालिये में नुमाइश की जाएगी। भारतीय रेलवे नन्हे ऑपरेशन फरिश्ते के तहत रेलवे स्टेशनों पर मिलने वाले 65 गुमशुदा बच्चों को उनके अहले खाना से मिलाया है। ये बच्चे फिरोजपुर रेलवे डिवीज़न के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों पर मिले थे। फिरोजपुर डिवीज़न ने मुसाफिरों से अपील की है कि अगर उन्हें किसी रेलवे स्टेशन पर कोई बच्चा अकेला, गुमशुदा या अपने ख़ानदान से बिछड़ा हुआ मिले तो फौरी तौर पर RPF या स्टेशन के अमले को इत्तला दें। मुसाफिर बच्चों के हिफाजत के लिए रेलवे हेल्पलाइन 139 पर भी राब्ता कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में विलेज डिफेंस गार्ड VDG का एक रुकन उस वक्त हलाक और एक शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया जब आज उधमपुर ज़िले में एक आपसी झगड़े के बाद उनके साथ ही VDG के एक रुकन ने मुबैना तौर से उन पर फायरिंग कर दी। ये वाक़या दूर दराज के पंचेरी इलाके में उस वक्त पेश आया जब VDG के मेम्बरान پولیس چوکی جا رہے تھے۔

कभी कभी यादों का भी अपना एक मौसम होता है। कुछ यादें मुस्कुराने की वजह बनती हैं और कुछ यादें आंखों को नम कर जाती हैं। लेकिन जब इन्हीं यादों को शायरी के अल्फाज मिल जाएं और आवाज़ में दर्द घुल जाए तो एक खूबसूरत गज़ल जन्म लेती है। तो आइए कुछ पल ठहरते हैं यादों की उस दुनिया में जहां बीते हुए लम्हे आज भी दिल के किसी कोने में जिंदा हैं। सुनते हैं भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

0: बताएं।
1: चौदह अगस्त 1947 भारत के

0: 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: कहकशा कार्यक्रम में श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भूपेंद्र सिंह की गाई चंद गजलें। कहते हैं मोहब्बत कभी मरहम बन जाती है, कभी दर्द की वजह, और कभी यही मोहब्बत इंसान के हर जख्म की दवा बनकर सामने आती है। यानी जब दिल के जख्मों का इलाज किसी दवा से नहीं बल्कि किसी की मोहब्बत में दिखाई दे तो उस एहसास की गहराई क्या होगी, इसे भूपेंद्र सिंह की आवाज़ बेहद खूबसूरती से महसूस कराती है सुनने वालों को।

जब जज्बात दिल में उमड़ते हैं तो उन्हें शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। कभी आंखें कह देती हैं, कभी मुस्कुराहट, और कभी कोई गज़ल दिल की पूरी कहानी बयां कर देती है। अब आपको सुनवाते हैं भूपेंद्र सिंह की मखमली आवाज़ में वो गज़ल, जिसे सुनना किसी शांत शाम में अपने ही ख्यालों से मुलाकात करना हो। श्रोताओं, भूपेंद्र सिंह की आवाज़ की खासियत यह कि उसमें ठहराव भी है और दर्द की मिठास भी। उनके सुर जब दिल तक पहुंचते हैं तो सुनने वाला कुछ पल के लिए अपनी दुनिया भूल जाता है। तो आइए संगीत सफर में कुछ पल ठहरते हैं और सुनते हैं भूपेंद्र सिंह की गाई ये खूबसूरत गज़ल।

जब छलकते हैं तेरी आंखों से जाम। उपेंद्र सिंह की गाई इस गजल के साथ ही आज का कहकशा कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से अब सुनिए नाटक वतन के लिए। लेखक हैं विनोद रस्तोगी।

0: 다 보도
1: 차지.
2: 방아리 속단
1: 진나만.
2: 방아리 속단
1: 진나만.
2: 방아리 속단
1: 진나만.
3: कोई और मसला है ख्वाजा जहां?
4: आलीजा, महमूद गवां नाम का एक सौदागर हुजूर की कदम बोसी करने की इजाजत चाहता है।
3: इजाजत है।
2: सौदागर महमूद गवां, दरबार में पेश हो।
3: कहां से आए हो सौदागर?
5: फारस में गवां नाम की एक छोटी सी जगह है, वहीं का बाशिंदा हूं आलीजा।
3: अपना वतन छोड़कर बहुत दूर चले आए? क्या तिजारत तुम्हारा पुश्तैनी पेशा है?
5: नहीं हुजूर, मेरे दादा परदादा मिलन के शाह के वजीर थे। बचपन में मैंने हिंदुस्तान के बारे में बहुत सी दिलचस्प कहानियां सुनी थीं। इस अजीबोगरीब मुल्क को देखने का ख्वाब पूरा करने की गरज से ही मैं सौदागर बना लीजा।
3: तुम्हें पसंद आया हिंदुस्तान?
5: बहिश्त किसे पसंद नहीं आएगा।
3: तुम्हारे जवाब से हम बहुत खुश हुए महमूद गवां। बोलो, इस बहिष्ट में हमेशा के लिए रहना चाहते हो? देखो, तुम सौदागर हो और हम खरीदार हैं। बोलो, जो हम खरीदना चाहें उसे बेचोगे?
5: मेरे पास जो कुछ भी है आपका है आलीजा।
3: हम तुम्हें खरीदना चाहते हैं। बोलो, क्या कीमत है तुम्हारी
5: आलीजा?
3: हैरत में क्यों पड़ गए? हम जौहरी हैं, हमारी आंखें हीरे को पहचानना जानती हैं। बोलो, तुम्हें बहमनी सल्तनत की खिदमत करना मंजूर है?
5: ये मेरी खुशकिस्मती है आलीजा, लेकिन
3: हम लेकिन सुनने के आदि नहीं। आज से हम तुम्हें अपना वजीर मुकर्रर करते हैं।
4: आलीजा, एक अनजान सौदागर को वजीर बनाना मुनासिब नहीं है।
6: वजीर आजम बजा फरमाते हैं आलीजा।
3: खामोश। महमूद गवां एक नायाब हीरा है, हमने सोच समझ कर ये फैसला किया है।
4: हुजूर, एक अजनबी के हाथों में सल्तनत की बागडोर सौंपना मुनासिब नहीं है। देखिए, अमीरों की पेशानियों पर खिलाफत की सिलवटें पड़ रही हैं।
3: हुमायूं शाह खिलाफत को कुचलना जानता है। बोलो महमूद गवां, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है?
5: आलीजा, मैं जी जान से कोशिश करूंगा कि आपकी पसंद पर दाग न लगने पाए। रियाया की खिदमत और भलाई ही मेरी जिंदगी का मकसद होगा।
3: ताज और तख्त के लिए कुछ नहीं करोगे?
5: ताज और तख्त रियाया के लिए ही है आलीजा।
3: देखा वजीर आजम, हमारी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। मेरे अजीज अमीरो, देख लेना, एक दिन इसकी चमक से दुनिया की आंखें चौंधिया जाएंगी।
5: रात काफी हो गई आलीजा, अब आप आराम फरमाएं।
3: सुल्तान होना भी कांटों का ताज पहनना है महमूद। न दिन में चैन, न रात में नींद।
5: दिन रात एक करके आपने रियाया के भलाई के लिए जो कुछ किया है, उसी का नतीजा है कि आज सल्तनत के हर घर में घी के चराग चलते हैं।
3: अपनी कामयाबी का सहरा हमारे सर क्यों बांध रहे हो महमूद? वाकई तुम्हारे जैसा वजीर पाना भी किस्मत की बात है। पिछले 2-3 सालों में तुमने बहुत कुछ किया है सल्तनत के लिए।
5: मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है।
3: अमीरों के आपसी झगड़ों के तूफान से मुल्क की किश्ती को बचा ले जाना तुम्हारे ही बस की बात थी। जानते हो महमूद, अमीर लोग हमसे क्यों नाराज हैं? वो हमें सख्त और जुल्म करने वाला सुल्तान क्यों कहते हैं? दरबार में आते वक्त बीवी बच्चों से आखिरी विदा लेकर क्यों आते हैं?
5: जानता हूं आलीजा,
3: अमीरों की साजिशें मुझे पसंद नहीं। यहां के अमीर सिर्फ अपना भला सोचते हैं, अपना खजाना भरना चाहते हैं। सल्तनत और रियाया की कोई फिक्र नहीं उन्हें। जिसकी वफादारी में जरा भी शक होता है हमें, उसके साथ हम सख्ती से पेश आते हैं। हम जानते हैं तुम्हारा वजीर बनाया जाना भी उन्हें पसंद नहीं, वो नाखुश हैं।

0: बहुत नाखुश।
1: उनकी नाराजगी जायज है अलीजा, इसीलिए मैं आपसे कई बार गुजारिश कर चुका हूं, जरा होशियार रहें। मुझे पता चला है कुछ लोग आपकी जान के पीछे।
0: हर इंसान की मौत की घड़ी तय है महमूद, तुम बेफिक्र रहो, हमें कुछ नहीं होगा। जाओ अब तुम आराम करो जाकर, हमें तो अभी नींद आएगी नहीं।
1: सोने की कोशिश करें अलीजा। अच्छा, खुदा हाफिज।
0: कितना वफादार है महमूद कमां, हर वक्त रियाया की भलाई का ख्याल रहता है, खुद चटाई पर सोता है, मिट्टी के बर्तनों में खाता है। कौन है? हम पूछते हैं कौन है उस पर्दे के पीछे। ओ, ओ, ओ,
2: क्या हुआ अलीजा? ये क्या खून? पकड़ो पकड़ो पकड़ो, खून निकाल ना पाए।
1: अलीजा
0: महमूद, हमारे दोस्त।

0: क्या हुआ? ये चीख, अरे क्या हुआ अलीजा को? किस जालिम ने खून किया इनका?
1: ये रोने का वक्त नहीं, याद रखिए आप मलके जहां नहीं मखदूम जहां हैं, हिम्मत से कह दीजिए।
0: सुल्तान का खून?
1: मुझे अंदेशा था इसका, मैंने सुल्तान को आगाह भी किया था। यकीन रखिए खूनी मेरी गिरफ्त से बच नहीं सकता। इस वक्त मुझे यही कहना है कि सुल्तान आते और जाते हैं मगर सल्तनत कायम रहती है।
0: क्या मतलब है तुम्हारा?
1: सुल्तान के कत्ल में दक्खनी अमीरों का हाथ है। इसके पहले कि वो सर उठा सकें शहजादा निजाम को तख्त पर बिठाना होगा।
0: लेकिन निजाम अभी बच्चा है, सिर्फ 8 साल का। सल्तनत की बागडोर किस तरह?
1: बागडोर आपके मजबूत हाथों में रहेगी, आप बेफिक्र रहें। सुल्तान निजाम शाह की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है।
2: कौन है? अरे आप इस वक्त यहां वजीर आजम?
3: सुल्तान मरहूम के छोटे भाई मोहम्मद शाह के साथ जरूरी बातें करने आया था।
2: सुल्तान मरहूम? आपको कैसे मालूम हुआ कि?
3: सुल्तान की चीख और आपकी पुकार से मैं सब कुछ समझ गया था। यहाँ आने में देरी इसलिए हुई क्योंकि मैं खूनी का पीछा कर रहा था।
0: खूनी मिला?
3: जी हाँ, उसकी लाश बाहर पड़ी है। इसके पहले कि मैं उसे पकड़ पाता उसने अपने सीने में खंजर बोकर खुदकुशी कर ली।
2: पहचान तो लिया उसे आपने, कौन है वो?
3: वो नाम तो मैं नहीं जानता लेकिन शायद महल का ही कोई नौकर है।
2: महल का नौकर सुल्तान का कत्ल क्यों करेगा वजीर आजम? और फिर खुदकुशी, इसमें जरूर कोई गहरा राज है।
3: जो भी हो लाश तो बोल नहीं सकती। खैर अब यह तय होना बाकी है कि ताजपोशी शहजादा निजाम की होगी या उनके चाचा मोहम्मद शाह की।
0: तख्त पर जायज हक बेटे का होता है।
3: लेकिन शहजादा निजाम तो अभी नादान है।
2: तो क्या हुआ, सल्तनत का काम मखदूम जहां देखेंगे
3: और शायद उनकी आड़ में आप शिकार खेलेंगे।
2: ख्वाजा जहां खबरदार, जो
0: सुल्तान की लाश पड़ी है और आप लोग लड़ रहे हैं। आप दोनों ही सल्तनत के हाथ हैं और आप लोग हैं।
3: मैंने तो सीधी बात कही थी, लड़ाई पर तो महमूद गवाह आमादा हैं। अच्छा अब मुझे इजाजत दीजिए, इत्मीनान रखिए सुल्तान निजाम शाह की हिफाजत करने वाली तलवारों में मेरी तलवार सबसे आगे होगी।
1: आप जाकर आराम करें मखदूम जहां, कल सुबह बहुत काम करने हैं आपको। बीवी का फर्ज तो पूरा हो गया, अब मां का फर्ज पूरा करना है। इस वक्त शहजादे के पास आपका रहना निहायत जरूरी है। जाइए, मैं यहां हूं।

0: बगावत कम रहेगी और वो बगावत करने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे।
1: वो तो ठीक है, मगर फौजी अफसरों का भी क्या भरोसा।
0: फौज में नाराजगी तभी होती है जब उसे वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलती। हम तनख्वाह बढ़ा देंगे और वक्त पर पैसा देंगे।
1: हमें तुम्हारा हर मशवरा मंजूर है, फौरन अमल किया जाए।
2: अब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है, हमें कुछ करना चाहिए।
3: महमूद गवां के बच्चे ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है।
4: वो हमारी तरक्की की राह का कांटा है,
2: तो उसे निकालने की तरकीब सोचिए जनाब। आप हमारे रहनुमा हैं, सरगना है निजामुल मुल्क।
3: जिस तरह हमारे वजीर आजम ख्वाजा जहां सूली पर लटका दिए गए, उसी तरह हमें भी सजा दिलवाएगा। वो
2: हमारे खिलाफ रात दिन सुल्तान के कान भरता रहता है।
4: सल्तनत और रियाया की भलाई के काम करके वो सुल्तान का चहेता बन गया है। मगर आप लोग फिक्र ना करें, मैं इस कांटे को निकालने का रास्ता अच्छी तरह जानता हूँ। अल्लाह ने चाहा तो मेरा जाल
2: हम सब आपके साथ है। हम दखनी अमीरों की कोई वक्त नहीं रही।
3: ईरानी अमीरों को बड़े बड़े ओहदे दिए जा रहे हैं,
2: यही तो बेइंसाफी है।
4: इत्मीनान रखें, मेरी तरकीब उस जहरीले सांप का फन कुचल देगी। 25 साल से वो हमारे हुकूक का गला घोट रहा है, अब वो मेरे फौलादी पंचे से बच नहीं सकता।
5: सुल्तान का इकबाल बुलंद हो।
1: तुम लोग इस वक्त, खैरियत तो है निजामुल मुल्क?
5: आलीजा, खैरियत ही तो नहीं है, जिसे आप बेशकीमती हीरा समझ रहे हैं वो मामूली पत्थर है।
1: तुम कहना क्या चाहते हो?
5: महमूद गवां वफादार नहीं, गद्दार है। ये खत देखिए जिसे उसने उड़ीसा के राजा को लिखा है।
1: दस्तखत तो उसी के लगते हैं।
2: हम लोगों को तो उस पर पहले ही शक था सुल्तान आलम।
3: आज जब वो अपने मकतब गया तो हमने उसके घर की तलाशी ली। ये खत चटाई के नीचे रखा हुआ था लीजा।
1: या खुदा, ये क्या राज है? महमूद गवां उड़ीसा के राजा को बहमनी सल्तनत पर हमला करने की दावत दे रहा है।
2: वो गद्दार है आलीजा,
3: उसे सजाए मौत दीजिए।
5: इंसाफ का यही तकाजा है आलीजा।
0: इंसाफ का तकाजा पूरा होना चाहिए।
1: आओ वजीर आजम महमूद गवां, इन अमीरों ने तुम पर गद्दारी का इल्जाम लगाया है। जो खत तुम उड़ीसा के राजा को भेजना चाहते थे अब हमारे पास है। लो देखो।
0: ये खत मैंने नहीं लिखा आलीजा, ये जाली है, मेरे खिलाफ गहरी साजिश है।
5: अपने को बेगुनाह साबित करने की कोशिश बेकार है,
2: आखिर हो तो परदेसी ही।
3: अपनी औकात दिखा दी।
0: आलीजा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यह खत मैंने नहीं लिखा। जिस सल्तनत को अपने खून पसीने से सींचा, उस पर हमला करने की दावत मैं किसी को क्यों दूंगा? मैं मौत से नहीं डरता आलीजा। अगर आप मुझे गद्दार समझते हैं तो मैं हर सजा के लिए तैयार हूं।
1: हमारा दिल तुम्हें गद्दार नहीं मानता, मगर यह खत महमूद गवां, इंसाफ करने के लिए हम मजबूर हैं।
0: आलीजा, एक बेगुनाह को सजा देकर आप इन खुदगर्ज अमीरों का हौसला बढ़ा रहे हैं। ये आस्तीन के सांप हैं जो सल्तनत को डस लेंगे। इनके नापाक इरादों को समझने की कोशिश कीजिए आलीजा।
5: खामोश आलीजा, आपने ही कहा था इंसाफ के आंखें नहीं होती। यह खत इसकी गद्दारी का सबूत है, फिर इंसाफ में देर क्यों?
2: इसे सजाए मौत दीजिए,
3: यही इंसाफ है।
1: यकीन रखो, इंसाफ ही होगा। गद्दारी की सजा है मौत।
0: आलीजा, माना मैं यहां पैदा नहीं हुआ, लेकिन अब यही मेरा वतन है। वतन और इंसाफ के नाम पर मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा आलीजा। मैं मरने के लिए तैयार।

0: अभी आपने सुना विनोद रस्तोगी का लिखा नाटक वतन के लिए। प्रस्तुति थी तेजेंद्र वार्ष्णेय की। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर बाद होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्तरंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में 1 मिनट का मौन धारण करें।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर गीता बनर्जी की राग देश में ठुमरी और दादरा। तबले पर आपके साथ संगत कर रहे हैं महावीर प्रसाद भट्ट और शमशाद अहमद खान।

उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे डॉक्टर गीता बनर्जी से राग देश में ठुमरी और दादरा। इसी के साथ उप शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 11 बजने को हैं, कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्यनिष्ठता तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाडा अप्पाराव के एक गीत का उल्लेख किया, जिसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को एक प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूर्ण समर्पण से योगदान का आह्वान करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 11:10 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब संपन्न होती है। कल की प्रातःकालीन सभा में 5:53 पर आपकी सेवा में